जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी की। तो कबीर दास जी ने ज्ञान प्रेम के अतिरिक्त और भी कई सारे विषयों पर अपनी बातें कही हैं। उनमें से एक और है, जी हाँ, हम सभी इंसान हैं ना, और इंसानों में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है आचरण को लेके। तो आचरण के बारे में कबीर दास जी का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने दूसरों में बुराई खोजी तो कोई नहीं मिली, लेकिन जब मैं खुद के अंदर झांकने को चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। और ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उससे पहले चार उंगली हम पे खुद पे उठती है। तो बिल्कुल सही कहा हमारे कबीर दास जी ने। और किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें खुद के अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने सादगी का महत्व बताया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का भला ना हो सके। बिल्कुल, अगर आप बड़े हैं और अगर आप बड़े बनते हैं तो सच में बड़ा वही होता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसकी सोच विशाल हो, जो दूसरों का भला करना जानता हो। चलिए फिलहाल के लिए एक निर्गुण सुन लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की, और इनका कहना है कि धर्म हमें जोड़ने के लिए बना है, लेकिन जब वही धर्म हमें बांटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम धर्म नहीं अहंकार निभा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोहे। यानी अंत में सब एक ही मिट्टी में मिल जाना है, फिर ये ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किस बात का, सोचने की बात है। तो आप सोचिए, तब तक हम सुन के आते हैं प्यारा सा निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आप शो सुन रहे हैं पहली किरण। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपके अपने भक्तिमय कार्यक्रम में, वो हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी की अगर मैं बात करूं तो उनके हर एक पहलू पे जिंदगी के बड़े ही चर्चे हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय और मुद्दा रहा है इनके जीवन का, वो थी इनकी मृत्यु। वो क्या थी, चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। और ये कहानी कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित कहानी है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर दास जी ने पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाई, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। लेकिन जब उनके अपने जीवन का अंतिम समय आया तो वही समाज जिसे उन्होंने जोड़ा था दो हिस्सों में बट गया। कहानी कुछ यूं है कि जब कबीर जी ने अपने प्राण त्यागे तो हिंदू अनुयायी बोले, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और मुसलमान अनुयायी कहने लगे, नहीं, उन्हें दफनाया जाएगा इस्लामी तरीके से। बहस बढ़ने लगी, विवाद गहरा होने लगा। और वो संत जिसने जीवन भर भेद मिटाने की कोशिश की, उसके जाने के बाद भी भेद सामने खड़ा था। तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार, वो चमत्कार आप विश्वास भी नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं क्या हुआ। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल का ढेर था। दोनों पक्ष शांत हो गए और समझ गए कि कबीर का अंतिम संदेश क्या था। फिर क्या हुआ, आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमान भाइयों ने, और दोनों ने अपने अपने तरीके से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, कबीर जी ने जाते जाते भी यही सिखाया कि हम चाहे किसी भी धर्म से जन्म लें, लेकिन अंत में हम सब एक ही सच्चाई के हिस्से हैं। वो शरीर नहीं, विचार बनकर जीना चाहते थे, और शायद इसलिए वो फूल बनकर खुशबू बन गए।

दोस्तों, कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोध में हमेशा आपको दिख जाएंगे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महान कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ के भीतर पाई गईं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराई की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में उनका अनुसरण पाया जाता है। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा। क्षिति मोहन सेन जी ने कबीर साहिब द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ बताए हैं। पहला, कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्म को, यानी आत्मा को और परमात्मा को समझाने का प्रयास किया है। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 में किया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग हैं, जो कि है रमायणी यानी रामायण, चौपाई और दोहे का पद, जो कि लिखित है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में। सबद, ये गेय पद है, जो कि ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ही रचित है। साखी यानी साक्षी पद, जो कि दोहों में रचित है और इसकी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। अगला है कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे दोनों सम्मिलित हैं। कबीर सागर, ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। दोस्तों, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखित किया गया यानी संग्रहित किया गया। उनके 2 शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत

विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और कबीर की वाणी को विश्व पटल पर ले गए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। वाकई बहुत महान हस्ती थी कबीर साहब। आइए चलते हैं इन्हीं के एक और निर्गुण की ओर।

जी हाँ दोस्तों, कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इनका अंदाज और इस बात का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो उनके दोहों से आपको साफ साफ लग सकता है। जैसे मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। और कई दफ़ा तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के अवतार थे। आप इस बात का अनुमान इनकी मृत्यु की कहानी से बेशक लगा सकते हैं। अगर चमत्कार है नहीं, अगर वो ईश्वर थे नहीं, तो फिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? आपके समस्त विचारों में राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम देखा जाता है और इसकी महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहार, वाते तो चाकी भली पीसी खाए संसार, माया पापड़ी सब जग तो फांधे पड़या गया कबीरा काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो पापिनी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है ना, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर उसे काटकर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्ति पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए फिर एक और निर्गुण की ओर आगे बढ़ते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भोरी भोरी का भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, और अब बारी है उन प्रसिद्ध दोहों की जिससे चलते चलते हम कुछ ज्ञान लेके चलेंगे। वाकई बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन में अगर कबीर दास जी के जीवन से उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और वाकई जीने लायक हो जाएगा। चलिए चलते हैं उन दोहों की ओर जो आज भी उतना ही जीवंत है जब ये लिखित हुआ था। कबीर हार चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है, जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सार नाम प्राप्त है वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, वर्तमान में उसके कुल वंश यानी उसके वंशजों की अगर बात करें तो उसमें कोई भी उसके घर में इस वक्त दीप जलाने के लिए भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थाई है ही नहीं। है ना कितनी गहरी और सच्ची बात।

कबीर दास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर कबीर दास जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो लेकर घूमते हैं पर उनके मन का भाव कभी नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ ताकि जीवन सरल हो सके। इसके अतिरिक्त मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं प्राप्त होता और पछताने के अलावा फिर कोई चारा नहीं होगा। इसलिए आप जब तक हैं सत्कर्म करें, लोगों का भला करें और अपने जीवन के साथ साथ सभी के जीवन में आनंद भरें। इसके अतिरिक्त इनका एक और दोहा है कि पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर साहिब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जब तक आप जीवित हैं सदाचार करें, सदाचरण अपनाएं और अपने जीवन को सुखद और सरल बनाएं और इस समाज में कुछ तो नेकी करके जाएं।

दोस्तों, आज की सुहानी सुबह में हमने संत कबीर दास जी के शब्दों में छुपे जीवन की सच्चाई और उसके अर्थ को महसूस किया। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो करना है अभी करना है, खुद को बदलना है तो आज से ही शुरू करना है। जिंदगी की इस दौड़ में, इस भागा दौड़ी भरी जीवन में थोड़ा ठहर कर अपने भीतर झांकना है, क्योंकि असली शांति हमारे खुद के भीतर है, बाहर नहीं, आपके अंदर ही। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और अब लेती हूं आपसे विदा। लेकिन याद रखिए, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद जरूर लेकर आती है। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई रोशनी के साथ आपके अपने शो पहली किरण में। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ, राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा तो सब राखा, खुदा हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।

अयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

टाइफाइड, हाइपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हाइपेटाइटिस ए, हाइपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: हाँ जी, मैं वापस से आपका वेलकम करते हैं सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो चलिए भाई, वक्त आ गया है आपका वेलकम करने का। एंड यस ऑफ कोर्स, आप बने हुए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद यू मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और आज हम तैयार हैं आपसे बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ बहुत कुछ बताने के लिए, क्योंकि आज पूरी तरह से वीकेंड की मॉर्निंग है, यानी सैटरडे मॉर्निंग है। सो ऑब्वियस सी बात, सैटरडे मॉर्निंग है तो वैसा ही मूड भी होने वाला है। तो चलिए भाई, देरी नहीं करते हैं और आपको ले चलते हैं दिन की बेहतरीन शुरुआत की तरफ, यानी कि आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, और बताते हैं कि आज का मॉर्निंग वाला थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर के आया है और आज का थॉट ऑफ द डे आपसे क्या है कहना चाहता।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? दरअसल आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि वक्त हमें कुछ भी अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देता। वक्त हमें कुछ भी अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देता, पर अपने बाद अमूल्य कुछ छोड़ जाने का पूरा मौका जरूर देता है। वक्त हमें कुछ भी अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देता, पर अपने बाद अमूल्य कुछ छोड़ जाने का मौका जरूर देता है। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का, जो सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट है आपके लिए। यस, आपके लिए। सो ये थॉट क्या कहना चाह रहा है? जब वक्त गुजरता है तो क्या हमारे साथ में गुजरे हुए चीज की सब कुछ रहता है साथ में? हमारा बचपन गुजरा, क्या आज भी हम बचपन को लेके आए हैं साथ में? नहीं, वहीं छूट गया। पर अगली जो लाइन कहती है वो बड़ी खूबसूरत है, पर अपने बाद अमूल्य कुछ छोड़ जाने का मौका जरूर देता है। बचपन तो बीत गया, लेकिन आज जब अगर उसकी झलक देखते हैं तो ऐसे न जाने कितने सारे किस्से याद आते हैं जो उस वक्त हमें बेहद पसंद आए थे। तो वैसी ही कुछ बातों को, वैसे ही कुछ अंदाज को बयां कर रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। सो वक्त के साथ में चीज़ें हम ले नहीं जा सकते आगे, लेकिन गुजर जाने के बाद कुछ ऐसा ज़रूर छोड़ जा सकते हैं जो बहुत ही अमूल्य हो, यानी बेशकीमती हो, और ऐसा कई बार हुआ है। तो इन गुजरते लम्हों को हम इस तरह जीने की कोशिश कर लें जिससे कि जब ये गुजर जाए तो उसके बाद हमारे पास कुछ बेशकीमती ज़रूर हो, है ना? जी हाँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस बात को शायद भूल जाते हैं, और इस बात को चूंकि भूल जाते हैं इसलिए इस पे इतना ध्यान नहीं देते, और इसलिए हमको लगता है कि सब तो छूट ही जाना है, फिर होगा क्या? नहीं, छूट ज़रूर जाता है, लेकिन बाद में जो रह जाता है वो कुछ बेशकीमती सा होता है। जब भी आप उठाते हैं उसको तो वो आपको एहसास ज़रूर कराता है, और ये आपने भी देखा है और ये हमने भी महसूस किया है। इसलिए इसमें जी लेना, कुछ बेशकीमती छोड़ देना, कि कभी हम जब आगे बढ़ जाएं और पीछे पलट कर देखें तो हमको ये सारी चीज़ें बखूबी याद रहे और हम इन चीज़ों को वापस से जी पाए। ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। शायद आज भी कुछ छूटा होगा जिसको आप जब भी ध्यान देते होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके बीच में ही रहता होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बीच में आज भी बेशकीमती है, जो वक्त गुजर गया है उसकी। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको जानना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और यस, अब चूंकि ये थॉट आपने सुना है तो अब इस थॉट को आप कहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं? इस थॉट को लेकर के आपका क्या खुद का थॉट है, ये ज़रूर आप सोचिए। और उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि हाँ कुछ तो ऐसा है जो अमूल्य आपके पास रहा है, तो हमसे साझा कर सकते हैं, या अपने मन में भी आप उसको रख सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि भाई आप इस बात को गहराई से समझने लग जाएंगे कि लाइफ में चीज़ें गुजर ज़रूर जाएंगी, लेकिन गुजर जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा आप पीछे छोड़ते जाएंगे जिसको कभी भी उठा करके आप देखेंगे, आपके साथ जो भी उस पल में उस दौर में रहा होगा वो देखेगा, तो फिर आप उन चीज़ों में वापस से एक ज़िंदगी, एक लाइवलीनेस को ज़रूर फील करेंगे। सो इस बात को लेकर के
आप कैसे देखते हैं, आपका क्या है मानना, आप कैसे सोचते हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और फिलहाल हम ले चलते हैं आपको आज के इस थॉट के बाद वाले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। वापस से आते हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रखने वाले हैं, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं रेडियो गार्डन से, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से और फ्रीक्वेंसी से। सो यस, मिल करके अब हम मचाने वाले हैं सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो में धमाल।

0: हाँ जी, देखो ना, जमीन पर उतर गए हैं सितारे। तो फिलहाल हमारे सितारे हमारे साथ मौजूद हैं फ्रिक्वेंसी पर, रेडियो गार्डन पर और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन पर। सो वेलकम अगेन इन योर मॉर्निंग वाला शो। गुड मॉर्निंग गोंडा।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए बताते हैं भाई क्या क्या मैसेजेस आ गए हैं, और मैसेजेस की तरफ चलते हैं तो काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। सो क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले हम बता दें जो मैसेज आया है आज के मॉर्निंग शो में वो मुकेश का आया है। लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, दिल से गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद कमल नयन जी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अनुष्का जी श्रावस्ती से हैं, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी दिन अच्छा हो। नागेश्वर आगे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू नागेश्वर, वेलकम करते हैं मॉर्निंग स्पेशल शो में। प्रीति जी बहराइच से, सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। सुबह इसके अलावा वेलकम करते हैं जो अपनी कार में ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, खेतों में काम करते हुए सुन रहे हैं, कहीं जाते हुए सुन रहे हैं, या फिर लेटे लेटे सुन रहे हैं, आप सबका वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान कर रहे हैं स्वागत, और आप सुन रहे हैं अपना गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। सो आइए अब सीधे चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे के रिएक्शंस की तरफ, और आज क्या रिएक्ट किया है, सबसे पहले धर्मेंद्र मोहन जी ने किया है। सबसे पहले तो आपने लिखा है, गुड मॉर्निंग गोंडा सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड कहा अदनान सर जी को मेरा आदाब पहुँचे, जी हाँ आपको भी। और लिखा है कि आज का थॉट ऑफ द डे हमें बहुत अच्छा लगा, बचपन की यादों से वक्त का अंदाज़ा सिर्फ इतना ही रह जाता है कि बस याद याद याद याद रह जाती है, क्या बात है। तो देखिए ना, अगर बचपन आपने खूब जिया है, खूब मस्ती की है, कुछ ऐसे छोटे मोटे कांड भी किए हैं जिसको आज याद करते हैं तो आपको हंसी आती है, या किसी से साझा करते हैं, तो यही वो बात है आज के थॉट ऑफ द डे में कि यार वक्त गुजर जाता है, हम कुछ साथ में लेकर नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर छोड़ के आए हैं जिसको याद करते हैं तो वो बहुत बेशकीमती लगता है, राइट। ऐसे ही आज का पल है, जब इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो आज के पल का कुछ बेशकीमती रह जाएगा। आज का वक्त हमारे साथ कल को नहीं रहेगा, कल का अपना एक अलग वक्त होगा, लेकिन आज का जो वक्त है वो बेशकीमती है। और जो बीते हुए कल में जब हम थे तो ये वक्त भी हमें नहीं पता था कि इस तरह आने वाला है, ये भी आया। हर वक्त का अपना कुछ ना कुछ बेशकीमती ज़रूर रह जाने वाला है। इसके बाद अनुष्का जी ने रिएक्ट किया है कि वेरी नाइस थॉट ऑफ द डे सर, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट पसंद आया। प्रीति जी लिखती हैं, हकीकत बयां करता हुआ ऑसम थॉट, जो वक्त गुजर गया उसको वापस ला नहीं सकते, बट जो नहीं कर पाए उसको करने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। वाह क्या बात है, जो नहीं कर पाए उसको करने का प्रयास जारी है प्रीति जी के ज़रिए, और ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए शायद हम ऐसी स्टोरीज़ को साझा करते हैं ताकि हमारे अंदर का भी जो कुछ रह गया है वो मुकम्मल हो जाए। क्या पता कि हम कोई ऐसी बात शेयर करें और कोई ऐसा शख्स जो सुन रहा हो, किसी कोने किसी खेत पे काम करते हुए, कोई किचन में काम करते हुए, कोई जाते हुए, कोई आते हुए, कहीं पर भी, और उसके बाद ज़िंदगी में वो उस पल का एहसास कर पाए, और उसके बाद शायद वो पल हमारे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं होगा। नागेश्वर लिखते हैं, वक्त के साथ बुरी आदतें और बुरी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, तभी हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब हम बुरी आदतों से खाली नहीं करेंगे तो नई चीज़ें कैसे रखेंगे। किसी महापुरुष ने कहा था कि जो वक्त के साथ अपने साथ चल रहा है वही अपना समझो, पीछे छूटे हुए के बारे में सोच सोच कर अपना वक्त बर्बाद ना करो। बेशक, क्योंकि आज का जो वक्त है वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी। आज अभी वही वाली बात है कि जो पैसा आपके हाथ में दिया गया कि भाई इस महीने का बजट है, इसको आपको खर्च करना है, और आप बार बार पीछे, नहीं यार जो पिछले महीने का बजट था वो क्या था, अच्छा उससे पिछले महीने का बजट क्या था, कैसे था, भाई इस महीने का दिया गया इसको मैनेज करो। उसी तरह वक्त है आज जो है प्रेजेंट में, ये रियल टाइम है, इसको मैनेज करना, इसको देखना ही हमारी जिम्मेदारी है, इसको समझना, क्योंकि उसके बाद की जो चीज़ें हैं अब वो जा चुकी हैं, और आज जो कुछ करेंगे वो कल के बेहतर में, यानी आज गुजर रहा है इसके बेहतर में भी हम कल इसको याद कर पा रहे होंगे, इसलिए आज को प्लीज़ खुल के जी लो, ये वक्त है दोबारा नहीं मिलने वाला है। एंड थैंक यू सो मच, बड़े ही अच्छे अच्छे अंदाज में आप लोगों ने रिएक्शन दिए हैं,
जो कहते हैं ना हृदय तल की गहराइयों से सोचकर आपने बताया है, तो भाई इतनी गहराई में तो गोताखोर भी नहीं पहुंच पाते जहां से आपने सोच करके बता दिया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। चलिए अब इतना अच्छा आप लोगों ने भाई रिएक्शन दिया, तो एक बढ़िया सा सॉन्ग हम भी आपको ज़रा सुना ही देते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। फिर बहुत कुछ है और आज सिटी की अपडेट भी मिलने वाली जनाब, और इसलिए ढिचक्या धूम धूम करके घूम घूम लीजिएगा।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी भाई, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती है जिनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं यार ये इतने नए हैं, बट इतनी गहराई इनमें। कुछ ऐसे ही पर्सनालिटीज होती है। फिलहाल आज एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और नाम है उनका आयुष्मान खुराना। ऑफ कोर्स आप जानते हैं, और इनके बारे में जब स्टोरी बताते हैं तो आज के वो लोग जो मीडिया लाइन में एंटर करते हैं उसके बाद उनका होता है सपना कि यार अब हम जाएंगे इंडस्ट्री की तरफ, यानी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। तो उसके बाद फिर ऐसे लोगों की पर्सनालिटी जो होती है वो ऐसे कई सारे सफ़र और उसमें आने वाली हर्डल्स को देख करके आते हैं जिनको सुनने के बाद आपको अपने लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर रिजेक्शन से सिलेक्शन का सफ़र कैसा रहा आयुष्मान खुराना का, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, तो भाई दरअसल हम बात कर रहे हैं आयुष्मान खुराना की, और जहाँ हुए थे ये रिजेक्ट वहीं परफॉर्म करके भावुक हुए आयुष्मान। सो आप जो बैठने नहीं देते आप एक रोज़ कुर्सियाँ देंगे। बेशक रिजेक्शन से शुरुआत सीज़न टू, करीब 20 साल पहले आयुष्मान खुराना ने इंडियन आइडल सीज़न टू में एक कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लिया था, जहां इन्हें शुरुआती दौर में ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। सो मेहनत से और सुपरस्टारडम तक का सफ़र देखिए। रिजेक्शन से हार ना मानते हुए इन्होंने आरजे यानी रेडियो जॉकी, फिर वीजीए यानी वीडियो जॉकी और रोडीज विनर बन करके अपनी राह बनाई। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी एक्टिंग पानी दा रंग जैसे गानों के दम पर एक बेहतरीन एक्टर सिंगर के रूप में खुद को एस्टैब्लिश किया। सो फुल सर्कल जादुई पल। जी हाँ, आज ये उसी मंच पर अपनी फिल्म पति पत्नी और वो दो के प्रमोशन के लिए एक स्टार गेस्ट बन करके लौटे, जहाँ इनके सूफियाना गाने पर श्रेया घोषाल और हेलन जैसे दिग्गज हस्तियों से उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो उनके सफ़र को पूरी तरह मुकम्मल बनाता है, यानी फुल सर्कल बनाता है। सो ऐसे ही वक्त होता है कि जिस जगह से आपको रिजेक्ट किया गया, जहाँ पे आप बतौर एक प्रतिभागी बन करके पहुँचे हो, कंटेस्टेंट बन करके, एक दिन वहाँ आपको स्पेशल गेस्ट की तरह इनवाइट किया जाए, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम होता है, बहुत बड़ा मंच होता है, तो वही हमको कहीं ना कहीं मिल जाता है। क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप उस चीज़ के लिए नहीं हैं या वो चीज़ आपके लिए नहीं है। रिजेक्ट होने का सीधा सा मतलब होता है वो रास्ता जिस तरह से अभी आपने अप्रोच किया वैसा नहीं है, आपको दूसरा अप्रोच मानना पड़ेगा, फिर तीसरा अप्रोच हो सकता है, कई अप्रोचेज लगे, हो सकता हो दूसरे तीसरी बार में चीज़ें हो जाएं। पर जितना आप लगाते जाते हैं वक्त या चीज़ों को समझते जाते हैं, ज़िंदगी का मज़ा हमेशा प्रोसेस में है, हमेशा मैंने कहा है, इधर कोई चीज़ किया उधर फट से मिल जाए। देखिए, अगर अचीव करने वाली चीज़ें इतनी ईजिली मिल जाए ना कि आप मन में चाहें और सब कुछ आपके सामने आ जाए, एक वक्त बाद आप चाहना ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है जो चाहेंगे सब मिल जाएगा। तो फिर मेहनत किस चीज़ की करेंगे, टीस किस चीज़ की दिल में उठेगी, कुछ अधूरापन कहाँ रह जाएगा, किसके लिए आप लालायित होंगे, किसके लिए आप कोशिशों को जारी रखेंगे, सब कुछ तो मिल जाएगा। और इसीलिए तो हर बार कहा जाता है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मज़ा देती है ना। तो वैसी ही कुछ बातें होती है जो आपकी टाइम को लेकर के, आपके एफर्ट्स को लेकर के, आपकी मेहनत को लेकर के हमेशा आप जारी रखते हैं। बहरहाल, आप अपनी लाइफ के हीरो हैं, आप बॉलीवुड में नहीं, आप जहाँ भी सोचते हैं, आप जो भी सोचते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनने का सोचते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनने का सोचते हैं, आप बेहतर नागरिक बनने का सोचते हैं, आप

कुछ भलाई करने का सोचते हैं, आप अपने लिए कुछ बेहतर करने का सोचते हैं, आप दुनिया घूमने का सोचते हैं, आप एक अच्छे फोटोग्राफर बनने का सोचते हैं, आप एक अच्छे सिंगर बनने का सोचते हैं, आप एक अच्छे आर्टिस्ट पेंट करने का सोचते हैं, स्केचिंग करने का सोचते हैं, जो भी सोचते हो दोस्त, आपके लिए सारा जहां है। और कुछ करना ही ज़िंदगी है, हमेशा ये याद हमको रहना ही चाहिए कि कुछ करना ही ज़िंदगी है, छोड़ते जाना समझदारी नहीं है। अगर टाइम को हम इसमें काउंट करेंगे तो लाइफ में एट द एंड हमको क्या मिलेगा, बस छोड़ते जाना और दिमाग लगाते जाना, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, तो फिर क्या, कुछ तो जो अपना हो।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हाँ जी, तो भाई चलिए आपको अब ले चलते हैं जरा बॉलीवुड की तरफ, क्योंकि चांद मेरा दिल के बारे में मुझे लगता है आपको अब बताना चाहिए। जी हाँ, एक ऐसी मूवी जिसके बारे में आपने अभी तक सुन लिया होगा, और नहीं सुना होगा तो आज हम आपको बताने वाले हैं। फिल्म चांद मेरा दिल सिनेमा घरों में चूंकि अब रिलीज़ हो चुकी है, अनन्या पांडे और लक्ष्य ने अच्छा इसमें अभिनय किया है। कहानी कुछ नई है, फिल्म पहले हाफ में बांधे रखती है। इस कहानी, इस फिल्म के बारे में एक ग्लिम्स हम आपको देने वाले हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, सो चांद मेरा दिल एक ऐसी मूवी है जिसका ट्रेलर देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह फिल्म सिनेमा घरों में कैसी होगी। अगर आपने ऐसा किया है तो सिनेमा घर में खुद को गलत पाएंगे। दरअसल अनन्या पांडे और लक्ष्य ने अपनी एक्टिंग से फिल्म को संभाला है। कहानी की अगर हम बात करें सो कहानी एक कपल की है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले आरव यानी लक्ष्य और चांदनी यानी कि अनन्या को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों से एक गलती होती है और वो परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। सो कम उम्र में ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ जल्दी ही दोनों के बीच दूरियां पैदा कर देता है। इस सफ़र में क्या क्या मोड़ आते हैं ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में आपको अनन्या पांडे का दूसरा वर्जन देखने को मिलेगा। वहाँ तू मेरी मैं तेरा और तेरा तू मेरी की तरह ओवर एक्टिंग आप को नहीं मिलेगी। पूरी फिल्म में इनका जो अभिनय है अच्छा है, लक्ष्य में संभावनाएं हैं और इनके एक्टिंग में आपको कई जगह रणवीर कपूर की झलक मिलती है। इन्होंने किरदार में प्यार, दर्द और गुस्से के इमोशंस को बखूबी हैंडल किया है और बाकी आर्टिस्ट का फिल्म में काम का ही यानी नाम का ही रोल रहा है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो फिल्म को विवेक सोनी ने निर्देशित किया है, जो कि इससे पहले मीनाक्षी सुंदरेश्वर और आप जैसा कोई जैसी लीक से हटकर रोमांटिक फिल्में बना चुके हैं। इस बार विवेक कुछ नया लेकर आए हैं। फिल्म की शुरुआत भी अच्छी है पर इंटरवल के बाद फिल्म का स्क्रीन प्ले बोझिल हो जाता है। अनन्या और लक्ष्य ने फिल्म को अपने कंधों पर अच्छी तरह संभाला है। अच्छे डायरेक्शन में कुछ गुंजाइश रह गई है, कुछ सीन थे जिन्हें बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था, कुछ किरदार थे जिनको फिल्म में और डेवलप किया जा सकता था। सो फिल्म की कमज़ोरी इसकी भटकती कहानी है। शुरुआत जितनी अच्छी है अंत उतना ही ख़राब भी है। फिल्म के कई सीन से आप कनेक्ट करते हैं, रिश्तों के टूटने की वजह, पार्टनर से एक्सपेक्टेशन और तलाक के बाद का माहौल सबको असल सा लगता है पर क्लाइमैक्स तक आते आते सब गड़बड़ हो जाता है। बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों में कई बार जो राइटर्स हैं अलग क्लाइमेक्स लिखने का रिस्क तो ले लेते हैं पर आते आते वो हैप्पी एंडिंग दिखाने के फेर में फंस जाते हैं। सो ऐसा ही कुछ इस मूवी में भी हुआ है चांद मेरा दिल। और ये मूवी जो है सिनेमाघरों में चूंकि अब रिलीज़ हो चुकी है, इसके बारे में जो रिव्यू था वो हमने आप तक पहुँचाया। आज की क्रिटिक्स आखिर क्या मान रहे हैं और क्रिटिक्स इसको कैसे देख रहे हैं। फ़िलहाल आपको ये मूवी अगर देखना होगा तो आप देख करके अपनी भी राय ज़रूर बताइएगा और अगर आप देख चुके हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप ज़रूर बताइए कि आपको चांद मेरा दिल मूवी कैसी लगी। फ़िलहाल फ़हीम अब्दुल्ला की आवाज़ में चांद मेरा दिल इसका टाइटल ट्रैक सॉन्ग है जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मे आई कम इन सर?
1: यस, आइए आइए बैठिए। क्या करती हैं आप?
0: मैं पायलट हूँ।
1: अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या उड़ाती हैं आप?
0: पति के पैसे।

0: सो भाई, बारहवीं के बाद क्या क्या संभावनाएं होती हैं? अभी रिजल्ट आया है और स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच में हैं कि करियर के लिए वो किस डायरेक्शन में जाए। ऑप्शन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों ऑप्शंस हैं। तो चलिए उन्हीं में से हम बताते हैं कि आपके करियर की नई राह कहां कहां मिल सकती है आपको, ताकि आप अगर डायरेक्ट खुद सुन रहे हैं तो आपको ये बात समझ आए, और अगर आप एज पेरेंट सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को गाइड कर पाएँ, अगर आप गार्जियन सुन रहे हैं तो अपने घर के बच्चे को बता पाएँ कि उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं और वो क्या क्या और कैसे कर सकता है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सो रिज़ल्ट आने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाने में जुट गए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनकी जानकारी अब भी बहुत कम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाती है। BASLP ऐसा ही एक उभरता हुआ करियर ऑप्शन है। सो ये कोर्स जो है वो स्टूडेंट्स को सुनने और बोलने से जो जुड़ी समस्याएं हैं इसके इलाज और थेरेपी के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाता है। BASLP के ज़रिए से जो स्टूडेंट्स हैं ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी जैसे बहुत ही ज़रूरी क्षेत्रों में काम करने के लिए योग्य बनते हैं। सो कौन होता है ऑडियोलॉजिस्ट? ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एक ट्रेंड स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं जो सुनने, बोलने, भाषा, आवाज़ निगलने और बैलेंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का जो है इवैल्यूएशन करके उसकी प्रॉब्लम, उसका मैनेजमेंट और वापस से पुनर्वास करता है। सो ये ENT विशेषज्ञों, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस और जो ख़ास टीचर्स होते हैं उनके साथ मिल करके मरीजों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनकी मेन जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए, BASLP प्रोफेशनल की जो मेन जिम्मेदारियां हैं उसमें श्रवण परीक्षण यानी सुनने की क्षमता, उसका टेस्ट करना, स्पीच और लैंग्वेज असेसमेंट, स्पीच कैसी है, लैंग्वेज का क्या है, हियरिंग एड और जो बाकी सहायक उपकरण हैं उसका चयन और फिटिंग शामिल है। वो बच्चे में स्पीच डिले, ऑटिज्म से जुड़े थेरेपी, जो वयस्कों में स्ट्रोक या ब्रेन इंजरी के बाद स्पीच रिहैबिलिटेशन, वॉइस डिसऑर्डर और हकनाने का उपचार कराते हैं। इसके अलावा ये बैलेंस संबंधी प्रॉब्लम्स, टिटनेस के जो प्रबंधन है, विशेष जो विद्यालय हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे काम करने के साथ साथ पेरेंट्स और केयर गिवर्स को काउंसलिंग भी देते हैं। सो संस्थान मान्यता प्राप्त हो, इस बात का आपको ख्याल हो कि BASLP में एडमिशन के लिए स्टूडेंट का 12वीं कक्षा में फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी विशेषज्ञ के साथ, इन विषयों के साथ कम से कम 50% मार्क्स से पास होना ज़रूरी है। सिर्फ ICI और द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही लेना चाहिए, क्योंकि RCI जो है वो रजिस्ट्रेशन के बिना इस क्षेत्र में प्रैक्टिस करना संभव नहीं है। सो इस कोर्स की कुल अवधि 4 वर्ष की होती है, जिसमें 3 साल एकेडमिक जो स्टडी है और 1 साल जो ज़रूरी क्लिनिकल इंटर्नशिप वो शामिल है। सो इसके कई सारे अवसर मौजूद हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में स्पीच और हियरिंग क्लिनिक, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस और शिक्षण संस्थानों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ख़ुद का स्पीच और ऑडियोलॉजी क्लिनिक या फिर स्पीच थेरेपी सेंटर भी शुरू कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो इसका एक काम होता है, और जैसा कि BASLP कोर्स के बारे में हमने बता दिया है, आप देख ही रहे हैं आजकल किस तरह से लोग बोलने में प्रॉब्लम होती है, किसी की स्पीच सही नहीं होती है, कोई हकलाता है, कोई बहुत परेशान होता है, ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है ऐसे लोगों के लिए BASLP के जो स्टूडेंट्स हैं ये पढ़ाई करते हैं और इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसमें आप स्पीच पर काम करते हैं, आप सुनने की क्षमता पर काम करते हैं, आप हियरिंग पर करते हैं। तो आप इस तरह से इन सारे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ मिल करके वर्क करते हैं और आपका एक ये नया करियर होता है जिसके बारे में सच में काफ़ी कम स्टूडेंट्स को ही जानकारी है। बट आज की इस अपडेट के बाद आई होप कि ये नया जो एक विकल्प है आपकी 12वीं के बाद 4 साल का इस कोर्स करके आप इसके एक्सपर्ट हो सकते हैं, इसके बारे में आपके लिए नई जानकारी ये साबित ज़रूर हुई होगी। एंड आई होप कि आप ये जानकारी अपने घर के उन बच्चों को जो 12वीं कर चुके हैं और सोच रहे हैं क्या करना है, तो उनके लिए एक ऑप्शन के तौर पर आप उनको बता सकते हैं, वो इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा उन स्टूडेंट्स को जिनको कुछ अलग करना है
या इस तरह से लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, तो ये एक प्रोफेशन भी है जिसमें उनकी अर्निंग भी है, प्लस लोगों के लिए हेल्प तो आप इसमें करते ही करते हैं, डायरेक्टली बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आई होप कि ये जानकारी आप जो है वो पहुंचा देंगे, और ज़रूर हमारे वो लोग जो इस को लेकर के परेशान है कि भाई ऐसे आसपास सेंटर्स नहीं होते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी बड़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए, आपको BASLP के बारे में जान करके कैसा लगा हमको आप बता सकते हैं। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। आई होप कि ये म्यूज़िकल ब्रेक भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून किया हुआ है गोंडा FM 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो गाना 89.6 FM पर।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: भाई इतना ना चलेंगे, थक जाएंगे। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक अर्जुन। और अब हम चलते हैं भाई, हमारे किसान भाइयों के लिए भी कुछ ज़रूरी जानकारियां हैं जो कि उन तक पहुंचाए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने खेतों से भी हमको सुनते हैं, तो आप तक ये जानकारियां पहुंचनी बहुत लाजिम है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई पहले तो हम बता दें कि अल नीनो है इस साल। अल नीनो में क्या होता है कि ये खरीफ का जो उत्पादन है वो घट जाता है, ये बात हमारे किसान भाइयों को पता है। सो अल नीनो जो साल होता है, खरीफ फसलों के लिए पैदावार घटती है। इस साल साल 2002 में, 2004 में और 2009 के अल नीनो सालों के स्टडी से खुलासा हुआ है कि मेरठ में मौजूद भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं का ये अध्ययन शोध पत्रिका क्लाइमेट सर्विसेज में प्रकाशित किया गया है। अल नीनो सालों में देश के 77 ज़िलों में धान की उपज और 65 ज़िलों में मक्के की पैदावार में 10% से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। ज्वार और बाजरा की उपज में भी देश के 36 ज़िलों में इतनी गिरावट दर्ज की गई है। सुधान की फसल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा में देखा गया है। इसके अलावा आपको हम बता दें एक नई अपडेट है जो कि है कि स्प्रिंकलर सेट पर अब अनुदान और भी बढ़ करके मिल रहा है। जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यूपी में खेत तालाब योजना चलाई जा रही है। इसमें किसानों को स्प्रिंकलर सेट पर 80% से 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। इसका फायदा किसान सिंचाई लागत में घटा सकते हैं। सो इसके लिए 1,000 रुपये का टोकन राशि है। जी हाँ, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान फार्मर रजिस्ट्री होना ज़रूरी है और आवेदन करते वक्त 1,000 रुपये की टोकन राशि वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करनी होगी जो बाद में आपको वापस कर दी जाएगी। सो बुकिंग के बेस पर सिलेक्शन होगा। किसानों का जो सिलेक्शन है ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग के आधार पर पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जाएगा। इसमें किसानों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि पूरा प्रोसेस डिजिटल और ट्रांसपेरेंट है। सो कैसे करना है अप्लाई, इस बात की भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो देखिए, जो भी इंटरेस्टेड किसान हैं, कृषि विभाग के एग्री दर्शन पोर्टल पर जाना है, उनको योजना सेक्शन में स्प्रिंकलर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। आधार कार्ड, खतौनी, भूमि रिकॉर्ड और बैंक पासबुक की कॉपी ज़रूरी है। सो इस तरह से भी आप जो है वो स्प्रिंकलर पर अनुदान ले सकते हैं और ये आपके सिंचाई लागत को काफ़ी घटाने वाला है। ये अपडेट हमारे किसान भाइयों के हित में है क्योंकि वो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और नई नई चीज़ें आती रहती, योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती है। सो आप 89.6 FM गोंडा FM से जुड़े हुए हैं और अच्छी बात ये है कि आपके लिए हर थर्सडे एक शो आता है 5 से 6 खेत खलिहान। इसके अलावा हम अलग अलग शोज़ में ऐसी कोई भी अपडेट्स होती है तो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस 89.6 FM से भी जुड़े ताकि

इस तरह की जितनी योजनाएं और जो भी बारीकियां हैं या जो विशेषज्ञ हमारे किसान भाइयों तक बात कहना चाहते हैं वो 89.6 FM के जरिए उन तक जरूर पहुंच जाए। फिलहाल वक्त हो गया है चलने का अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग शो का आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो चलिए भाई, आपके काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ गए हैं जिसको हम पढ़ने वाले, लेकिन उससे पहले इस म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस से आते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपने क्या कुछ लिख भेजा है आज के मॉर्निंग वाले

क्या बात है, वाओ व्हाट अ सॉन्ग यार। और जब इस सॉन्ग को सुनते ऐसा लगता है रिफ्रेश से हो गए। फिलहाल जाने से पहले ऐसा सॉन्ग सच में रिफ्रेश कर जाता है। फिलहाल कुछ मैसेजेस आ गए हैं जिनको हम पढ़ के बता देते हैं कौन कौन आया। उसके बाद में लास्ट मैसेज के बाद में आया हरिश्चंद सविता जी का मुंबई से, सुप्रभात सर लिखा है, सुप्रभात आपको भी। आशुमिश्र जी लखनऊ से हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। कमल नयन जी गोंडा से हैं, कमल नयन जी आपको भी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है। प्रबल मिश्र मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद में कमल नयन जी ने बोला आरजे अदनान सर गुड मॉर्निंग, आरजे अदनान सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम है आपका मॉर्निंग शो में। मनी शर्मा लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू मनी, आपका भी वेलकम करते हैं। कायनात है गुड मॉर्निंग टू यू। और फिलहाल किसान योजना आप लोगों को अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से लिखते हैं, सर जी बहुत गर्मी है, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है नीले ड्रम का कॉन्सेप्ट चेंज करने का, और उसको चेंज करके सीधे नीले ड्रम में बर्फ़ भरने का और उसी में कूद पड़ने का। क्या ख्याल है आपका? मेरा तो आइडिया यही कह रहा है ताकि नीले ड्रम का जो भ्रम है वो भी निकले और गर्मी भी जो बसी हुई है वो भी निकले। फिलहाल आपका क्या है मानना, आप कैसे देखते हैं, आप कैसे मानते हैं, ये सब आप ज़रूर बता दीजिएगा। और अब आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, चलने का वक्त हो गया। सुनने वाले इस गाने को ज़रूर सुने, मुझे बहुत पसंद आया और आई होप कि आप इस गाने को एंजॉय करने वाले हैं। मेरा दीवाना फ्रॉम द मूवी जुड़वा 2, अमरिंदर गिल की आवाज में।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं गांव की गूंज, और आज हम लेकर के आ रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात। आज गांव की गूंज थोड़ी सी भारी है, क्योंकि बात है हमारी सांसों की, उस हवा की जो कभी जीवन देती थी, आज धीरे धीरे जहर बनती जा रही है। क्या आप जानते हैं हमारे देश के कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, पटना आज दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं।
9: और सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों के भी हाल बहुत खराब है, मालूम है ना आपको? चीन का बीजिंग, पाकिस्तान का लाहौर और बांग्लादेश का ढाका, इन शहरों में लोग साफ हवा के लिए तरस रहे हैं।
10: कहीं धुआं इतना ज्यादा है कि सूरज तक दिखाई नहीं देता, और कहीं लोग मास्क पहनकर जीने को मजबूर हैं। तो सोचिए, अगर हवा ही जहर बन जाए तो जिंदगी कैसी होगी।
11: अरे किरण दी, अब तो गांव की भी हवा पहले जैसी नहीं रही। पहले सुबह सुबह कितनी ताजी हवा मिलती थी, अब तो हर तरफ धूल और धुआं है, सांस लेना तक भारी लगता है।
9: सही कह रही हैं आप, शहरों का हाल तो और भी बुरा है। मैंने टीवी में देखा, दिल्ली में लोग मास्क पहनकर घूमते हैं, बच्चे तक घरों में बंद हैं, खेलना कूदना सब उनका मुश्किल हो गया है।
10: हाँ, दिल्ली में तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि स्कूल बंद करने पड़ते हैं और उड़ानें भी लेट हो जाती हैं, अस्पतालों में मरीज की लाइन लग जाती है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कानपुर, पटना और लखनऊ में भी हवा इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ का एक UI बहुत खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है।
11: और ये सिर्फ हवा की बात नहीं है, हमारी नदियाँ भी तो जहर बनती जा रही हैं। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी अब गंदगी से भर गई हैं। कारखानों का कचरा, प्लास्टिक, सीवर का पानी अब उसी में जा रहा है। कभी इन नदियों का पानी अमृत जैसा था, आज वही पानी पीने लायक ही नहीं बचा।
12: सही कह रही हैं समता दी, हमने ही अपनी धरती को बीमार बना दिया, पेड़ काट दिए, प्लास्टिक फैला दिए, अब हवा भी खराब और पानी भी खराब।
9: अगर यही हाल रहा तो मुझे तो डर है कि आगे आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी, न साफ हवा, न साफ पानी, बस बीमारियां और परेशानी।
10: दोस्तों, ये सिर्फ बातें ही नहीं है, ये सच्चाई है। आज प्रदूषण सिर्फ एक समस्या ही नहीं बल्कि एक चेतावनी है, अगर आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी।
11: आओ, क्यों ना आज गांव की गूंज को कुछ अलग रंग दिखाया जाए, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक संदेश भी दिया जाए। क्यों ना आज हम ऐसे गीत गाएं जो हमारे दिल को छू जाए, जो हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराए और जो हमारी आंखें खोल दे उन समस्याओं की ओर जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं।
9: तो आओ हम ऐसे गीत गाएं जो प्रदूषण, शिक्षा, स्वच्छता और समाज की सच्चाइयों को उजागर करे, ताकि सुनने वाले सिर्फ आनंद ही ना ले बल्कि कुछ सीखें भी, कुछ सोचें भी।
12: क्योंकि जब गीत दिल से निकलते हैं तो दिल तक पहुंचते हैं, और शायद वही एक छोटी सी शुरुआत बन जाए बदलाव की। आओ मिलकर गाएं, ताकि हर दिल में जागे जिम्मेदारी और हर मन में उठे सुधार की भावना, और हमारा गांव बने एक सुंदर, जागरूक और प्रेरणादायक।

0: दोस्तों, प्रदूषण सिर्फ हवा को गंदा नहीं करता, ये हमारी जिंदगी को अंदर से खोखला कर देता है। आज जो हम देख रहे हैं वो तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में हर घर में बीमारी और हर चेहरे पर चिंता होगी।
1: तुम लोग जानती हो ना, मेरे चाचा जी पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, हर सुबह खेत जाते थे, हंसते खेलते रहते थे, लेकिन पिछले साल उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर के पास गए तो पता चला अस्थमा हो गया है। डॉक्टर ने कहा हवा में बढ़ता प्रदूषण इसका सबसे बड़ा कारण है, और अब हालत ये है कि बिना इनहेलर के वो एकदम एक कदम भी नहीं चल पाते हैं।
2: ओफ, ये तो बहुत दुख की बात है। और बच्चों की हालत देखो, छोटे छोटे बच्चे खांसी से परेशान, आंखों में जलन, पानी और एलर्जी इतनी ज्यादा कि बेचारे कहीं खेलने भी नहीं जा पाते।
3: पहले तो सब बुढ़ापे में होता था, पर अब तो बचपन ही बीमार हो गया है।
1: और सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल तो दिल की बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फेफड़ों का इन्फेक्शन, अब ये सब तो आम होता जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं गंदी हवा सीधे हमारे खून और दिल पर असर डालती है, और सबसे डरावनी बात ये है कि ये धीरे धीरे होता है और हमें पता ही नहीं चलता।
0: किन क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम खुद को और अपने परिवार को बचा भी नहीं सकते?
3: नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। हमें कुछ योग करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम, सांसों का संतुलन, सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद करें, दाहिने नाक को बंद करें, बाहर बाएं से गहरी सांस लें, अब बाएं बंद करके दाहिनी से सांस को छोड़ें। इसे धीरे धीरे 5-10 मिनट और करें। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। दूसरा, कपालभाति, जिसे हम शुद्ध क्रिया भी कहते हैं। तेजी से सांस बाहर निकालें, पेट अंदर की ओर खींचे, धीरे धीरे करें। ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और फेफड़ों को साफ तो करता ही है। तीसरा प्राणायाम है गहरी सांस। गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक इसे रोके रखें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा हमें 10 बार करना है। इससे मन शांत होता है और शरीर को नई ऊर्जा मिलती है।
0: सुबह की सैर करना भी बहुत अच्छा होता है। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में टहलें, पेड़ों के आसपास जाएं, प्रकृति के साथ समय बिताएं।
1: सही कह रही हो जया, अगर हम रोज ये करें तो हम खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं।
2: दोस्तों, बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि उससे लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाना है, और ये शुरुआत अभी से करनी है।

0: गीता दी, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सिस्टम खराब है, लेकिन क्या हमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? क्या हमने कभी सोचा कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही इस बड़ी समस्या की जड़ हैं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम ही अपने घर का कचरा सड़क पर फेंकेंगे, अगर हम ही प्लास्टिक जलाएंगे, अगर हम ही नालों में गंदगी बहाएंगे, तो फिर दोष किसका होगा? सरकार तो नियम बना सकती है, लेकिन उन्हें निभाना तो हमें ही है।
2: सही कह रही हो समता, हम खुद ही कई बार लापरवाही करते हैं। बोलो कैसे? देखो, सब्जी लेने जाते हैं तो प्लास्टिक का थैला ले आते हैं, कचरा अलग अलग नहीं करते कभी भी, कहीं भी फेंक दिया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, और फिर कहते हैं गंदगी बहुत है।
0: हाँ गीता दी, मुझे तो सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब लोग जानबूझकर भी गलत करते हैं, सड़क के किनारे कचरा फेंक देते हैं, खेतों में प्लास्टिक जला देते हैं, नदी में पूजा का सामान और प्लास्टिक भी साथ में बहा देते हैं। उन्हें पता नहीं कि ये गलत है, फिर भी करते हैं।
3: लेकिन अब हमें सिर्फ शिकायत नहीं करनी है, हमें खुद भी बदलाव लाना है। अगर हर इंसान ये ठान ले कि मैं इधर उधर कचरा नहीं फेंकूंगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करूंगा, अपने आसपास सफाई रखूंगा, तो सोचो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: बिल्कुल, बदलाव हमारा सबसे छोटे कदमों में से शुरू होता है। एक घर साफ होगा, फिर एक गली, फिर पूरा गांव और धीरे धीरे पूरा देश।
2: बिल्कुल ठीक, हमें दूसरों का इंतजार नहीं करना है, हमें खुद ही शुरुआत करनी है, क्योंकि बदलाव भी हम ही से है और जिम्मेदारी भी हमारी ही है।
0: आज वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, हम क्या कर रहे हैं इस धरती के लिए? अगर जवाब अच्छा नहीं है तो अभी से बदल जाइए। याद रखिए, सरकार नियम बना सकती है, लेकिन असली बदलाव जनता ही लाती है। इसी बात पर मैं चार लाइन की कविता आपको सुनाती हूँ। आओ जिम्मेदारी लें, खुद से शुरुआत करें, छोटा छोटा कदम उठाकर बड़े बड़े बदलाव करें। कब तक दोष देंगे हम औरों की गलती को, अब तो बदलना होगा अपनी ही आदतों को। कचरा यूं ना फैलाएं हम, ये धरती है हमारी, इसे साफ रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसे साफ रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अब समय सिर्फ समस्या बताने का नहीं है, अब समय है समाधान ढूंढने का, क्योंकि अगर हम चाहें तो हम अपने छोटे छोटे कदमों से बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं।
3: तो बहनों, हम क्या करें? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, अगर हमें सच में अपने गांव को बचाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे पहला और सबसे आसान काम, हर घर एक पेड़ लगाए। सोचो जया, अगर हमारे गांव के हर घर के सामने एक एक पेड़ हो तो पूरा गांव हरियाली से भर जाएगा, हवा भी साफ होगी और मन भी खुश रहेगा।
3: सही कहा किरण दी आपने, अगर हम सिर्फ पेड़ लगाएं ही नहीं बल्कि उसकी देखभाल भी करें तो वो पेड़ हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा।
2: और एक बात बहुत जरूरी है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना। हम रोज बाजार जाते हैं, हर बार नया प्लास्टिक का थैला ले आते हैं, फिर वही कचरा बनकर हमारे आसपास फैल जाता है। हम अगर कपड़े का थैला साथ ले जाएं, तो न सिर्फ कचरा कम होगा बल्कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण भी बनेंगे। कैसा रहा ये प्लान?
0: बहुत अच्छा। और क्यों ना हम एक और काम करें गीता दी, हर रविवार सफाई अभियान रखें, पूरा गांव मिलकर सफाई करें, बच्चे बड़े और बूढ़े सभी मिलकर सिर्फ सफाई ही नहीं करेंगे बल्कि लोगों में जागरूकता भी लाएंगे।
2: और हाँ, स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है, उन्हें बचपन से ही सिखाएं स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
3: अगर हम सब मिलकर के ये छोटे छोटे कदम उठाएं तो हमारा गांव भी एक मिसाल बन सकता है और लोग दूर दूर से सीखने भी आएंगे।
1: हाँ, और तब हम गर्व से कहेंगे कि ये हमारा स्वच्छ, सुंदर और जागरूक गांव है।
4: ये स्वास्थ्य श्री पुंजी।

0: बदलाव कहीं बाहर से नहीं आता, न सरकार से और न किसी और से। बदलाव आता है हमारे सोच से, हमारे छोटे छोटे कदमों से। आज अगर हम ठान लें तो कल हमारा गांव भी एक मिसाल बन सकता है।
1: तुम लोगों ने सुना है, मेघालय में एक गांव है मावली नोंग। उसे पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाता है। वहां के लोग क्या करते हैं पता है? हर घर के बाहर डस्टबिन बना होता है। कोई भी कचरा जमीन पर नहीं फेंका जाता। पूरा गांव मिलकर रोज सफाई करता है। और सबसे खास बात, वहां सफाई के नियम नहीं है बल्कि एक आदत बन चुकी है, एक संस्कार बन चुका है।
2: कितना अच्छा लगता होगा वहाँ, वहाँ पे रहना, वहाँ पे चारों तरफ घूमना और चारों तरफ की वो हरियाली, साफ सुथरी सड़कें, साफ हवा, और लोग भी कितने जागरूक होंगे, तभी तो पूरा गांव इतना सुंदर है।
0: और सिर्फ वही नहीं, मैंने एक और जगह के बारे में पढ़ा था, सिक्किम के कुछ गांवों में लोगों ने प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहाँ प्लास्टिक बैग नहीं चलते, लोग खुद अपने बैग थैले लेकर के घर से जाते हैं और कचरे को अलग अलग करके फेंक देते हैं, और इस वजह से वहाँ की प्रकृति आज भी बहुत सुंदर है।
3: तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारा गांव उनसे कम है कि हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी है? अगर हम सब भी ठान लें तो हमारा गांव भी एक दिन ऐसा ही बन सकता है।
1: और सोचो, एक दिन लोग कहें चलो उस गांव को देखने चलते हैं, जहां हर घर के सामने पेड़ है, जहां कचरा नाम की कोई चीज नहीं है, जहां बच्चे भी सफाई का महत्व समझते हैं, कितना गर्व होगा हमें।
2: और वो दिन दूर नहीं है अगर हम आज से ही शुरुआत करें। आज एक पेड़ लगाएंगे, आज एक प्लास्टिक कम करेंगे और आज एक जगह साफ करेंगे।
0: हाँ, और हम इंतजार नहीं करेंगे कि कोई और आए, हम खुद शुरुआत करेंगे। हम दूसरों को प्रेरित करेंगे, हम अपने गांव को बदल कर दिखाएंगे। हम कसम खाते हैं, हम अपने गांव को गंदा नहीं होने देंगे। हम हर हाल में सफाई बनाए रखेंगे। हम पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे। हम खुद भी जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक।

0: करेंगे। हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। हम मिलकर अपने गांव को एक स्वच्छ, सुंदर और आदर्श गांव बनाएंगे।
1: वाह, यही है असली बदलाव, यही है असली जिम्मेदारी। अगर हर गांव ऐसा संकल्प ले ले तो पूरा देश ही बदल सकता है।
2: जल जीवन मिशन को मिलकर सफल करें।

0: तो साथियों, आज की गांव की गूंज सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक सोच की शुरुआत, एक बदलाव की शुरुआत। याद रखिए, धरती हमारी है, जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हम बदलेंगे तो दुनिया भी बदलेगी। फिर मिलेंगे एक नई गूंज के साथ, एक नई कहानी, एक नए संदेश के साथ। तब तक स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और अपने गांव को सुंदर बनाते रहें।
1: और सुनते रहिए 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारा, क्योंकि बज चुके हैं 12 और आज है दिन आपके हमारे सबके चहीते शो स्वास्थ्य संगिनी का। जी हाँ, स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज है दिन शनिवार और शनिवार के दिन आती हूँ मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी। अब देखिए, स्वास्थ्य संगिनी में आपकी हेल्थ की बात होती है, जागरूकता की बात होती है और हम काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सुखद बना सकते हैं। लेकिन भाई देखिए, सिर्फ सुनना ही नहीं है, हमें सिर्फ पूरा शो इन्जॉय ही नहीं करना बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको अच्छे से सुनना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको सिम्टम्स दिखे तो आप पहचान जाएं कि कौन सी बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ये आपको कुछ ज्यादा ही गौर से सुनना है, क्योंकि भाई ट्रीटमेंट सही होगा तभी तो हम स्वस्थ बनेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पे। देखिए, आज का विषय एक ऐसा विषय है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन आप लोग शायद उस तरफ इतना गौर करते नहीं, सोचते अरे अरे छोटी मोटी ही तो बीमारी है, हट जाएगी, थोड़ा सा होगा, एक दो दिन चलेगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता हर बार, हमेशा ये चीज़ें नहीं होती कि छोटी मोटी चीज़ समझ के आप टाल दें, क्योंकि ये चीज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आज हम बात करेंगे हैजा यानी कि कॉलरा की। कॉलरा यानी कि हैजा एक बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जो ज़्यादातर गंदे पानी और संक्रमित खाने की वजह से होती है। ये बीमारी हमारे शरीर की आंतों को प्रभावित करती है बहुत कम समय में ही। ये शरीर में से पानी ये और ज़रूरी मिनरल बाहर निकाल देती है। अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। कॉलरा का मुख्य कारण एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम कॉलरा से जुड़ा बैक्टीरिया है, जिसे हम कहते हैं विब्रो कॉलरा। ये बैक्टीरिया अक्सर गंदे पानी, खुले खाने और साफ सफाई की कमी की वजह से होता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जब कोई व्यक्ति ऐसा पानी पी लेता है या ऐसा खाना खा लेता है जिसमें ये बैक्टीरिया मौजूद हो, तो ये बैक्टीरिया उसके पेट में और उसकी आंतों में पहुंच जाता है और वहां जाकर एक तरह का टॉक्सिन छोड़ता है, जिससे शरीर में पानी की मात्रा तेजी से कम होने लगती है और इस वजह से मरीज बार बार दस्त और उल्टी से जूझने लगता है। कॉलरा गरीब और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा फैलता है जहाँ पे साफ पानी और सैनिटाइजेशन की कमी हो। बारिश में बाढ़ के समय इसका खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय पानी दूषित होता है। कई बार गांव या एक ऐसे इलाके जहाँ पे एक ही पानी का स्रोत सभी लोग इस्तेमाल करते हों, वहाँ पर ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल सकती है। अब अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे एक ही स्रोत है पानी का, तो याद रहे कि ये बीमारी बड़ी आसानी से फैल जाती है और अपनी सुरक्षा और सतर्कता आपके खुद के हाथ में होती है। इस बीमारी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लक्षण बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इसे संक्रमण होने के कुछ घंटे के बाद ही इसमें दस्त शुरू हो जाते हैं, जबकि 2-3 दिनों इसमें लग जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि शरीर से पानी इतना तेजी से निकलता है कि मरीज कमजोर होकर बेहोश तक हो सकता है। कॉलरा सिर्फ एक व्यक्ति की बीमारी नहीं होती, बल्कि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी मानी जाती है। अगर एक जगह पर फैल जाती है तो बहुत सारे लोग इसके साथ इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए सरकार और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साफ पानी, हाथ धोने की आदत और सैनिटाइजेशन पर इतना जोर देते हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ भाषण समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए भाई, इग्नोर नहीं करना, उसे अपनी जिंदगी में लागू भी करना है, जिससे कि कॉलरा से आप बच सकें। अब बात करें कि कॉलेरा से बचाव कैसे किया जा सकता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि साफ पानी पीना, हमेशा उबला हुआ पानी पीना, जिसे हम हमेशा उबला हुआ या फिर फिल्टर्ड पानी पीना, बाहर से कटा हुआ फल, खुले बिकने वाला खाना, गंदे पानी से बना हुआ चीज़ से हमें बचना चाहिए। खाना खाने से पहले आपको हाथ धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी अच्छे से आपको अपने हाथों को धुलना चाहिए। आजकल कॉलेरा की वैक्सीन भी उपलब्ध है, जो खासकर उन इलाकों में दी जाती है जहां ये बीमारी ज्यादा फैलती है। हालांकि वैक्सीन मदद करती है, लेकिन साफ सफाई और सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबसे बड़ा बचाव है इसका। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉलेरा सिर्फ पुराने समय की बीमारी है, लेकिन आज भी दुनिया के कई देश इस बीमारी से जूझ रहे हैं, खासकर जहां गरीबी, साफ पानी की कमी और हाइजीन की समस्या होती है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार पानी जैसा दस्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, इंसान का शरीर सूखता जा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जल्दी इलाज मिलने पर मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन लापरवाही से मरीज की जान भी जा सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो कॉलरा एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसके बचाव हो सकता है। सही जानकारी, साफ सफाई और समय पर इलाज से इंसान आसानी से बचाया जा सकता है। दोस्तों आपको याद होगा, अरे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बस थोड़ी ही टाइम पुरानी, अगर आप अपने दादा दादी के पास जाएं या फिर मम्मी पापा से पूछें, तो पहले भाई कॉलेरा, जिसे हम हैजा कहते हैं, हैजा से पूरा पूरा गांव ही मर जाता था। एक बार जिसके घर पे हैजा हो जाए या जिस गांव में हैजा हो जाए, लोग वहां पे शादी नहीं करते थे, जल्दी उस गांव में जाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई हैजा हुआ है तो धीरे धीरे करके हर इंसान मर जाएगा, और अगर हम जाएंगे तो हमें भी हैजा हो जाएगा। तो जब से ये कुछ आधुनिक चीज़ें आई हैं, नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं साइंस में, तब से कॉलरा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी इतना कम नहीं हुआ है कि आप इसको हल्के में लेने लग जाए। तो भाई साफ सफाई ज़रूरी है, आलस बिल्कुल ना दिखाएं, जब कोई बाहर से चीज़ लाए तो उसको ज़रूर से धुल के प्रयोग करें। कोई भी कटा हुआ फल, कटी हुई सब्जी आप बिल्कुल प्रयोग ना करें। साथ ही साथ ऐसी जगह से पानी बिल्कुल ना पिए जहाँ पे गंदगी बहुत हो, क्योंकि हैजा गंदगी में सबसे ज़्यादा फैलता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब हमारे देश में कोविड काल से यानी कोरोना से हम लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, उस दौरान जब हमें ये पता चला और हमें ये चीज़ समझ आ गई कि साफ़ सफाई के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है, तब हर घर में सफाई पर बहुत ज़्यादा जोर देने लग गए। बाहर से आया हुआ कोई भी सामान को हम लोग सैनिटाइज करने लग गए, हाथ को अच्छे से धुलने लग गए, और भी घर में साफ सफाई मेंटेन करने लग गए। लेकिन जैसे जैसे कोविड केसेस कम हुए, लॉकडाउन खुल गया, इंसान ने बिल्कुल ढील दे दी अपनी इस अच्छी आदत को। और अब जो बीमारी साफ सफाई की वजह से होती है, जब आप घर में गंदगी रखें, अपने आसपास गंदगी रखें या गंदी चीज़ का सेवन करें, तो वो बीमारी कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो जाती है जब से आपने ये साफ सफाई वाली अच्छी आदत को छोड़ दिया है। तो इसे बिल्कुल ना छोड़ें, इसे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल वैसी चिपका के रखें जैसे आप अपने स्मार्टफोन को अपने से करीब रखते हैं। फिलहाल दोस्तों ये थी बात कि कॉलेरा क्या है, लेकिन इसके सिम्टम क्या है, इसका बचाव क्या है, इसके कारण क्या है, और क्या डाइट लें जिससे हम कॉलेरा से थोड़ा बच सकते हैं, और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, सभी पे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपना मुँह हाथ धुलकर आना है, थोड़ा सा पानी पीना है, अपने दिमाग को सतर्क कर लेना है, क्योंकि अब बात जो होने वाली है वो होने वाली है बड़े ही पते की, यानी कि सिम्टम्स की, कॉज की और ट्रीटमेंट की। लेते हैं आपसे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
9: नमस्कार, नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी है जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
10: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
9: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें।
10: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
9: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
10: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
9: जी।
10: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगे, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
9: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं। आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
10: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
9: जी
10: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच कम है वहाँ जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज ताकि फैलाव रोका जा सके।
9: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
10: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
9: जी।
10: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
9: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांवों में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
10: आकांक्षा जी यह बहुत गंभीर खतरा है
9: जी।
10: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पर सुन्न हो सकते हैं
9: जी,
10: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
9: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता
10: जी। जरूर
9: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में। स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
10: आकांक्षा जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया
9: जी।
10: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
9: जी,
10: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
9: जी।
10: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
9: जी
10: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
9: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
10: आकांक्षा जी उनकी भूमिका सबसे अहम है
9: जी।
10: यही बहनें त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
9: जी।
10: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
9: मैम अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
10: देखिए खानसा जी
9: जी,
10: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
9: जी,
10: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
9: जी,
10: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
9: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
10: आकांक्षा जी बहुत सही सवाल है आपका
9: जी।
10: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
9: बिल्कुल।
10: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
9: बिल्कुल।
10: याद रखिए, बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
9: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
10: जी आकांक्षा जी।
9: जी मैम आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
10: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।
9: जी
10: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
9: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
10: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है।
9: जी अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
10: देखिए आकांक्षा जी,
9: जी
10: मेरा संदेश बहुत साफ है
9: जी।
10: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
9: जी।
10: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
9: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
10: जी धन्यवाद मैम आप।
9: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
11: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
12: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
11: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
12: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
11: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
12: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं कॉलरा की। अभी हमने बात की कि कॉलरा होता क्या है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर इसके लक्षण क्या क्या हैं। देखिए, कॉलरा के सिम्टम यानी कि जो लक्षण होते हैं वो बहुत तेज़ी से दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों में इन्फेक्शन होने के कुछ घंटों बाद ही दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जबकि कुछ लोगों में 2 से 5 दिन तक लग सकते हैं इसके लक्षण दिखने में। सबसे कॉमन सिम्टम ये होता है दोस्तों कि आपको जब हैजा हो जाएगा तो आपको पतले पतले दस्त यानी कि लूज मोशन होने लग जाएंगे, और ये लूज मोशन बिल्कुल पानी जैसा होने लग जाएगा। कई बार इसे हम राइस वाटर स्टूल भी कहते हैं, क्योंकि इसका रंग बहुत ही हल्का हो जाता है। शुरुआत में मरीज को हल्का पेट खराब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे दस्त की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। सोचिए, अगर शरीर में इतनी तेजी से पानी निकल रहा है तो शरीर का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, और यही वजह है कि कॉलरा खतरनाक माना जाता है। दूसरा बड़ा सिम्टम है कि भाई बार बार आपको उल्टी आएगी। मरीज को दस्त के साथ साथ लगातार उल्टियां भी होंगी। इसमें शरीर के पानी और सॉल्ट की कमी तेजी से होने लग जाएगी। मरीज को कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा और शरीर हमेशा थका हुआ। अब सबसे गंभीर समस्या होती है दोस्तों, वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी। ये कॉलरा का सबसे डेंजरस सिम्टम है। डिहाइड्रेशन होने पर मरीज बहुत ज़्यादा, मरीज को प्यास लगने लगती है, होंठ सूखने लगते हैं, आँखें अंदर धंस जाती हैं और त्वचा भी सूखने लगती है। कई बार हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और शरीर भी कमज़ोर महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को मसल क्रैम्प भी होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि शरीर में सोडियम पोटेशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मरीज के पैरों में, हाथों में और पेट में दर्द और खिंचाव महसूस होने लगता है। अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो मरीज को चक्कर आने लगता है, वह ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कई बार मरीज कन्फ्यूजन में चला जाता है या फिर बेहोश भी हो सकता है। बच्चों में कॉलरा का सिम्टम थोड़ा सा अलग दिखाई दे सकता है। बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ सकते हैं और रोते समय उनमें आंसू नहीं निकलते क्योंकि शरीर में पानी बचता ही नहीं है। छोटे बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि उनका शरीर जल्दी ही डिहाइड्रेट हो जाता है। कुछ लोगों में ये सिम्टम बहुत ही हल्के होते हैं, उन्हें सिर्फ हल्के दस्त हो सकते हैं, लेकिन समस्या ये भी है कि ऐसे लोग भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इसीलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको कॉलेरा कितना भी हाई लेवल का या फिर कम लेवल का हुआ हो। अगर कॉलेरा का इलाज समय पर ना हो तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में किडनी फेलियर, शॉक और यहाँ तक कि मौत का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है दोस्तों कि सही समय पर अगर ORS, इलेक्ट्रॉल, पानी और इलाज मिलने लग जाए तो मरीज जल्दी ही रिकवर भी करने लग जाता है। कई बार लोग सामान्य दस्त समझकर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर दस्त लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उल्टी हो रही है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो इसे हमें सीरियस लेना चाहिए। खासकर अगर मरीज ऐसे इलाके में रहता हो जहाँ पे साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाता हो, गंदा पानी हो और साफ पानी की भी समस्या बनी रहती हो। सिम्टम दिखने पर सबसे पहले मरीज को पानी और ORS देना ज़रूरी है। शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार एंटीबायोटिक की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आसान भाषा में अगर कहें तो कॉलरा के सिम्टम का सबसे बड़ा संकेत है डायरिया, यानी कि दस्त और डिहाइड्रेशन। अगर इन संकेत को जल्दी पहचान लिया जाए तो मरीज को बचाना आसान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर ये क्यों होता है, इसका कॉज क्या है, क्योंकि हमने ये तो जान लिया सिम्टम क्या होता है, कॉलरा क्या होता है, लेकिन ये होता क्यों है? सिर्फ साफ सफाई या फिर और कोई रीज़न? तो भाई इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए, जो कॉलरा होने का सबसे बड़ा कारण होता है वो गंदा और संक्रमित पानी होता है। ये बीमारी वाइब्रो कॉलरा नाम के एक बैक्टीरिया से फैलती है। जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है तब इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये बैक्टीरिया शरीर तक पहुँचता कैसे है? इसका जवाब है दोस्तों, खराब हाइजीन और अनसेफ फूड एंड वाटर से। सबसे कॉमन कारण है कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि दूषित पानी पीना। कई जगह पर लोग नदी, तालाब, खुले स्रोतों से पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर उस पानी में सीवेज या फिर गंदगी मिल जाए तो कॉलरा का बैक्टीरिया तेजी से फैलने लगता है। दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों, कंटामिनेटेड फूड, यानी कि संक्रमित खाना। अगर खाना साफ पानी से ना बना हो या फिर खुले में रखा हो तो उस पर भी ये बैक्टीरिया आसानी से पहुंच जाते हैं। बिना ढका हुआ खाना या गंदे हाथों से खाना बनाना या खाना खाना इस इन्फेक्शन को फैला सकता है। पुअर सैनिटाइजेशन भी दोस्तों कॉलेरा के फैलने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। जहाँ खुले में शौच होता है वहाँ बैक्टीरिया पानी और मिट्टी में पहुँच जाते हैं, फिर वही पानी किसी दूसरे व्यक्ति का इन्फेक्शन उन तक पहुँचा देता है। इसीलिए सैनिटाइजेशन और साफ टॉयलेट फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। हाथ साफ ना रखना भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई व्यक्ति वॉशरूम के बाद हाथ नहीं ठीक से धोता है और फिर खाना बनाता है या खाता है तो बैक्टीरिया आसानी से आपके शरीर में फैल सकता है। इसीलिए हैंड वॉशिंग कॉलरा प्रिवेंशन का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। फ्लड्स और नेचुरल डिजास्टर के समय कॉलेरा का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। बाढ़ आने से साफ पानी और गंदा पानी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, इसीलिए इससे ड्रिंकिंग वाटर दूषित हो जाता है और इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलने लगता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में रेफ्यूजी कैंप्स और गरीब क्षेत्र वाले इलाके में ये बहुत जल्दी फैलने लगता है। वहाँ साफ पानी, हाइजीन और हेल्थ केयर की कमी होती है, इसीलिए कॉलरा बहुत तेजी से फैलने लगता है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ बाहर का खाना खाने से ही कॉलरा फैलता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर घर में पानी साफ ना हो तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि पानी की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सी फूड, खासकर कच्ची और अधपकी मछली जो होती है, ये भी कॉलरा का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। अगर वो कंटामिनेटेड वाटर से आए हैं, इसे ठीक से नहीं पकाया गया है और उसके बाद, तो फिर ये बैक्टीरिया को जल्दी ही फैला देते हैं हम इंसानों के बीच खाने के जरिए। एक और कारण है, वो है अवेयरनेस की कमी। देखिए, कई लोग साफ पानी का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते और हाइजीन रूल्स भी फॉलो नहीं करते हैं, इससे बीमारी फैलने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉलरा एक कंटेजियस डिजीज है, लेकिन ये हवा से नहीं फैलता, ये मेनली फूड वाटर के जरिए ही फैलता है। इसीलिए प्रिवेंशन पॉसिबल है अगर हाइजीन मेंटेन की जाए तो। अगर किसी इलाके में एक व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाए तो और हाइजीन ठीक से ना हो तो बैक्टीरिया पानी के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है, और यही वजह है कि कई बार कॉलरा आउटब्रेक भी बहुत तेजी से हो जाता है। इस बीमारी का सबसे बड़ा लेसन यही होता है कि पानी साफ हो, हाइजीन जिंदगी बचा सकती है। और अगर लोग बॉइल्ड वाटर पीते हैं, हाथ धोते हैं, खाना ढक कर रखते हैं, साफ सफाई से खाना बनाते हैं, तो कॉलरा काफ़ी हद तक रोका जा सकता है दोस्तों। तो ये थी बात कि कैसे ये होता है और क्या सिम्टम होता है और ये क्यों होता है। और अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी, वो है ट्रीटमेंट की। लेकिन ट्रीटमेंट पे बात करने से पहले मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कॉलरा पे, और कॉलरा बहुत तेज़ी से फैलता है।
13: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
14: नमस्कार, स्वास्थ्य और जागरूकता के हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी पर चर्चा करेंगे, जिसे हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। ये एक मच्छर से फैलने वाली लाइलाज बीमारी है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के अपर निदेशक मलेरिया और VBD डॉक्टर AK चौधरी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं

0: मलेरिया की स्थिति चिंताजनक है। देश के 345 जिले इससे प्रभावित हैं और लगभग 74 करोड़ लोग इसके जोखिम में हैं। ये रोग मुख्यतः हाथ, पैर, पुरुषों के अंडकोश और महिलाओं के स्तनों में देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, शरीर में इसके फैलने की प्रक्रिया क्या है?
1: तो जो हमारा क्यूलेक्स मच्छर होता है, उसकी फीमेल जब हमें काटती है तब ये एक दूसरे से ट्रांसमिट करती है। स्टेजेस इसकी बात करें तो हमारे शरीर में जो भी निमेटोड्स इसके बचरीने बैंक्राइफ्राई के जो एडल्ट वर्म्स होते हैं वो दिन में प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 50,000 अंडे देते हैं और वे अंडे जो हैं हमारे शरीर के अंदर लार्वा के रूप में डेवलप होते हैं। इसकी स्टेजेस होती हैं लार्वा 1, 2, 3, ठीक है, जो हमारे शरीर में रहती हैं। लार्वा की स्टेज 3 ही मच्छर के लिए इन्फेक्टिव होती है। जब मच्छर काटता है हमको तो अगर हमारे शरीर में लार्वा की थर्ड स्टेज अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो हमारे खून में दौड़ती रहती है, वही मच्छर जब कोई भी ब्लड मील लेता है तो उसके शरीर में जाता है और वहाँ डेवलप होता है। उसके बाद जब वो डेवलप होता है वहाँ भी उसका जो लार्वा है स्टेज मेटामॉर्फोसिस होती है, फिर वो नए आदमी के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए इन्फेक्टिव होता है। और जब वो मच्छर, इन्फेक्टिव मच्छर जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तब वो उसके अंदर लार्वा वो ट्रांसमिट करता है, फिर वही साइकिल शुरू होती है। वो लार्वा फिर डेवलप होगा एडल्ट वर्म में और वो इसमें टोटल समय जो है, मैं बताया मैंने, काटने के बाद 5 से 15 साल का समय लगता है जब हमारे शरीर में फाइलेरिया के लक्षण, जिनको हम एलिफेंटेसिस या हाइड्रोसील या किसी भी अंग का अचानक सूज जाना, मोटा हो जाना, ये होता है। हाइड्रोसील और हाथी पाँव मिल के दुनिया में सबसे अधिक विकलांगता पैदा करते हैं। विकलांगता मतलब लोको मोटर, आदमी चलने फिरने में एक तरीके से असहज होता है या एक तरीके से चलने फिरने उसका बंद हो जाता है। तो ये दूसरे नंबर की बीमारी है दुनिया में जो इस तरह की डिसेबिलिटी पैदा करती है, जिसमें लोग चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। दूसरी चीज़, उसके घर का भी लोग बहुत ही अफेक्टेड रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं। उसमें आर्थिक नुकसान भी होता है और अगर वो कमाई करने वाला आदमी है, पुरुष है, तो एक आर्थिक नुकसान भी होता है। सामाजिक नुकसान उसको इस तरीके से होता है कि लोग उसको अवॉइड करने लगते हैं, उसके परिवार से अवॉइड करने लगते हैं कि भाई इनके घर में तो हाथी पाँव है, किसी और को भी कोई उससे बातचीत नहीं करता है। हाथी पाँव महिला और पुरुष में दोनों बराबर रूप से होता है। हाइड्रोसील हाँ स्पेशली पुरुषों की बीमारी है, लेकिन महिलाओं में भी इसमें सेम टाइप की, पैरों में तो लगभग बराबर ही होता है, हाथों में भी होता है। महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें भी, स्तनों में भी आकार बहुत बड़ा हो जाता है, उनमें सूजन आती है और ये इस तरह का लिम्फेडिमा होता है। बच्चों में भी पाया जाता है, बच्चों में लिम्फेडिमा होता है। तो बच्चों में इसका असर तो मानसिक रूप से भी विकलांगता के रूप में देखा गया है। जहाँ ये बीमारी खासतौर से एंडेमिक है, जिन जनपदों में या जिन प्रदेशों में या जिन कंट्रीज में, वहाँ के बच्चों की मानसिक स्थिति अन्य बच्चों की तुलना में अक्सर कम होती है।
0: यही सबसे डरावनी बात है कि एक बार यदि फाइलेरिया हो जाए तो इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन बचाव पूरी तरह संभव है। और बचाव का सबसे बड़ा हथियार है सर्वजन दवा सेवन अभियान। डॉक्टर साहब, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: फाइलेरिया को ग्लोबली खत्म करने के लिए या उन्मूलन करने के लिए हमने 2030 का, WHO की तरफ से 2030 का टारगेट रखा गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी टारगेट को, हम हिंदुस्तान से फाइलेरिया मिटाने के लिए 2027 रखा है और हम लोग 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पब्लिक को, हम जो स्वस्थ पब्लिक है उसको कैसे इस बीमारी से बचाएं, उस बचाने के लिए जो हमारे पास एविडेंसेस हैं कि अगर हम साल में एक बार फाइलेरिया रोधी दवाएँ, जनरली इसमें 3 तरह की दवाएँ यूज़ होती हैं, और उन सब दवाओं को साल भर में अगर एक बार सारी पब्लिक को खिला दिया जाए तो ये एक तरीके से, जिसको मास ड्रग एडमिशन MDA भी कहते हैं, इसमें 2 तरह की, मैंने रेजिम बताया, कुछ में 3 ड्रग्स यूज़ होती हैं, कहीं कहीं कहीं कहीं 2 ड्रग्स यूज़ होती हैं। ड्रग्स के नाम भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो DEC हमारी पहली ड्रग है, एल्बेंडाजॉल दूसरी ड्रग है और आइवरमेक्टिन तीसरी ड्रग है। तो कहीं कहीं 3 ड्रग हम लोग तीनों यूज़ करते हैं, कहीं कहीं किसी किसी जनपद में 2 ड्रग यूज़ करते हैं जिसमें DEC और एल्बेंडाजॉल होती है। और इस को हम एक तरीके से कैंपेन के रूप में लेते हैं और एक निश्चित दिवस को 10 दिन के अंदर सारे जनमानस को कवर करते हुए सभी स्वस्थ व्यक्तियों को दवाई खिलाने का काम करते हैं। दूसरा पिलर इसका वो है कि जिसपे, जिन लोगों को फाइलेरिया ऑलरेडी हो चुका है या जो इसके रोगी हैं या भुक्तभोगी हैं,

0: उन लोगों को हम एक तरीके से उस रोग से लड़ने के लिए कैसे बेहतर तरीके से वो तैयार रहें, जिससे कि समाज में और उनके घर में आर्थिक स्थिति में और उनके लोकोमोटर जिसके जो डिसेबिलिटी वाली बात है वो कम से कम हो, उसके लिए उन्हें कम से कम अस्पताल जाना पड़े, कम से कम उनका समय नष्ट हो, इसके लिए अपने उस पैर की या अपने उस जो भी उनका जहाँ भी फाइलेरिया है उस पार्ट को बेहतर देखभाल करने के लिए हम उसको ट्रेनिंग कराते हैं साल में एक बार, और उनको एक किट देते हैं जिसको हम लोग MMDP किट के नाम से जानते हैं। तीसरे पिलर के रूप में इसमें मेडिकल कॉलेज का एंगेजमेंट किया गया है। मेडिकल कॉलेज के एंगेजमेंट खास तौर से इसलिए किया गया है कि ये लोग अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस करेंगे, मतलब केसेस को हमें बिल्कुल शुरुआत स्टेज में बताएंगे या डायग्नोस करेंगे, जिससे कि फाइलेरिया उस रूप में ना पहुंच पाए कि लोगों को कोई भी डिसेबिलिटी डेवलप हो पाए। तीसरा काम मेडिकल कॉलेज को दिया गया है कि जो हम लोग MDA राउंड करते हैं, MDA का मतलब है जो हम मास ड्रग एडमिशन का राउंड फरवरी और अगस्त के महीने में करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं कि वाकई में जो हमारा जनमानस है उसमें कितने प्रतिशत लोगों ने दवाई खाई है। चौथे पिलर के रूप में हमने इसमें हाई लेवल एडवोकेसी को एक तरीके से इंक्लूड किया है। हाई लेवल एडवोकेसी में हमारे जितने भी मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हाई लेवल एडवोकेसी में जनप्रतिनिधियों से कहा जाता है, चाहे वो प्रधान लेवल से लेकर सांसद लेवल तक के सभी जनप्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित किया गया, सभी को हम लोग एजुकेट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस अभियान में वो लोग अपना भरपूर सहयोग दें। चौथे पिलर के रूप में हमने अपने इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के रूप में लिया है, जिसमें हमने सारे डिपार्टमेंट्स को जो इस अभियान में एक तरीके से हमको कोऑपरेट कर सकते हैं, इसको जन आंदोलन बनाने में हमें सहयोग कर सकते हैं, इसमें मुख्यतः दो तरह के डिपार्टमेंट हैं। एक तो जो वेक्टर कंट्रोल करते हैं, खासतौर से मच्छरों का कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारा पंचायती राज और नगर निगम। दूसरा जो IC का काम कर सकते हैं, जैसे शिक्षा विभाग। शिक्षा में हम तीनों प्रकार की शिक्षाएं, चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, तीनों शिक्षा के लोग हमको सहयोग करते हैं। बेसिक शिक्षा वाले बच्चे टीचर्स अपने बच्चों को प्रार्थना में डेली फाइलेरिया के बारे में बताते हैं, समय पर इनसे रैली निकलवाते हैं, ठीक है, और दवाई खाने के लिए प्रेरित करते हैं। MDA मतलब होता है सर्वजन दवा सेवन अभियान। ये साल में एक निश्चित तिथि को होता है। हम अभी तक अपने प्रदेश में, जैसे हमारे प्रदेश में 75 में से 51 जनपद हमारे एंडेमिक हैं फाइलेरिया के लिए, जहाँ फाइलेरिया के रोगी अधिक रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है NBS होता है, कि इसमें हम तय करते हैं कि दवाई खिलानी है या नहीं खिलानी है, खिलानी भी है तो कौन सी खिलानी है, 2 ड्रग खिलानी है या 3 ड्रग खिलानी है। ये हम डिपेंड करता है कि उसकी पॉजिटिविटी कितनी आई है, पॉजिटिविटी मतलब एक तरीके से कितने लोगों में अभी फाइलेरिया वहाँ पर एंडेमिक है, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ इसमें NBS के बाद जब ये तय हो जाता है कि इतने इन लोगों को दवाई खिलानी है, तो सबसे पहले काम होता है हमारा कि हम उसकी अच्छी तरीके से माइक्रो प्लानिंग करें। माइक्रो प्लानिंग के नाम पर बहुत सारे काम होते हैं। इसमें एक तो हम माइक्रो प्लान बनाते हैं अपना कि किन लोगों को दवाई खिलानी है, कौन दवाई खिलाएगा, कैसे खिलाई जाएगी, कब से कब तक खिलाई जाएगी। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि पब्लिक को हम अवेयर कैसे करें, उसके लिए IC करते हैं। IC बैनर, पोस्टर, रेडियो, TV सारे माध्यमों का उपयोग करके हम लोगों को जागरूक करते हैं एक तरीके से। तीसरा पार्ट जो होता है इसमें हम जन आंदोलन के रूप में बनाने के लिए जनता के मतलब जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको शामिल करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि वो भी अपने अपने मंचों से अपने अपने इस तरह की अपील करें कि लोगों को अगर आपको फाइलेरिया से बचना है या फाइलेरिया अपने एरिया से अपने क्षेत्र से समाप्त करना है तो सभी लोगों को निडर होकर दवाई खानी चाहिए। तीसरा इसके अलावा हम जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, सभी डिपार्टमेंट्स मिलके एक तरीके से काम करते हैं। इसमें दो तरह के डिपार्टमेंट्स को हमने अगर बांटना चाहें तो दो ग्रुप में बांटते हैं। एक डिपार्टमेंट्स वो होते हैं, विभाग वो होते हैं जो हमको मच्छर कंट्रोल करने में एक तरीके से सहायता करते हैं। मच्छर कंट्रोल करने में जैसे गांव में हमारा पंचायती राज विभाग है, साफ़ सफाई करवाता है, मच्छरों के लिए स्प्रे करवाता है, और जैसे इसी के लिए शहर में हमारे पास नगर निगम और नगर पालिकाएँ होती हैं जो यही काम शहर के अंदर अर्बन एरिया में करती हैं। दूसरा डिपार्टमेंट लोगों को जागरूक करता है अपने अपने माध्यम से, जैसे किसान हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, शिक्षा डिपार्टमेंट है, तो ये सब हमारे जो हैं लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों के माध्यम से रैली निकालते हैं, किसानों के माध्यम से उनकी मीटिंग्स में उनको बताया जाता है कि फाइलेरिया कैसे फैलता है, तो अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए सभी लोगों को दवाई खानी है, तो सभी लोग सहयोग करते हैं।
1: बिल्कुल सही, और मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी कि इस दवा के सेवन से खून में मौजूद माइक्रोफाइलेरिया की संख्या घटती है और रोग का प्रसार रुक जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि यदि प्रभावित जिलों में 90% पात्र जनसंख्या लगातार 5 वर्षों तक DA या 3 वर्षों तक IDA की खुराक ले ले, तो इस रोग को जड़ से मिटाया जा सकता है।
2: डॉक्टर साहब, अक्सर लोग दवा के साइड इफेक्ट से डरते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: जहाँ तक दवाई की सुरक्षा का प्रश्न है, दवाई कितनी कारगर है या कितनी सुरक्षित है, इसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये तीनों दवाइयाँ, जैसे मैंने अभी अपने स्टार्टिंग में बताया था कि DEC, एल्बेंडाजॉल और आइवरमेक्टिन, तीनों दवाइयाँ 100% सुरक्षित हैं। इन दवाइयों से किसी को कोई भी नुकसान नहीं होता। जहाँ तक इसमें दवाई के लिए हम 3 तरह के लोगों को छोड़ते हैं खास तौर से, एक तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं देते हैं, दूसरा जो हमारे 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको हम ये फाइलेरिया रोधी दवाएं नहीं देते हैं, लेकिन 1 साल से 2 साल के बच्चे को हम सिर्फ एल्बेंडाजॉल की दवाई जरूर देते हैं, पेट में कीड़े वाली दवाई देते हैं। तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, ऐसे लोगों को हम ये दवाई नहीं खिलाते हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया कि तीनों ड्रग्स बेहद सुरक्षित हैं, किसी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को दवाई खाने पर कुछ परेशानियां होती हैं। जैसे 8 गोली यदि कोई व्यक्ति एक बार में एक साथ खाता है और उसका पेट बिल्कुल खाली है, तो ये दवाएं पेट में इरिटेशन करती हैं एक तरीके से, इसलिए हम लोग इसको एक तरीके से सुविधा के तौर पर लोगों को बताते हैं कि कभी भी दवाई को खाली पेट ना खाएं, खाना खाने के बाद ही खाएं। तीसरे तरह के सिम्टम आते हैं कभी कभी ADR के नाम पर, कि उसको जब दवाई खाने के बाद शरीर में खुजली होती है, चकत्ते पड़ते हैं या फफोले पड़ जाते हैं। ये तभी संभव है जब उसके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया नाम की चीज़ पहले से रही हो, उसको फाइलेरिया का इन्फेक्शन पहले से हो, तो जब भी हम ये दवाई खाएंगे वो माइक्रोफाइलेरिया और उसके एडल्ट वॉर्म एक निश्चित समय बाद, वो 1-2 दिन बाद मरना शुरू होते हैं। मरने पर हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को कभी कभी ADR के तौर पे मान लिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से खुजली और ये चकत्ते पड़ते हैं। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये शुभ संकेत है कि हमारे शरीर में इन्फेस्टेशन था, हमने सही समय पे दवाई खा ली, एलिफेंटेसिस से हम बच गए। देखिए, जैसा कि आप जानते, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज मतलब न ठीक होने वाली बीमारी है, मच्छर से फैलती है, तो पहले तो ये जो भ्रांति है कि हम इस मरीज को, जो भी जिसको फाइलेरिया होता है, जिसको हाथी पांव होता है, उसके साथ भेदभाव दुर्व्यवहार करते हैं, ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये एक दूसरे को छूने से या उसके साथ रहने से, उसके पास बैठने से ये बीमारी नहीं लगती है, तो ये भ्रांति जो है एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म होनी चाहिए। आपके गांव लेवल पर एक आयुष्मान केंद्र स्थापित किया गया है, जिस पर एक CHO पोस्ट होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से इसकी पोस्टिंग है, और वो आपको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उसको भी हमने फाइलेरिया रोग के तहत इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, उसको ट्रेन किया है, उसको सब कुछ बताया उसके बारे में, वो आपको, और दवाएं भी उसके पास डिपो रहता है, ये दवाएं भी आपको कभी भी ज़रूरत है तो ये दवाएं भी उसके पास रहती हैं। सारे लोग जो इस फाइलेरिया प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनको इस आयुष्मान केंद्र के एक तरीके से सम्मिलित होके, आयुष्मान केंद्र की सेवाओं में सम्मिलित होके, चाहे वो आशा हो, चाहे वो ANM हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, टीचर हों, उस गांव के कोटेदार हों, ये सारे लोग जैसे हमको इसको सहयोग करते हैं, तो ये सब लोग मिलके आयुष्मान केंद्र के साथ काम करके जनता को जागरूक करें, उनको दवाई खिलाने में सहयोग करें, यही एक तरीके से हम लोगों ने इसमें प्लान किया है। देखिए MDA अभियान हमारा जैसे मैंने बताया कि निश्चित अवधि के लिए होता है, ये सिर्फ 10 वर्किंग डे में चलता है। कभी कभी जब ज़्यादा मतलब जनमानस ज़्यादा छूट जाता है दवाई खाने से, तो हम उसमें एक मॉपअप के लिए राउंड भी प्लान करते हैं 2 दिन या 3 दिन का। तो मैक्सिमम 15 दिन मान के चलिए कि मैक्सिमम 15 दिन हम लोग ये दवाई खिलाते हैं। अब लेकिन समस्या ये आती है कि क्या लोगों को दवाई इसके बाद भी मिल सकती है? हाँ, हमारे प्रत्येक सरकारी अस्पताल में ये दवाई निःशुल्क हमेशा उपलब्ध रहती है, पूरी साल उपलब्ध रहती है। लेकिन समस्या यही है कि लोग स्वयं अपने आप आना नहीं चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो लोग वाकई में जिनके काम में जिनके एरिया में क्षेत्र में दवाई खिलाई जा चुकी है, उनका क्षेत्र फाइलेरिया के लिए एंडेमिक है, उन लोगों को अस्पताल जाके ये दवाई स्वयं खानी चाहिए। अब इसमें जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसमें दो तरह के लोग होते हैं। तो ब्लॉक लेवल स्ट्रेटजी होती है, इसमें ब्लॉक का मेडिकल अफसर इसमें सारी गतिविधि देखता है, उसको आशा और उसके साथ काम करने वाले लोग बेसिक पब्लिक के साथ इंटरेक्ट होके उसको जुड़ के उसको दवाई खिलाते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा जिला मलेरिया अधिकारी इसके लिए खास तौर से रिस्पॉन्सिबल होता है, जिला मलेरिया अधिकारी और ACMO वेक्टर बोर्ड। पब्लिक की भागीदारी अभी भी इसमें कम है। पब्लिक की भागीदारी मेरे हिसाब से तो इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आप उसको ये पता है कि हमारे जनपद में फाइलेरिया रोग है या फाइलेरिया रोगी हमारे गांव में पाए जाते हैं, तो उस गांव के हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है या जिम्मेदारी होती है कि वो जाके अपनी दवाई स्वयं खाए, कहे भाई मुझे दवाई दे दो, मुझे दवाई खाने। मैं कल मेरे घर में कल टीम गई थी, मैं घर पर नहीं था, मुझे आज दवाई दे दो। तो इस तरह का एक तरीके जब तक अभियान नहीं चलेगा तब तक लोग मतलब इस लेवल तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक अभियान की सफलता पर थोड़ा सा प्रश्न रहेगा या थोड़ा सा कठिन होता है इस तरह के अभियान को सफल करने में। तो किसी भी अभियान को सफल करने के लिए मतलब दो तरीके, एक तो पब्लिक की भागीदारी और दूसरा पब्लिक द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो हैं अपने अपने जनप्रतिनिधियों से बात करें और जनप्रतिनिधि से कहूँगा कि भाई वो अपने अपनी जनता को इसके लिए जागरूक करें और उनको प्रेरित करें कि इस तरह की दवाई जो भी खिलाई जा रही है वो बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल एक तरीके से किसी भी दुष्परिणाम से रहित है, उसको जरूर खाएं।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। श्रोताओं याद रखिए, फाइलेरिया का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है। जब भी आपके घर पर टीम आए दवा जरूर खाएं और भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी, लेके आ चुकी हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी। जी हाँ, स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज है दिन शनिवार और शनिवार के दिन बात होती है आपकी हेल्थ की। आज का विषय है कॉलरा, क्योंकि कॉलरा बहुत जल्दी ही फैल रहा है। देखिए अभी तक हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि ट्रीटमेंट की। कॉलरा का इलाज जल्दी शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी शरीर के पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकाल देती है। समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो ज़्यादातर मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। कॉलरा का ट्रीटमेंट सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है डिहाइड्रेशन को रोकना। जब मरीज को बार बार दस्त होते हैं, उल्टियाँ होती हैं, तब शरीर से पानी और सॉल्ट बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले मरीज को ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। ORS शरीर में पानी और ज़रूरी मिनरल्स की कमी को पूरा कर देते हैं। ORS के छोटे छोटे घूंट कई बार पिलाने चाहिए, लेकिन अगर घर में बच्चा है और बच्चा कॉलरा से पीड़ित है तो उसे लगातार ORS ही देना चाहिए। कई बार लोग सिर्फ पानी पिला देते हैं, लेकिन सिर्फ पानी काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि शरीर में सॉल्ट की भी ज़रूरत होती है। अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो उसे हॉस्पिटल में आईवी फ्लूइड भी दिया जाता है। आईवी यानी कि सलाइन सीधे नसों के ज़रिए शरीर में पहुंचा दिया जाता है, इससे शरीर में पानी की कमी बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है। कुछ केस में डॉक्टर एंटीबायोटिक भी देते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है और जल्दी ही आपकी बॉडी में पानी की भी कमी पूरी कर देता है। देखिए दोस्तों, जिंक सप्लीमेंट भी खासकर बच्चों में के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। इससे डायरिया भी कम हो जाता है और बच्चों को आराम मिलता है। ट्रीटमेंट के दौरान मरीज को आराम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शरीर पहले से ही कमज़ोर होता है, इसीलिए ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं करनी चाहिए। मरीज को साफ और हाइजीनिक जगह पर रखना चाहिए। डाइट भी ट्रीटमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। मरीज को हल्का और आसानी से पचने वाला खाना देना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी हो गया, दाल का पानी, केला, नारियल का पानी और सूप। बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए। कॉलरा में सबसे बड़ा खतरा डिहाइड्रेशन होता है, इसीलिए मरीज की हालत पर नज़र रखनी चाहिए। अगर मरीज बहुत ज़्यादा सुस्त है और बेहोशी जैसी हालत हो रही है तो उसे तुरंत बिना किसी देरी के हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। घर पर ट्रीटमेंट करते समय हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। मरीज के इस्तेमाल की चीज़ें साफ रखनी चाहिए और हाथ अच्छे से धोना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि कॉलरा होने का मतलब जान का खतरा है, लेकिन सच ये है कि सही ट्रीटमेंट मिलने पर ज़्यादातर लोग रिकवर भी हो जाते हैं। WHO के अनुसार सही हाइड्रेशन थेरेपी से मौत का खतरा बहुत कम हो जाता है। अगर किसी इलाके में कॉलरा फैल रहा है तो हेल्थ वर्कर लोगों को ORS पैकेट, सेफ वाटर और हाइजीन रहने की जानकारी भी देते हैं। अवेयरनेस भी इस ट्रीटमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अवेयरनेस से जो है इस इन्फेक्शन की प्रिवेंशन किया जाता है और प्रिवेंशन से इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। तो आसान शब्दों में कहें दोस्तों, तो कॉलरा का सबसे बड़ा इलाज है शरीर में पानी की कमी को पूरा करना। ORS, IV फ्लूइड, सही डाइट और डॉक्टर की सलाह से मरीज जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने इस बीमारी को इग्नोर किया, डिले किया और बस ऐसे ही चलने दिया, डॉक्टर की सलाह नहीं ली, तो फिर आपको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब ट्रीटमेंट के बाद हम बात करते हैं दोस्तों डाइट की, क्योंकि डाइट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप जो है कॉलरा से जूझ रहे हैं। देखिए, कॉलरा में डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस बीमारी में शरीर का बहुत ज़्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं। सही खाना, सही फ्लूइड मरीज को जल्दी रिकवर करने में मदद करता है। सबसे जरूरी चीज़ है हाइड्रेशन। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी और फ्लूइड देना चाहिए। ORS सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि शरीर में सॉल्ट की भी कमी को पूरी करता है। नारियल पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, शरीर को एनर्जी देते हैं। इसके अलावा लेमन वाटर और साफ सूप भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं खाने की। देखिए, मरीज को हल्का और आसानी से पचने वाला खाना ही देना चाहिए। खिचड़ी कॉलरा पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये हल्की होती है और पेट पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डालती है। साथ ही साथ अगर केला मिल जाए तो केला भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है मरीज के लिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और दस्त की वजह से शरीर से बहुत ज़्यादा पोटेशियम्स निकल जाते हैं और इसीलिए उन्हें वीकनेस भी आने लगती है। इसीलिए केला वीकनेस कम करने में मदद करता है। उबला हुआ आलू, चावल, दाल का पानी भी अच्छे ऑप्शंस हैं मरीज के लिए, क्योंकि ये शरीर को एनर्जी देते हैं और डाइजेशन भी इसका बहुत ही आसानी से हो जाता है। कर्ड यानी कि दही भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। लेकिन अगर मरीज को दही खाने में परेशानी हो रही है तो इसे आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी और फ्राइड चीजें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा खाने से पेट में ज्यादा असर पड़ता है और दबाव पड़ता है, और अगर दबाव ज्यादा हुआ तो दस्त भी बढ़ सकता है। स्ट्रीट फूड और बाहर का खाना जो कि खुले में रखा हो उसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोलरा में हाइजीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन और अल्कोहल जैसी चीजों को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती है। मरीज को थोड़ा थोड़ा खाना बार बार देना चाहिए, एक साथ ज्यादा खाना देने से पेट पर दबाव पड़ सकता है। बच्चों के मामले में ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करनी चाहिए, माँ का दूध बच्चे के में न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी दोनों बढ़ाता है, इसीलिए बच्चों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। रिकवरी के दौरान प्रोटीन रिच फूड भी धीरे धीरे डाइट में शामिल करने चाहिए, जैसे दाल, बॉयल अंडे और सॉफ्ट कुक्ड फूड। फल खाने हो तो सिर्फ साफ और छिले हुए फल देना चाहिए, जैसे कि केला या सेब। कटे हुए बाहर से फल लाना आप अवॉइड करें, क्योंकि इसमें ये बैक्टीरिया हो सकते हैं। डाइट के साथ क्लेनलीनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना हमेशा साफ पानी से बना होना चाहिए, साथ ही साथ फ्रेश खाना ही खिलाना चाहिए। बचा हुआ बासी खाना जो कि दो दिन पुराना हो या फ्रिज में रखा हो, मरीज को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि कोलरा में खाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। शरीर को रिकवर होने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए सही डाइट भी इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है, इसके क्योर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर मरीज लगातार उल्टियाँ कर रहा है तो और कुछ खा पी नहीं पा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से हमें संपर्क करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोलरा में डाइट का मेन गोल होता है शरीर में पानी और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना। तो दोस्तों, ये थी बात डाइट की और ट्रीटमेंट की। आई होप आपने ये चीज़ को समझा होगा, कुछ सीखा होगा, और अगर आपको या अगर आपके किसी अपने को कोलरा होता है तो आप उससे निपट सकते हैं। याद रहे कि जब तक हालात काबू में हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर आपका मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बेहोशी वाली हालत हो गई है, तो उसे ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, घर में इलाज ना करें, क्योंकि कभी कभी ये हालात काबू में नहीं आते और इंसान की जान पे भी बन जाती है। फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे जाने का, फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में लेके एक नई इन्फॉर्मेशन को। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, साफ खाना खाइए, साफ पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
7: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
6: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
7: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
6: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
7: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
6: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
7: जी हाँ बिल्कुल, अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
6: जी, तो मैम अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
7: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
6: तो मैम मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
7: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक संकल्प है, हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाने का, हर चेहरे पर मुस्कान लाने का। दोस्तों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम समुदाय के बीच जाकर लोगों के जीवन से जुड़कर उनकी दिनचर्या, उनकी परेशानियों और उनके स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों को समझने का एक सच्चा प्रयास है। हम न केवल उन्हें स्वस्थ रहने के आसान और प्रभावी उपाय बता रहे हैं बल्कि उनके मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को भी ध्यान से सुन रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच जब हमने टीकाकरण पर लोगों से बातचीत की तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे, कभी संकोच, कभी डर, तो कभी जिज्ञासा। तब हमने इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया और ये वादा किया कि हम उनके सभी प्रश्नों का जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जिस पर अगर अभी ध्यान न दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे सवाल पूछती रहेंगी। दोस्तों, आज का ये खास पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बच्चों को होने वाले टीकाकरण को हल्के में लेते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। और अगर स्वास्थ्य कर्मी घर तक पहुंचे तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को टीके की जरूरत नहीं है। तो अगर आज आपके मन में भी इम्यूनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, और आपसे बातचीत कर रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी कि CFAR की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर टीकाकरण से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें, अपने संदेह दूर करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर मजबूत कदम बढ़ाएं।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
1: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
2: जी,
1: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं। जानते हैं बच्चे की जान बचेगी, फिर भी हिचकिचाते क्यों?
2: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो अभी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे बच्चे को, अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
1: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
2: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती हैं। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
1: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
2: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
1: हाँ,
2: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने तो भैया।
1: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में, और दूसरी चीज अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम?
2: देखिए जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
1: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
2: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा, दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
1: बिल्कुल।
2: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
1: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि बच्चे, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे। और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए, हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं। इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को, क्योंकि स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
2: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित, एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दें कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते। तो आपने जैसे कहा कि सास कह दे कि हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन से तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी, गप्पे मारोगी, इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहां थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है, फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दोनों वर्किंग हैं, काम कर रहे होते हैं, वो तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: धन्यवाद मैम। एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
2: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है। कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है, और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल,
2: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है, तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया, तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
2: बिल्कुल करता है। जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा, उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, एएनएम दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
1: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा।
2: बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं। ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी। तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए, तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
1: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है, माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक, आप मतलब टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगे। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और एनम की भी होती है, क्योंकि वो रोज हमसे मिलते हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हों।
2: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है, वेरी नाइस, लड़का हुआ है, बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गाँव में, घरों में माओ का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय की वो रीअश्योर कर देगी और हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवीं बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना, और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फलां को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज है। आशा दीदी लोग जो भी हमारी प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। इसमें क्या जो समुदाय का वृहद, मतलब इनकी तो एक तरह से कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है, लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है, क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं?
2: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहां के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहां के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
1: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एक होते ना कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए, या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
2: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा, तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है, कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियां ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात कि टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर, जब माएं राशन लेने जाती है ना वहां पर दूसरी माओं से बातचीत होती है, तो वहां एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा अरे हम तो उस दिन गए थे फला दिन तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाती इसलिए है कि हमें राशन लेने जाना है, और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है, और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहाँ दूसरों से जब बातचीत करती है, जो उसके मन में शंकाएं होती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फलां के बच्चे को लगवाया था देखो और फलां ने नहीं लगवाया, देखो आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है, जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो, तो बहुत समझदार है माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, माँ तो माँ ही होती है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है, और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया, वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है, वो भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी मैम, एक और चीज में मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझे हम, तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है, किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
2: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रिएश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको, किससे ना बार बार रिएश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रीअश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे, और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रिएश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण

वातावरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेकर होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाएगा। तो तीन चीज़ें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज़ को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज़ हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूले 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाए। गर्मी के लिए क्या ही कह सकते हैं, हाई गर्मी, और गर्मी ने अपना पूरा प्रचंड रूप दिखा दिया है। तो भाई प्रचंड रूप अभी नहीं दिखेगा तो कब दिखेगा? कहते हैं ना, हर किसी का सीजन होता है बोलने का, काम करने का, चलने का। तो भाई गर्मी का भी अभी सीजन है। अगर गर्मी नहीं आएगी तो फसलें कैसे हो पकेंगी, ये भी तो बात है ना। और गर्मी नहीं आएंगी तो आम कैसे बनेंगे, आम कैसे पकेंगे, अनाज कैसे फसल होगी। तो ये सारी चीजें ना ईश्वर ही ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो जब हाँ, लेकिन जो हम जैसे जीव है ना, जो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हाई गर्मी हाई गर्मी, तो उनके लिए उपचार एक ही है कि आप बैठें अपने कूलर में, एसी में, और कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहने, जो बिल्कुल हल्के फुल्के कपड़े हों, यानी कि टाइट कपड़े ना पहने, जिससे थोड़ी गर्मी का जो असर है वो भी कम दिखेगा। साथ में हो सके तो आप छाता लेके निकलें, मतलब जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, वो छाता लेके निकलें। अगर आप कवर कर रहे हैं तो भी अपने सर को ढक करके ही निकलें। ये गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो इसलिए है क्योंकि अभी शायद मैंने सुना था 25 तारीख से क्या लगने वाला है, नौतपा।
7: हाँ,
6: क्या नौतपा क्या होता है?
7: जिसमें 9 दिन आई थिंक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है।
6: हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो बताओ क्या होता है उसमें? और
7: मुझे तो यही पता है मैम कि 9 दिन बहुत पीक पे गर्मी होती है, इसलिए उसको कहते हैं नौतपा। मतलब 9 दिन जो है वो धरती बहुत ज्यादा तपती है।
6: वैसे कौन सी ठंडी है?
7: नहीं वैसे तो नहीं है,
6: यूवी किरणें और ज्यादा करीब आ जाती हैं। ये
7: ऐसे कहते हैं कि सूरज धरती से थोड़ा और मतलब उसके पास आ,
6: अभी और क्या ही करेंगे पास आके। अभी मैंने एक रील देखा तो उसमें एक लेडी कह रही है, हनुमान जी से प्रेयर कर रही है कि हनुमान जी अब आप प्रकट हो जाइए और सूर्य देव को पहले की तरह फिर से अपने मुंह में निगल लीजिए,
7: हाँ
6: तो ताकि हम जैसे जीव बच सके। तो ऐसी एक रील अभी मैंने देखी, हमने कहा वाह मतलब अब यही बाकी रह गया है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सूर्य देव भी क्या करें, क्योंकि उन्हें भी ये आदेशानुसार मिलता है, इसीलिए ये होता है ऐसा। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। और इस प्यारी सी दोपहर में, क्योंकि हम अंदर बैठे हैं, एसी में बैठे हैं और अच्छी अच्छी हवा खा रहे हैं, तो भाई प्यारी सी दोपहर है। दोपहर तो उनके लिए खतरनाक होती है जो इस समय बाहर आवागमन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इस धूप का रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि और वो नीचे ना आए, तो प्यारी सी दोपहर को एक बार विश करते हैं कि साथ एक ही फ्रेम में
7: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आ गए हम, और आज तो भाई जोश होने वाला है सुपर की। आज है हमारा सुपर से भी ऊपर वाला सैटरडे, बिल्कुल सुपर से भी ऊपर होगा, क्योंकि आज कोई ज्ञान नहीं है हमारे पास, कोई बातें नहीं है, मतलब कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं है जिन पर हम आपको सीरियस वाला ज्ञान देंगे।
6: हाँ,
7: आज हमारा सब कुछ बहुत कहते ना, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, जॉली जॉली मूड है। आपने कभी किसी को सुना होगा कहते हुए आज मूड बहुत अच्छा है, तो वो हम आज के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, मूड तो रोज ही अच्छा रहता है, बट आज यू नो
6: आज कुछ खास है।
7: आज कुछ खास है, खास क्या है, खास ये है कि भाई बहुत ज्यादा जो है कहते हैं ना कि जब गर्मी बहुत होती है तो थोड़ा कूल कूल होने का मन करता है, तो आज हम आपको कुछ कूल कूल करेंगे, कूल कूल बातों के साथ, और आपका मूड हो जाएगा कूल, क्योंकि कूल होने की हमें इस समय है बहुत ज्यादा जरूरत। तो चलिए अब सबसे पहले हमारे देख लेते हैं आज कूलिंग वाले सैटरडे में क्या है। तो आज है सबसे पहले हमारी पोइट्री। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन हम लेते हैं थोड़ा लव शव, थोड़ा इश्क इश्क, थोड़ा प्यार व्यार बातें करेंगे, तो पोइट्री भी कुछ उसी को बयां करती है। तो आइए देखते हैं कि प्यार के किस खूबसूरत एहसास को ये बयां करती है।
6: कौन करेगा,
7: कौन करेगा, हमारी पोइट्री,
6: इसको इस खूबसूरत पोइट्री को कौन बयां करेगा,
7: आरजे समता।
6: तो चलिए हम आपको बता देते हैं आज की पोयम को, जो की है प्यार का एहसास। प्यार एक ऐसा एहसास है जो सबसे खास होता है और बकवास भी होता है। ये थोड़ी सी लाइन मैंने जोड़ दी थी लास्ट में,
7: अच्छी थी।
6: जब तुम पास ना हो तब भी तुम्हारा एहसास होता है, बिल्कुल बकवास है। दुनिया की इस भीड़ में जब तुम्हारा साथ मिलता है तो धोखा लगता है, ये मेरी लाइन थी। जब लगता है ऐसे दिल को सुकून का रास्ता मिलता है, फिर बाद में अंधकार में इंसान डूब जाता है। तेरी मुस्कुराहट से, देखिए मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, क्योंकि जो दिल टूटे हुए लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही शायरी पढ़ते हैं। आइए जो दिल जुड़े हुए हैं उनके लिए, कि जिनकी जिंदगी में प्यार ही प्यार है उनके लिए, तो मैं भी मजाक कर रही थी, चलिए फिर से पढ़ते हैं इस प्यारी सी प्यार का प्यार के एहसास को। तो जो पोयम मैं लेके आई हूँ ना, अब उसको पढ़ने का सही वाला समय आ गया है।
7: ओके।
6: प्यार एक ऐसा एहसास है जो सबसे खास होता है, जब तुम पास ना हो तब भी तुम्हारा एहसास होता है। दुनिया की इस भीड़ में जब तुम्हारा साथ मिलता है तब लगता है जैसे दिल को सुकून का रास्ता मिलता है। तेरी मुस्कुराहट से ही मेरी हर सुबह होती है, तेरी बातों से ही दिल की हर खुशी जवां होती है। जिंदगी अधूरी थी तेरे आने से पहले इस जहान में, अब हर लम्हा लगता है जैसे कोई खूबसूरत दास्तान होती है। ना कोई शर्त है इसमें ना कोई मजबूरी है, ना कोई शर्त है इसमें ना कोई मजबूरी है, प्यार में तो बस एक दूसरे की खुशी जरूरी है। दो जिस्म एक जान बन जाते हैं जब दो दिल, तब समझ आता है कि चाहत कितनी पूरी होती है। हर जन्म में मुझे बस तेरा ही साथ चाहिए, हाथों में हमेशा तेरा ही हाथ चाहिए। मिटे ना कभी जो ऐसी एक लकीर बन जाए, चलो हम दोनों मिलकर एक प्यारी सी तकदीर बन जाए।
7: वाओ, बहुत ही प्यारी थी, और मैम ने बहुत प्यारे से मतलब बहुत प्यार से सुनाया भी। और जैसे कहते हैं ना कि प्यार एहसास ही ऐसा है, बहुत लोग कहते हैं कि पहला शब्द ही अधूरा है तो प्यार की इतनी वैल्यू क्यों की जाती है। तो ये कहते हैं ना, ऐसे क्या बने पढ़ैया, पढ़ के देखो ढाई अक्षर प्रेम के, तो कुछ ऐसा ही है कि ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़ लेता है और जिसकी लाइफ में ये कहते हैं कि मैंने कहीं सुना था, आई थिंक किसी मूवी में सुना था कि अगर किसी की लाइफ में प्यार का एक लम्हा भी हो, उसने थोड़ी भी मतलब कुछ टाइम भी अपने प्यार के साथ अगर स्पेंड किया हो और उसके बाद वो उसकी लाइफ में ना भी हो, तो उन पलों की खुशी रह जाती है, वो एहसास जो बहुत प्यारा सा होता है ना वो रह जाता है। लेकिन वो वही फील कर सकते हैं जिन्होंने अपने प्यार के साथ कभी कोई खुशनुमा पल जिए होंगे, वही महसूस कर सकते हैं, बाकी नहीं कोई महसूस कर सकता है। तो प्यार बहुत ही प्यारा सा एहसास होता है, आपने अभी हमारी पोइट्री के थ्रू सुना। तो यही कहूँगी कि जिनकी भी लाइफ में है वो उसको संभाल कर रखें, जिनकी लाइफ में नहीं है वो थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो आपको मिल जाएगा, है तो संभाल कर रखिए, और अगर थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो गया है तो ठीक कर लीजिए, क्योंकि यही तो लाइफ की खूबसूरती होती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे बहुत ही प्यारे से एक रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ, जो कि आज हमारा कुछ प्यार से ही रिलेट करके होने वाला है। तो बात जब हो रही है प्यार की, प्यार के बहुत प्यारे से एहसास की, तो भाई एक सवाल बनता है हमारे लिसनर्स से कि आप भी बताइए लिसनर्स कि आपकी लाइफ में वो एक प्यारा सा एहसास कौन है। देखिए कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो या कोई ऐसी कोई बात हो, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ में ही हो, किसी का किसी की अपने मम्मी पापा के साथ भी हो सकता है, किसी का किसी की दोस्त के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। एक वो प्यारा वाला एहसास होता है ना, लगता है कि बस वो है तो और कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा मुझे लगता है कि वो एक स्पेशल वाली फीलिंग हर किसी की लाइफ में होती है। कुछ ऐसे ही रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए हम आपको बताएंगे आज जो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ वो ये है, वो ये है कि अच्छे रिश्तों में लोग जवाब देने के लिए नहीं बल्कि पार्टनर की भावना को समझने के लिए बातों को सुनते हैं, यानी कि लिसनिंग फैक्ट हम आपको आज बताएंगे प्यार में, कि प्यार में सुनना कितना ज़रूरी होता है। प्यार में सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप अपने प्यार को सुनेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादातर डिफरेंसेस इसीलिए होते हैं कपल्स के बीच में, क्योंकि वो एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, उन्हें बस ये लगता है कि नहीं मुझे खुद को सुनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, और बस मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ वही ठीक है। तो अपने प्यारे से रिश्ते में प्यार बहुत ही प्यारा शब्द होता है, उसमें सुनना सीखें, दूसरे को सुनना सीखें, अपनी बातों को कहना सीखिए, बट उससे पहले दूसरे को सुनना भी सीखिए, क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या फीलिंग्स हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि अरे ये तो बहुत हार्श फीलिंग है, लेकिन उसके मन में उसका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या साइड है, सिक्के का कौन सा पहलू वो देख रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर सुने और इस प्यारे से एहसास को हमेशा प्यारा सा बहुत ही क्यूट सा रहने दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब जिनकी लाइफ में भी है उन्हें बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि आप उनसे पूछे जिनकी लाइफ में ये एहसास होता ही नहीं, तो वो आपसे आपको बताएंगे कि उनको कितनी ज़्यादा ये होती है कि उनकी नीड होती है कि उनकी लाइफ में कोई हो जो उन्हें प्यार करे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक वो डेडिकेशन वाला प्यार वाला एक फीलिंग रखनी चाहिए, ताकि आप वो हमेशा आपके साथ रहे। चले मैम प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक पे।
6: बिल्कुल,
7: तो चलिए लिसनर्स चलते हैं, बस यूं गए और यूं आए, और आज आपको प्यार प्यारी मतलब मैं कब से कर रही हूँ, मतलब आज हमारा दिन ही वही है, तो गाना भी सॉन्ग भी बहुत प्यारा सा सुनाते हैं, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं, भाई इंजॉय करते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग को।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: अरे सुना?
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज के ओटीटी पर। उसके बाद में जल्दी से जल्दी हमें ये सेक्शन जो है, सेगमेंट खत्म करना है, क्योंकि भाई आज के दिन तो हम अपनी वाली नहीं करते हैं, क्योंकि आज आपका दिन होता है, गेम है और लव राशिफल भी है। तो सबसे पहले जान लेंगे अभी हम, क्योंकि 2:15 एंड जल्दी से हम लोग इस ब्रेक में खत्म करेंगे ओटीटी सीरियल्स के बारे में, कुछ ऐसे मूवीज के बारे में एंड देन राशिफल यानी कि लव राशिफल।
4: तो चलिए बताते हैं आपको कुछ नई OTT सीरीज, कुछ वेब सीरीज के बारे में। तो आज सबसे पहले मैं जो लेकर के आई हूँ, आज एक ट्विस्ट है कि आज मैं नाम नहीं बताऊंगी, आज मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से हीरो, कौन कौन से हीरोइंस हैं, और आप गेस करिए और मैम भी गेस करें कि ये कौन सी सीरीज है। क्योंकि देखिए वीक के स्टार्ट में आने वाली होती है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत तो एक वो रहती है ना कि अच्छा ये आने वाली है, नहीं ये आने वाली है। चलिए देखते हैं कि मैम पहचान लेती हैं उन हीरो हीरोइन के नाम से सीरीज का नाम या नहीं पहचान पाती। लेकिन ये हमारे लिसनर्स के लिए भी है कि वो पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे।
7: ओके,
4: चलिए एक काम करते हैं, जो पहचान जाएगा उसके लिए एक सॉन्ग, मतलब उसको एक सॉन्ग हमारी तरफ से बोनस। तो चलिए पहला बताती हूँ कि इसमें है सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका, जो कि एक बड़ी बहुत बड़ी सीरीज है। और ये जानते हैं आप, ये कोर्ट रूम ड्रामा है, यानी कि इसको जो टैग दिया गया है वो बहुत ही प्यारा सा है, और ये बहुत ही जल्दी Z5 पर रिलीज हो चुकी है। तो फटाफट से आप बताएं कि ये कौन सी सीरीज है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको आधा तो बता दिया है।
7: सोनाक्षी है इसमें,
4: हाँ, और साथ में ज्योतिका भी है।
7: ज्योतिका,
4: और ये पूरा कोर्ट रूम का ड्रामा है, मतलब इसका जो नाम है मुझे लगता है बहुत सही नाम है, क्योंकि ये जिस हिसाब से इसको बनाया गया है उस हिसाब से वो नाम ना बिल्कुल सूट करता है। तो आप देखते हैं कि गेस कहाँ तक पहुंच पाता है।
7: मैं तो नहीं बता पाऊंगी।
4: तो चलिए भाई, एक तो मतलब मैम ने तो कह दिया है कि वो नहीं बता पाएंगी, तो देखते हैं कि कौन बता पाता है। हमारे लिसनर्स में से अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो एक मौका आपको दे देते हैं कोशिश करने का, और वरना उसके बाद तो मैं बताऊंगी आपको, मतलब मैं तो बताने ही वाली हूँ। लेकिन चलिए एक कोशिश, एक मौका, एक लास्ट चांस आपको हम दे देते हैं, और कुछ सेकंड हम वेट कर लेते हैं, हो सकता है हमारे किसी लिसनर को पता।
7: फिर से कुछ ऑप्शंस आप फिर से दे, ताकि लिसनर्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो।
4: ओके, एक चीज और बताती हूँ, और बहुत अच्छी वाली, कि ये Z5 पे रिलीज हो चुकी है, और अभी बस कल रिलीज हुई है, और बहुत ही प्यारी है। और इसमें सोनाक्षी सिन्हा ने मतलब क्या रोल किया है, मुझे तो, मैंने तो जब प्रोमो देखा था तो मुझे तो उनके रोल से ही ये सीरीज पसंद आ गई थी, और मेरे मन में था कि मैं सारे के सारे एपिसोड देखूंगी, एक भी मिस नहीं करूंगी। जैसे कहते हैं ना, सोनाक्षी सिन्हा के लिए कहा जाता है ना कि वो धाकड़, एक जो उनकी एक जो वाली छवि है, वो इसमें उन्होंने बिल्कुल वैसी ही दिखाई है, कि मतलब रफ टफ बिल्कुल और बिंदास। तो अब आप तो गेस कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, गिव अप किया ना, नहीं आता, चलो हम बता देते हैं। ओह आई एम सॉरी, मैं बता देती हूँ आपको। तो ये है जो नाम है इस सीरीज का, वो है सिस्टम, जो कि पूरा कोर्टरूम ड्रामा है। और इसमें ये दिखाया गया है, ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि कोर्ट में केसेस जाते हैं, बट कहते हैं ना कि फाइल पेंडिंग रह जाती है, और वो उतने केसेस नहीं वो हो पाते हैं जितने की होने चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है मैम कि किस तरीके से वहाँ का सिस्टम चलता है, मतलब कोर्ट का सिस्टम कैसा होता है, कैसे फाइल जाती है, कैसे बाकी चीज़ें होती हैं। ओके, कमल नयन जी ने बता दिया, तो कमल नयन जी
7: सिस्टम प्रमुख जी का मैसेज पढ़ो जरा।
4: हाँ, प्रमुख जी का पढ़ते हैं, 2:19 को 2:15 बता रहे हैं। अब प्रमुख जी हमारी घड़ी में तो आई थिंक मैम 2:16
7: हो रहे हैं,
4: सो इतना ही टाइम हो रहा था जितना कि हमने आपको बताया है। बाकी आपकी घड़ी, मतलब हो सकता है कुछ लोगों की घड़ी देर से भी चलती है, इट्स ओके, घड़ी पे नहीं जाते हैं,
7: टाइम पे जाते हैं,
4: टाइम पे जाते हैं, टाइम अच्छा होना चाहिए,
7: टाइम अच्छा होना चाहिए,
4: घड़ी हो या ना हो वो चल जाती है, घड़ी की सुइयां घुमा के टाइम तो वैसे भी आगे पीछे हम करते ही है ना।
7: बिल्कुल,
4: कहीं जाना होता है तो हम कहते हैं अरे 5 मिनट वो कर दो, लेट नहीं
7: पीछे कर दो,
4: हाँ पीछे कर दो, लेट नहीं होगा, या कहीं बहुत वो होता है तो हम कहते हैं 5 मिनट आगे कर दो। अपना टाइम जब निकलना वाला होता है तो हम कहते हैं 5 मिनट आगे कर दो, स्पेशली ये बच्चों में होता है कि स्कूल जाना है और उनको
7: मतलब 10 मिनट पहले से हम लोग मतलब हमेशा के लिए उसको लगा के रख देते हैं, ताकि सुबह हम लोग उस धोखे में उठें। लेकिन हम लोग का दिमाग भी बहुत ज्यादा शातिर है, हम लोग ने जब हाथ से किया होता है ना कि 10 मिनट पहले पीछे, तो वो 10 मिनट बाद में ही हम लोग, अरे 10 मिनट तो पीछे किया हुआ है ना, अभी 5 मिनट है,
4: वो याद रहे, मतलब सेंस में रहता है।
7: हाँ,
4: लेकिन आपको पता है जैसे आपको कहीं जाना हो या कहीं जाना भी ना हो मैम, अगर किसी ने कहा हो कि मतलब मान लो पापा ने कहा हो कि 5:07 पे उठना है, ठीक है, और मान लो आपको 7:20 हो गया उठने में, तब हम क्या करते हैं, हम चालाकी से उसको 10 मिनट पीछे कर देते हैं कि अच्छा हुआ पापा की डांट से बच गया, पापा देख लो हम जल्दी उठ गए, 7:10 नहीं 7:20 नहीं, हम तो 7 बजे ही उठ गए थे। तो ऐसी चालाकियाँ बच्चे करते हैं बचने के, और करनी भी चाहिए। ओके, हाँ मुझे पता चल गया है कमल नयन जी कि आपकी घड़ी में भी 2:23 ही हो रहे हैं, क्योंकि हमारी घड़ी में भी 2:23 ही हो रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी घड़ी हमारी घड़ी क्या दुनिया से अलग चलती है? और उसके बाद में नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि मेरी मम्मी भी 10 मिनट हमेशा आगे रखती है, वो 10 मिनट आगे रखना पड़ता है।
7: प्रमुख जी को इसलिए लगा क्योंकि हम लोगों ने अभी 2:15 बोल दिया था, तो उनको वही तब से उसी बात पे अटे हुए हैं। तो प्रमुख जी क्या चाह रहे हैं आप, मुझे ये बताइए पहले।
4: प्रमुख जी एक बात बताऊं, अटके नहीं रहना चाहिए। अटके रहने वाले फिर बहुत गड़बड़ हो जाते हैं।
7: अटके वाले लोग जो होते हैं ना, वो भटके वाले लोग हो जाते हैं फिर।
4: अब कुछ और बोलना था लेकिन
7: चलो नेक्स्ट कौन सी सीरीज है?
4: ओके तो अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे लगता है कि इस
7: प्रमुख जी अभी गेम में बहुत काफी टाइम है क्योंकि हम लोग 2:40 पे आज गेम शुरू करेंगे।
4: हाँ तो अभी हम जो आपको बताने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद ही आप बता पाएंगे कि ये कौन सी सीरीज है। अच्छा मैम एक सवाल पूछती हूँ आपसे, आप ये बताइए कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है तो वो क्या कहते हैं कि हम आपको अरेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास है?
7: नहीं, यू आर अंडर अरेस्ट।
4: नहीं ये तो कहते हैं
7: वारंट।
4: अरे वाह,
7: वारंट है हमारे पास।
4: बिल्कुल, क्योंकि हमारी नेक्स्ट सीरीज का नाम भी यही है
7: वारंट,
4: इसलिए मैंने ये जो है
7: तुम्हारे प्रश्न से पहले ही उत्तर आ गया था।
4: किसने भेजा?
7: मैंने बोला था।
4: अच्छा आपने बोला था, चलिए वारंट आ गया है क्योंकि हमारे सीरीज का नाम भी वारंट है। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कि ये दिखाया जा गया, मतलब पूरी ये मैं बता दूं कि एक थ्रिलर सीरीज है और ये इस तरीके से इसको दिखाया गया है कि कैसे चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, मतलब सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं भी हो सकती। तो ये बहुत ही अच्छा थ्रिलर ड्रामा है, मतलब इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, स्पेशली उनके लिए जो कि थोड़े होते हैं ना कि मुझे एक्शन बहुत पसंद है, तो ये उनके लिए आप ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा।
7: बिल्कुल।
4: अब आते हैं उनके ऊपर कि जिनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि स्पोर्ट्स की जो भाई मिस्ट्री होती है वो सभी को पसंद होती है, कहीं ना कहीं खेल एक ऐसी चीज होती है जो हम सभी को पसंद होती है।
7: तो अभी मुझे लग रहा है अंशिका टाइम भागा जा रहा है, तो हम लोग ओटीटी को करते हैं यहीं पर एंड, और एक सॉन्ग के बाद आएंगे सीधे लव राशिफल की ओर चलेंगे एंड देन गेम शुरू करेंगे क्योंकि आज ज्यादा ज्ञान नहीं देना है। तो फटाफट चलते हैं एक सॉन्ग की ओर और उसके बाद आएंगे लव राशिफल की ओर।
4: बिल्कुल चलेंगे मैम, बस इसका एक बार मैं नाम बता दूं लिसनर्स को और उसके बाद फिर हम चलते हैं क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। तो नाम बता दे रही हूँ, नाम है ग्लोरी, बहुत ही अच्छी सी है, स्पोर्ट्स बहुत ही प्यारी सी है कि स्पोर्ट्स को बयां करती है, तो जरूर देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा लिसनर्स। चलिए चलते हैं बहुत ही सब प्यारे से सॉन्ग के, बस यू गए और यू आए।
8: ये जरा से दिल लगी, दिल की लगी, लगी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89

0: 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए भाई फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं गेम के ओर भी और आज के राशिफल की ओर भी। तो भाई गेम शुरू कर दिया है और जिसमें सबसे पहला वर्ड दे दिया गया है इशारा। सबसे पहला वर्ड यानी आज हम लोग वर्ड देने वाले हैं जो कि है इशारा। तो इशारा वर्ड से आप लोग सॉन्ग लिखें, जल्दी से जल्दी लिखिए क्योंकि अभी हमारे पास 2:35 हो रहा है और अभी काफ़ी टाइम है। तो आइए हम लव राशिफल की ओर भी चलते हैं जल्दी से। और आज का लव राशिफल यानी कि आज है, आज क्या है, आज है 23 नवंबर। आज है 23 नवंबर, क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से,
2: 23 मई,
1: आज 23 मई,
2: 23 नवंबर। वैसे आपने बहुत अच्छी डेट बोली है।
1: क्यों?
2: क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे होता है।
1: 23 नवंबर?
2: यस।
1: अचानक से मुंह में आ गया मेरे 23 नवंबर,
2: अच्छी बात है।
1: चलो तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए आज का जानते हैं कि राशिफल क्या है और लव राशिफल। तो भाई मेष राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल है पार्टनर के साथ आज अपनी बात बहुत प्यार से कहें वरना गुस्सा हो सकते हैं। गुस्से या जल्दबाजी से बचें। सिंगल लोग नए रिश्तों की शुरुआत के लिए थोड़ा सा इंतजार करना बेहतर होगा। तो भाई आप लोगों का लव राशिफल मेष वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा निकला है। नेक्स्ट आता है वृषभ राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं क्या। पार्टनर के साथ रिश्तों में किसी गलतफहमी की वजह से पार्टनर आप पर शक कर सकता है, बातचीत से बात को सुलझाएं यानी कि शक वगैरह ना करें। सिंगल लोग आज क्रश से मुलाकात न होने के कारण मन थोड़ा उदास रह सकता है।
2: ओके, तो भाई उदास मन को अच्छा करना है क्योंकि जैसे हम लव राशिफल की बात कर रहे हैं ना, तो लव में थोड़ा सा अपने जो है मूड को वो करिए और ये शक वगैरह इन चीजों को थोड़ा बाहर रखिए।
1: तो नेक्स्ट राशि आती है हमारी मिथुन राशि वालों के लिए, जानते हैं क्या है। तो पार्टनर के साथ शादीशुदा लोगों के रिश्ते में नजदीकियां और प्यार बढ़ने वाला है, पार्टनर आपके ख्यालों में खोया रहेगा। अच्छा, ठीक है,
2: ये तो अच्छा है।
1: सिंगल लोग आज किसी खास को देखकर आपकी धड़कनें तेज हो सकती हैं, मिथुन राशि वालों के लिए है भाई, तो थोड़ा सा संभल के। एंड साथ में तुला राशि वालों के लिए है कि पार्टनर के साथ रिश्तों में बेहतरीन संतुलन बना रहेगा, आपसी तालमेल में और समझदारी से मिठास बढ़ेगा। सिंगल लोग आप अपनी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, यानी आपके किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। तो चलिए भाई मुझे लग रहा है इशारे से अभी तक कोई सॉन्ग नहीं आया है किसी का, तो अंशिका आ गया है।
2: जी मैम, सॉन्ग मैंने देखा यहाँ नागेश्वर जी का सॉन्ग था लेकिन वो नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने आशु जी के सॉन्ग को हम चलाने वाले हैं जो कि है इशारों इशारों में दिल देने वाला।
1: तो चलिए फटाफट हमने वो गाना प्ले कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास है और जल्दी से जल्दी इस गाने को हम सुनेंगे, यानी आशु जी का सबसे पहला सॉन्ग है। आशु जी के गाने को हम लोग सुनते हैं और तब तक के लिए हम फिर आएंगे चार राशियों को सुनने के लिए।
2: तो चलिए सुनते हैं।

0: आ गई आपकी आज क्षमता, तो चलिए फटाफट बाकी के राशिफल को बताना जरूरी है। एंड नेक्स्ट राशि आती है कर्क, लेकिन उसके पहले मैं आपको वर्ड देने जा रही हूँ एक चैट बॉक्स में, खत वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है खत। तो खत से बहुत सारे गाने हैं, जल्दी से लिखिए और बाकी राशिफल तब तक मैं आपको सुनाती हूँ, तब तक आप सॉन्ग भी लिखिए। तो खत से गाने बहुत सारे हैं, लेकिन लव राशिफल में नेक्स्ट राशि हमारी आती
1: खत
0: है।
1: से एक गाना वो भी है, मैं मुझे याद आ गया, फूल तुम्हें भेजा है खत में।
0: हाँ,
1: है ना?
0: हाँ, लेकिन अभी जो जिन लोगों के सॉन्ग्स नहीं हुए ना, वो फटाफट आप लोग लिखिए, ठीक है? तो कर्क राशि वालों के लिए है कि पार्टनर के साथ आज थोड़े भावुक रहेंगे, छोटी बातों को दिल पर लेने के बजाय सकारात्मक सोचें। एंड सिंगल लोग जो हैं, कोई पुराना मित्र आज आपके करीब आने की कोशिश कर सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज लव राशि फल है कि पार्टनर के साथ लव लाइफ में एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे, पार्टनर से कोई प्यारा सरप्राइज मिल सकता है। सिंगल लोग अगर किसी को पसंद करते हैं तो आज दिल की बात कहने का सही समय है। कन्या राशि वालों के लिए है लव राशि फल आज का कि पार्टनर के साथ आज का दिन बेहतर रोमांटिक रहने वाला है। आपका पार्टनर हर मुश्किल में ईमानदारी से आपका साथ देगा। सिंगल लोग के लिए है कि आज किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। एंड तुला राशि वालों के लिए है आज का लव राशि फल वो ये है कि पार्टनर के साथ रिश्तों में बेहतरीन संतुलन बना रहेगा, आपसी तालमेल और समझदारी से मिठास बढ़ेगा। सिंगल लोग आज आपकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। तो भाई, देर किस बात की है, आइए सुनते हैं।
1: एंट्री के लिए तैयार,
0: एंट्री के लिए तैयार हो जाइए। और चलिए हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। ब्रेक क्या मतलब, आपको सॉन्ग सुनाएंगे और फिर हम आएंगे बाकी बची राशियों के बारे में राशिफल जानने।
1: तो खत से सॉन्ग चलिए सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सॉन्ग।

0: आ गई आपकी आदि क्षमता, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बाकी राशिफल के बारे में, जो कि है वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए है बहुत ही खास कि रिश्ते में शक को बिल्कुल जगह ना दें, पार्टनर की आज़ादी का सम्मान करें और खुलकर बात करें। सिंगल लोग, पुराने कड़वे अनुभवों को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। धनु राशि वालों के लिए है कि पार्टनर के साथ आज साथ मिलकर भविष्य की बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा आज आपको, दोस्तों के जरिए किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए है आज का दिन कि आज का दिन रोमांटिक रहेगा, हालांकि व्यस्तता के कारण पार्टनर नाराज हो तो एक कॉल या मैसेज से बात बन सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए है कि आज आपका आकर्षण बढ़ेगा और पार्टनर आपकी तरफ खींचा चला आएगा, दिन खुशियों से भरा रहने वाला है एंड सोशल मीडिया या किसी ग्रुप इवेंट में कोई आपको पसंद कर सकता है।
1: ओहो, ये तो बहुत ही अच्छा है
0: जी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन राशि वालों के लिए है कि प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों को कोई अच्छी खबर आज मिल सकती है।
1: okay.
0: हालांकि तूतू में से दूर रहें एंड आज आपको लव लाइफ में कोई मनचाहा प्रस्ताव भी मिल सकता है मीन राशि वालों। तो भाई ये थी आज की लव राशि फल और अब हम चलते हैं सीधे सॉन्ग की ओर, जो की किसने भेजा है जी। तो चलिए सुनते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट आज के गेम का लास्ट सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सा, बस हम यूं गए यूं आए।

0: जी बिल्कुल, कागज कलम दवात भी लेकर के आएंगे,
1: लेकिन दिल किसके नाम करेंगे?
0: अभी कुछ वो फाइनल नहीं है, और अभी
1: वो पेंडिंग डिसीजन है,
0: अभी तो वो पेंडिंग डिसीजन है। तो चलिए भाई, हम लोगों को दे इजाजत, हम मिलेंगे अब मंडे को, लजीज मंडे को, जो कि है ब्यूटीफुल सा मंडे होता है, क्योंकि उस दिन मिलता है खाना खजाना एंड खाने को बहुत कुछ। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखें, पानी खूब पिए, और हो सके तो अपने घर की छत पर थोड़ा सा पानी रख दें उन पक्षियों, उन बेजुबान पक्षियों के लिए, और योगशाला सुनते रहें। हम मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
7: श्रोताओं, वक्त हो चला है उसी कार्यक्रम का जो कि आपका है फेवरेट, पसंदीदा। और इस दौरान चूंकि बहुत ज्यादा गर्मियां चल रही हैं, और गर्मियों में जो थोड़ा सा सुकून दे जाता है ना, वो है बस यही मतलब जिंदगी का रिदम। और रिदम किससे बनता है? नगमों को जब हम एक साथ लाते हैं, रिदम और ताल और सब कुछ जब मिलाते हैं, तो कुछ ऐसी हमारी जिंदगी भी होती है ना, कि कभी बहुत दुखी, कभी बहुत खुश, और कभी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। लाइफ है लाइफ, तो भाई मैजिकल होता है। और मैजिकल मोमेंट तभी क्रिएट होता है जब हम किसी को कुछ डेडिकेशन करते हैं, या फिर कुछ खास पल होते हैं हमारे साथ में। तो फिलहाल के लिए तो आजकल का जो पल चल रहा है वो बहुत ही गर्मी वाला है और गर्मी से भरा हुआ है, लेकिन हमारे पास में एक खास वाली डिमांड आई हुई है। वैसे तो हमने सोचा था आज के शो की शुरुआत हम अपने पसंदीदा नगमे से करेंगे, पर भाई ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज है आपका कॉल इन प्रोग्राम, यानी के पहले ये तो बता दूं चल क्या रहा है। चल रहा है आपका शो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा, जो लेके आ गए आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो कैनस 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। और कॉल इन का नंबर बता दे, फिर बताते भैया खास क्या है और क्या आया हमारे पास में। तो कॉल इन का नंबर है 6393316429, जिस पर आप बखूबी कॉल लगातार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा थम जाइए, आज है दिन शनिवार, मतलब वीकेंड का वार, मतलब आपके हाथों में थोड़ी स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ती है। और जो पहली कॉल हमारे पास में आई वो हमारे इंटरनेशनल लिसनर यानी कि मुस्तफा जी की आई हुई सऊदी अरेबिया से। उनका कहना था हर बार की तरह, मैडम मेरी कॉल के पैसे कटते हैं, तो प्लीज मेरा ये गाना जो मैं आपको बता रहा हूँ बजा दीजिएगा। तो मैंने कहा चलिए आज हम अपनी प्लेलिस्ट का गाना थोड़ा सा साइड करते हैं और ये गाना आपको सुनाते हैं। गाना थोड़ा सा ज्यादा वाला रोमांटिक है, तो ज्यादा रोमांस के साथ में एंजॉय करिए। और फिर आते हैं और देखते हैं हमारे लकी कॉलर्स में पहली कॉल किसकी लगती, मतलब दूसरी होगी लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि ऑन एयर होगी। इसलिए फिलहाल 3 से 4 के सफर में सुनिए आज के शो का ये पहला ओपनिंग वाला सॉन्ग।

गोविंदा जी का सॉन्ग हो और मजा ना आए तो फिर बात ही अलग है। और गोविंदा हमारे इतने फेवरेट हैं कि हमारी लाइफ ही गोविंदा मैं हो चुकी है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, हमेशा मुस्कुराना और उनकी अदाएं, ओह तौबा मच जाती है हमारी लाइफ में। फिलहाल सुनिए इस गाने को। और मुस्तफा जी बहुत प्यारी सी डिमांड, बहुत बहुत शुक्रिया इतने रोमांटिक सॉन्ग के लिए। और कुछ कुछ तो होता है भाई, जब गर्मी में आपको हवा ना मिले और धूप तगड़ी लगे तो कुछ कुछ नहीं, कुछ कुछ होता है।

0: कुछ कुछ होता
1: जी हाँ, कुछ कुछ होता है ये गाना। अभी आपने सुना हमारे प्यारे लिसनर की डिमांड पे, और देखते हैं हमारे साथ कौन कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
2: मेरा नाम अनिल वर्मा है
1: जी, सैदापुर से।
2: हाँ सैदापुर से।
1: तो सैदापुर से कौन सा नगमा आज आप बजवाना चाहते हैं जनाब?
2: जी मैडम, मैं और मेरा एक साथी है
1: जी,
2: मेरा नाम है, उसको पुराने गाने बहुत पसंद है।
1: क्या नाम है? थोड़ा सा आवाज कट रही है, प्लीज बताएं दोबारा से।
2: मेरा एक साथी है, अमर नाम है उसका।
1: ओके अमर जी, जी क्या गाना सुनेंगे कहिए।
2: तो उसको गाना सुनना है मेरे महबूब कयामत होगी।
1: आज रुसवा लेकिन ठीक है, कयामत तो होगी, लेकिन आजकल जो ये गर्मी का माहौल चल रहा है सर, आपसे एक सवाल है मेरा कि कयामत ढा रखा है इस गर्मी ने, और इस गर्मी में जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है वो कर कौन रहा है?
2: सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है?
1: जी जी थोड़ा सोच के बताइएगा, क्योंकि मैंने सवाल में गर्मी मिला दी है।
2: सबसे ज्यादा मेहनत वो करता मैडम जो इस गर्मी में किसी शादी पार्टी में खाना बना रहा है।
1: इसके अलावा
2: और जो खाना खा रहा है वो भी।
1: ओह ये भी, हाँ ये काम तो थोड़ा मतलब है, मानते हैं कि जोखिम वाला है भाई, क्योंकि खाना खाया ही नहीं जा रहा है। लेकिन इस सवाल का एक्चुअल जवाब आपने नहीं दिया जो मैं पूछना चाहिए, देखते हैं नेक्स्ट निशान दे पाते या नहीं, लेकिन आपका कहना भी 100% सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए आप अपने एंजॉय करिए अपने सॉन्ग को और अमर जी के सॉन्ग को। थैंक यू सो मच। चलिए फिर चलते हैं भाई हमारे अनिल वर्मा जी और उनके प्यारे मित्र की डिमांड की ओर, आपके शो कॉलर ट्यून गुंडा के साथ में। और ये आवाज है हमारे प्यारे किशोर दा की, गाना तो बहुत ही

0: हाँ जी अमर जी और हमारे प्यारे अनिल वर्मा जी की डिमांड पे अभी आपने एंजॉय किया किशोर दा की आवाज को, और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे साथ में कौन जुड़ा हुआ है। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून।
0: वेरी गुड आफ्टरनून डियर, अपना नाम बताएं प्लीज।
1: मेरा नाम समरीन
0: जी। समरीन जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: मैं बैठ लिखी
0: थी। ओह हो, क्या बात है। मैं आह भरूं तू आह करे तो हाय करे, है ना? बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, लेकिन मैं आपसे आह आह भरवा तो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए, और सवाल वही है जो हमने अनिल जी से किया था कि इस गर्मी में सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है। फिलहाल हमारे प्यारे लिसनर्स हैं जो चैट बॉक्स वासी, उन्होंने जवाब दिया अनिल जी का कहना था जो खाना बना रहा है खाना खा रहा है, और नागेश्वर जी का कहना है किसान, और धर्मेंद्र मोहन भारती जी आप तो मजाक ही कर बैठे हैं हमारे साथ में। सूरज दादा मेहनत कर रहे हैं या हम लोगों को तपा रहे हैं, पहले ये बताइए। हाँ, और इसके बाद में भाई किसी का जवाब आया है या नहीं सही? तो ओहो, सबसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर कर रहे हैं, ऐसा कहना नीना जी का, और वो मजदूरी कहाँ गई जो हम औरतें करती हैं घर में, और वो पुरुष जो जाके मतलब बाहर से कमाई करके आते हैं उनकी मजदूरी, भाई मजदूरी सभी करते हैं। हाँ तो समरीन जी आप बताएं कि इस गर्मी में सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? समरीन जी चली गई, लापता हो गई, खैर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कॉलर से ये सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इनकी पसंद का ये बहुत ही उम्दा वाला सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है वाकई, इसका नाम ही है इश्क।

0: हाँ जी दोस्तों, समरीन जी की डिमांड पे अभी आपने इश्क नामक ये एल्बम सॉन्ग सुना और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। यकीन मानिए इश्क इससे उम्दा हो ही नहीं सकता जो अल्फाजों से सजाया गया लिरिसिस्ट द्वारा, लेकिन इश्क इससे भी उम्दा होता है, कभी कभार इससे भी उम्दा होता है, लेकिन इसमें बहुत गहराई थी। देखते हैं हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर कौन है और उनसे हम अपना सवाल रखेंगे। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून हमारी जाबिन जी, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआएं हैं, आप कैसे हैं
0: जी? बहुत मस्त है और फिलहाल खुराफात करने का मूड है मेरा। मैं एक सवाल का जवाब चाह रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे पा रहे। उससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल करूँ, आप अपना सॉन्ग बताएं, क्या सुनना चाहेंगे?
1: अरे 3 दिन से मेरा गाना नहीं बज रहा है।
0: अरे जनाब, कैसे बजेगा, 1 घंटे का शो होता है, आप लेट से कॉल करते हो, सुबह जल्दी उठा करो, जल्दी कॉल मिलाया करो आप। जी हाँ, आप बताएं कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे? आज मैं बजा रही हूँ, बोलिए।
1: 2 बजे से लगा रहे हैं।
0: जी वो लगाना रहेगा, बोलिए।
1: पद घुंघरू बांध मेरा नाची थी। अच्छा? और हम नाचे बिन घुंघरू के।
0: तो आप क्यों बिन घुंघरू के नाच रहे हैं? वही तो हम आपसे कह रहे हैं, आप अगर घुंघरू के साथ नाच रहे हो तो शायद आपका गाना पहले बज जाता। फिलहाल बताइए, ये सवाल है आपसे हमारा कि गर्मियों में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, और इस पे हमारे श्रोताओं का कहना है भैया ऑप्शन दीजिए तो हम जवाब देंगे। मुस्तफा जी हैं, दीपांशु जी हैं और सभी बोल रहे हैं, नीना जी हमारे, मनी जी हैं, कि ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं आपको ऑप्शन भी देती हूँ, इंसान, पंखा, बिजली वाले या फिर फ्रिज, मेहनत सबसे ज्यादा कौन कर रहा है?
1: सबसे ज्यादा जो ढाबली में रहते हैं या लेबर?
0: जनाब हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपको उन्हीं ऑप्शन से जवाब देना है। पंखा, इंसान, बिजली वाला या फ्रिज?
1: अरे आप ये सवाल कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन मेहनत करता है?
0: हाँ जी,
1: तो मेहनत तो सबसे ज्यादा जो है ढाबली में रहते हैं सबसे है, और लेबर जो है मेहनत करते हैं, और बिजली पंखा वाले तो भैया ठीक ही है, फटाक से हवा खा लिए।
0: जी शुक्रिया, आप हमारा सवाल ही नहीं समझ पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलर की ओर और उन्हीं से ये सवाल पूछेंगे, और लगातार आप सभी की कॉल आ रही है और मुझे लग रहा है कि ये गाना मुझे ज्यादा ज्यादा जल्दी से बजा देना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट कॉलर की कॉल ले पाए।
2: चलते चले जाओ फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू,
0: भाई घुंघरू बांध के तो मीरा नाची थी, लेकिन आज हमारा सवाल नाच रहा है और जवाब भी आ गए हैं, और सही जवाब क्या ये भी बताएंगे, और आप उनको अगरबत्ती धूप सब दिखाने वाले। फिलहाल गाना एंजॉय करिए।

भाई आज तक हमारे रॉबिन हुड जी यानी कि राजू सलमानी जी नाचना नहीं जान पाए हैं बिना घुंघरू के, लेकिन हमारे नागेश्वर जी कह रहे हैं अगर किसी को डांस सीखना है तो छत पर जब कपड़े लाने जा रहे हो बिना चप्पल के जाएं आप डांस करना सीख जाएंगे। वाकई बहुत दिमागदार हैं आप और आपका दिमाग काफ़ी काबिले तारीफ है और काफ़ी सारे जवाब भी आ गए मेरे ऑप्शन देने के बाद में, लगातार आपकी कॉल्स भी आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस गाने को ख़त्म होने देंगे, फिर नेक्स्ट कॉलर की कॉल लेंगे और उसके बाद में हम अपना सवाल भी रखेंगे, जवाब भी देंगे और आप अपने घर में आज से ही उनको धूप बत्ती और सब कुछ अर्पित करने वाले हैं जो है आज के सवाल का जवाब उनको, क्योंकि उनके बिना तो भाई ये गर्मी कटने से रही।

0: जी दोस्तों, और अब चलते हैं नेक्स्ट लिसनर की तरफ और देखते हैं हमारे साथ में कौन जुड़ गया है। हेलो,
1: नमस्कार।
0: मैं नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
1: आनंद प्रताप सिंह खेली पुरवा गोंडा
0: जी। क्या बात है आनंद प्रताप जी, हमें लग रहा है आप ही आनंदित करेंगे हमें हमारे सवाल का जवाब देके। उससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं और आप तक जवाब पहुंचे, मैं जानना चाहूंगी आपकी फरमाइश आज की क्या है।
1: आप अपनी पसंद का ही आप ला दीजिएगा।
0: ऐसा क्या
1: जी?
0: चलिए आपको हम अपनी पसंद का गाना सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमको हमारा जवाब दीजिए।
1: हम मैम जवाब दे रहे हैं, सुने हुए हैं
0: जी। जी बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास में। गर्मी में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? चैट बॉक्स वासियों अपना अपना जवाब मिला लीजिएगा हमारे जवाब के बाद में। हाँ जी, इंसान, पंखा, बिजली वाले या फिर मतलब बिजली वाले, बिजली विभाग वाले या फिर फ्रिज?
1: बिजली विभाग वाले पहले नंबर पे
0: जी,
1: और दूसरे नंबर पे पंखा।
0: ओहो, क्या क्या क्या, फिर से बताएं जरा एक बार रिपीट।
1: बिजली विभाग वाले पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पंखा, ये दोनों परिश्रम कर रहे हैं आज।
0: बिल्कुल गलत। थोड़ा सा काश आपने थोड़ा सा और दिमाग लगाया होता, किसी और से पूछेंगे ना, नेक्स्ट को भी चांस देते हैं, मजा आ रहा है सवाल करने में। थैंक यू। चलिए फिलहाल हम हमारी पसंद का ये गाना सुनिए। तो ये थे हमारे साथ में आनंद प्रताप जी छेदीपुरवा से। चलिए सुनते हैं, इनको सुनना है हमारी पसंद का गाना। तो हमारी पसंद का गाना हमारी प्ले लिस्ट से ये वाला।

0: भाई प्लेलिस्ट हो तो ऐसे ही नगमों की होनी चाहिए जैसे आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की होती है, और आप ही के नगमों में से थोड़े से नगमे हम चुरा लेते हैं कभी कभी जब आप लोगों के फेवरेट सॉन्ग आते हैं उसमें जो मुझे पसंद आ जाता है। फिलहाल चलते हैं, ये तो सदाबहार नगमा था और आनंद प्रताप जी के फरमाइश पे हमने ये प्ले किया था। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट वाले कॉलर की ओर और देखते हैं हमारे साथ में नेक्स्ट कौन जुड़ा हुआ है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
1: जी नमस्कार, मनीष शर्मा बोल रहे हैं।
0: जी नमी शर्मा नहीं, मनीष शर्मा जी कहिए, कहाँ से सुनते हैं आप हमें?
1: हम तो खुरासा बिसना का भटपुरा से सुनते हैं।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है, अभी आपसे भी हमारा वही सवाल है लेकिन उससे पहले हम आपका फरमाइश जानना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: हमारा फरमाइश है किसी होटल में जाए डेडिकेट नीना।
0: किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, और ये हमारी प्यारी मतलब हमारी चंगू जी को आपने डेडिकेट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आपने डेडिकेशन दे दिया है तो एक सवाल आपसे भी हम कर ही लेते हैं जो आज सभी से कर रहे हैं, और सवाल हमने जो जवाब मांगा उसमें चैट बॉक्स में काफ़ी सारे सही जवाब भी आए हैं और आनंद जी ने भी लगभग लगभग सही जवाब दिया था, काश के थोड़ा और दिमाग लगा लेते। हाँ तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, इंसान, पंखा, बिजली वाले भैया जी लोग या फिर फ्रिज?
1: बिजली वाले तो बहुत आराम
0: ही
1: हो गए, लाइट नहीं देते हैं।
0: गलत बात
1: के लिए किसान को ज्यादा दिक्कत होती है।
0: ऑप्शन से बाहर क्यों जाता है, आज सिलेबस से बाहर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए आपका गाना प्ले करते हैं फिर नेक्स्ट कॉलर से पूछेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग, टेक केयर। जी तो ये थे हमारे साथ में मनीष शर्मा जी और चलिए चलते हैं फिर इनके गाने के साथ में, और इस गाने का डेडिकेशन गया है हमारी प्यारी चंगू जी को यानी कि हमारी नीना जी को। भाई इनके साथ में तो आप कहीं भी जाएंगे कुछ खाएं या ना खाएं व्हाइट रसगुल्ला जरूर ट्राई करिएगा। एंजॉय द ट्रैक। 3 से 4 के सफर में मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आप लगातार कॉल कर रहे हैं और हम कर रहे हैं आपसे सवाल और ये गाना।

बहुत आतुर हूँ भाई, जवाब मुझे भी देना है और हमारे प्यारे चैट बॉक्स वासियों को भी जानना है। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक नगमों को आप ही के प्लेलिस्ट का, और आप लोग लगातार कॉल भी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। लेकिन नेक्स्ट कॉलर से भी हम यही सवाल पूछेंगे। फिलहाल एक गाना बहुत खूबसूरत हमारे चंगू जी का है और हमारे चंगू जी को डेडिकेशन में मिला है।

0: हाँ जी, गाना बहुत मजेदार था। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले कॉलर की ओर और देखेंगे हमारे साथ में कौन बना हुआ है। हेलो।
1: हाँ हेलो,
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं जी।
1: अजय मिश्रा, मिश्रा ऑप्टिकल।

0: इंसान, पंखा,
1: बिजली वाले भैया,
0: फ्रिज।
2: नहीं, बिजली वाले भैया भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो बिजली वाले भैया कर रहे हैं।
0: हे प्रभु, इमोशन में नहीं जाना था, मैंने आपको पहले बताया था। कोई बात नहीं, आपका आंसर, थैंक यू, आपका आंसर हमको मिला उसके लिए, हम किसी और से पूछेंगे नेक्स्ट टर्म में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर चलते हैं इन्हीं के नगमे की ओर, और भैया इनको सुनना है गदर मूवी से ये सॉन्ग, और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉल टून गोंड। आज है कॉल इन शो, लगातार आपकी कॉल्स आ रही है और हम बढ़ रहे हैं एक एक करके एक ही सवाल से बार बार बार बार बार बार, बस ये कहिए गाने चेंज हो रहे हैं वरना आप भी बोर हो जाते।

0: के काले काले बादल छा जाए, इतनी धूप में तो मजा आ जाए, क्या एहसास दिला दिया आपने। अजय मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यार से गाने के लिए। देखेंगे नेक्स्ट कॉल हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
1: अमित कुमार
0: जी। अमित कुमार जी, आप अपना नगमा बताएं, उसके बाद हमारे सवाल का जवाब देके ही जाइएगा। जी कहिए, क्या सुनना चाहेंगे? जी जी, क्या सुनना चाहेंगे?
1: किसी शायर का दिल बनके बरसती है बूंदे तुम पे।
0: ओहो, किसी शायर का दिल बनके बरसती बूंदे जब तुम पे। हाँ, तो आपसे हम पूछ लेते हैं हमारा सवाल
1: जी।
0: हाँ, ये सवाल वही है पुराना वाला कि गर्मी में सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है या करता है या करता चला आ रहा है, और फिर भी हम इंसान उस पे तरस नहीं खाते, फिर भी उसे मेहनत कराते हैं। अब थोड़ा सामने आपको थोड़ा सामने आपको हिंट भी दे दिया है। इंसान, पंखा, बिजली वाले। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, फाइनली आपने जवाब दिया। जी हाँ, और पंखा ही वो है, हाँ, वो ना चले तो हमारी रात कैसे गुजरेगी, हमारा दिन भी एकदम, मतलब सोचिए धूप से आ रही, इधर से कहीं से भी आ रहे, बस पंखा पंखा, हाय पंखा, हाय पंखा। मतलब हमें लगता है कि एक फैन होती है, एक फैन फॉलोइंग होती है किसी कलाकार की, लेकिन हमें लगता है जो आजकल जो गर्मियों के मौसम में सबसे बड़ा फैन बने हुए हैं वो है हम अपने घर के ही पंखों के। क्यों?
1: जी जी जी बिल्कुल, मैं उसी के पास हूँ लेकिन चल नहीं रहा है लाइट।
0: अब सोचिए ये वियोग, मतलब एक प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते, एक माँ और बाप के रिश्ते से भी बढ़ के आपको एक टाइम पे फील हो रहा होगा, क्योंकि बचपन में तो हम मम्मी पापा को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, मतलब जब थोड़े बड़े होते हैं तो समझदार हो जाते हैं, लेकिन पंखा इस गर्मी में ऐसा है कि उसके जाते ही आपको ऐसा वियोग होता है जिसका जितना दुख कभी नहीं
1: पड़ता है।
0: बहुत मजा आया और आपने बहुत सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो दोस्तों मुझे थैंक यू सो मच अमित जी, और हमें लगता है कि अभी आपको सही वाला जवाब मिल गया है आप सभी को, कि पंखा ही ऐसा है कि जिसके आते जाते, उठते बैठते, सोते जगते, हम ख्याल में भी नहीं सोच सकते कि इस टाइम हम बिना पंखे के रह सकते हैं। और हम तो ये कहेंगे धूप बत्ती उनको दिखा दीजिएगा, दो चार फूल चढ़ा दीजिएगा, और उनकी उम्र की, लंबी उम्र की कामना कीजिएगा जब तक ये गर्मियां चल रही हैं। फिलहाल हम चलते हैं इस नगमे की ओर जो अमित कुमार जी की डिमांड है।

भाई जिन जिन ने सही जवाब दिया था उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नागेश्वर जी हैं और हमारे दीपांशी जी ने भी जवाब दिया था, अपने अपने हिसाब से सभी ने जवाब दिया था। बबलू जी भट्टी से और नीना जी ने दिया था, मिश्रा ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी ने दिया था और मनीष शर्मा जी ने भी दिया था, अनिल वर्मा जी ने भी दिया था सैदापुर से और बाकी सभी लिसनर्स सुरेंद्र यादव जी ने तो ना जाने कितनी दफा कॉल कर लिया है और उनका कॉल नहीं उठा है मुझे मालूम है। रक्षा अंसारी जी हैं और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रबल मिश्रा जी, पंडित जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, मुस्तफ़ा से सऊदी अरेबिया से मुस्तफ़ा जी भी हैं और उस्मान खान जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं और इन्होंने भी सही जवाब दिया था फैन। और धर्मेंद्र मोहन भारती जी ने भी जवाब दिया था अपने अपने हिसाब से अपनी समझ से, सभी ने जवाब दिया था। कमल नैन जी ने भी जवाब दिया था। फिलहाल एक गाना एंजॉय करिए।

0: हाँ जी, तो काश की ये बरसात की धुन ना आ जाए वापस से। और कुछ ही दिनों की बात है दोस्तों, अभी हीट वेव का सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, और इसको बनाया भी हम इंसानों ने, ये बहुत अंधाधुंध कटाई की है प्रकृति की। और हर हफ्ते मुझे लगता है कि एक एक पौधा हमें लगाना ही चाहिए, अपने घर में ना सही, कहीं ऐसी जगह पार्क में या कोई ऐसी जगह जहाँ पे उसका देखभाल हो सके, एक आध पौधा, क्या बड़े पेड़ों का, वो भी वैसे वाले जो कि कई सालों तक चले, छायादार वृक्ष, ऐसे पौधों को दान करें, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया और बरगद हो गए, ऐसे पौधे जो जीवन देने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। कैफ मोबाइल जी हमारे साथ में बने हुए हैं, कमल नैन जी ने भी सही जवाब दिया था, और आप सभी के मैसेजेस हमारे पास में है, लेकिन मैं सभी के ले नहीं सकती, इसलिए मैंने सभी का लगभग नाम ले लिया है, कोई छूटा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले कॉलर की ओर। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: सुरेंद्र यादव गौरा चौक
0: जी। सुरेंद्र जी, आपका सॉन्ग हमें मिल गया है, चलिए आपके गाने को ट्यून करते हैं, फिर हम नेक्स्ट कॉलर से पूछेंगे नेक्स्ट सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए चलते हैं सुरेंद्र जी के नगमे की ओर, और फिर आते हैं इस प्यारे से भजन के बाद।

0: जेठ चल रहा है और जेठ में ऐसे मंगलवार आते हैं जब हम भगवान की कृपा कुछ खास करके पाते हैं और उसमें कुछ ऐसा नेक कर्म कर जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो शरबत हो गया, हलवा हो गया, पूरी हो गया, ऐसी चीजों का हम कहीं ना कहीं भंडारण भी करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। एक प्यारा सा माहौल हो जाता है, एक आध्यात्मिक माहौल, एक अंदर से हमारी नैतिकता जाग उठती है तो बड़ा अच्छा लगता है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले कॉलर की ओर और प्लीज मेरा नंबर अनलॉक करें। तो नंबर किसी का ब्लॉक नहीं है जनाब, आप जो भी है श्रीमान जी जिनका लास्ट में है 5772 नंबर। तो आज का दिन ही ऐसा होता है, बहुत क्राउडी होता है, लगातार कॉल्स आती है तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा जस्ट। और नागेश्वर जी, हाँ जी, आपका नाम मैंने लिया था, आप थोड़ा कान में तेल डाल के रटा करिए, आपको सुनाई कम देने लगता है। चलिए देखते हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो,
1: हाँ जी मैम नमस्कार, बबलू पांडे भटपी से बोल रहे हैं।
0: ओह माय गॉड, बबलू पांडे जी आगे भटपी से काफी एनर्जेटिक वे में आए हुए, हमें लग रहा है आप कहीं मतलब आसपास में ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे काफी ठंडक है, क्यों?
1: हाँ, पेड़ के नीचे हैं।
0: ओह माय गॉड, क्या बात है भाई, हमारे सवाल का जवाब लेके आए हैं आप, बहुत अच्छा लगा। क्या सुनना चाहेंगे बबलू जी?
1: जेठ की दोपहरी पे गर्मी लगे
0: है। हाय, जेठ की दोपहरी में ही गर्मी लगती है, उसके अलावा नहीं लगती सच में? चलिए अब आपने बता दिया तो एक सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है, मतलब साधारण है, इसमें आप ज्यादा फंसेंगे नहीं। सवाल है कि गर्मी में सबसे बड़ा सपना हम लोग क्या देखते हैं, मतलब आपका सपना अगर होता तो क्या देखते हैं? और अपना ही मत सोचिएगा, आम जनता का भी सोच के मतलब जवाब दीजिएगा। शिमला जाना एसी वाला कमरा हो, या फिर ठंडी कोल्ड ड्रिंक हो, या फिर बिजली ना जाना?
1: बिजली ना जाना,
0: बहुत सही, यही जवाब है, इसलिए मैंने बोला था इजी है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और एंजॉय करिए आपकी डिमांड का ये प्यारा सा गाना। चलिए चलते हैं हम अपने बबलू जी के सॉन्ग की ओर और शो चला आपका कॉल इन प्रोग्राम। हाँ जी, और कॉल अटून गोंडा फोन इन फरमाइशी प्रोग्राम 3 से 4 के सफर में मैं आपके होस्ट हूं दोस्त आज आकांक्षा और ये गाना हमारे प्यारे प्यारे प्यारे बबलू जी की डिमांड पे।

प्रिया शर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी अपनी आरजी आकांक्षा। लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है, आज होता है कॉल इन शो, आपको कॉल मिलाना पड़ेगा। ऑपरेटर साहब ने नंबर मेंशन कर दिया, गाना बड़ा ही खूबसूरत आपने भेजा है, लेकिन भाई बहुत देर से सभी ने प्रयत्न किया तभी हमने गाना प्ले किया, तो आप भी कॉल लगा ही लीजिए। बस इतना ही कहेंगे आपसे, फिलहाल ये गाना जेठ की दोपहरी।

0: हाँ जी भाई, जेठ की दोपहरी हो गई है और अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ में कौन बने हुए हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कॉलर को लेंगे कॉल पे। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते, मैं अनुष्का बोल रही हूँ
0: जी। अनुष्का जी, क्या सुनना चाहेंगी?
1: मेरे प्यार कर जरा चक्कर
0: है।
1: Yes,
0: और कुछ नहीं चखाने को मिला था भाई, गर्मी का सीजन चला, आप गन्ने का जूस चखा दीजिए, नींबू का रस चखा दीजिए, आम आने वाला है वो चखा दीजिए, मतलब प्यार का रस क्यों चखा रही हैं?
1: उसमें ज्यादा मजा आता है।
0: माय गॉड, इससे ज्यादा हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे भाई, हमारी बड़ी जानकार और क्या ही बोले। चलिए मखना सॉन्ग सुनते हैं इनके डिमांड पे। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलर। ओके, लगातार आपकी कॉल्स आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। और चलते हैं इस गाने की ओर, फिर आएंगे नेक्स्ट कॉलर की ओर। और उद्दालक जी, आपकी कॉल आई थी मे भी, लेकिन आपने उधर से कोई रिप्लाई नहीं किया, प्लीज़ फिर से एक बार आप कॉल करिएगा। और सभी की कॉल्स आ रही है और लगातार आ रही है। फिलहाल के लिए ये वाला गाना जो कि है हमारी प्यारी प्यारी प्यारी प्यारी अनुष्का जी की ओर से श्रावस्ती से।

सवाल आया हुआ है सुरेंद्र यादव जी का, दिन बीते मधुमास का मतलब क्या होता है। तो दिन बीते मधुमास का अर्थ बहुत ही सिंपल सा होता है। मधुमास का मतलब प्रेम, खुशी और मधुरता से भरे हुए मौसम का बात यहाँ पे किया गया की बात यहाँ पे की गई है लिरिसिस्ट साहब के द्वारा। मतलब कि एक मिठास और सुंदर वसंत का मौसम जो था अभी सुहाना सुहाना हाल फिलहाल में बीता, उसके बाद जेठ का मौसम आ गया है, बस यही इतना, बाकी आप समझदार हैं।

0: हाँ जी श्रोताओं, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की ओर। हेलो।
1: हाँ जी मैम।
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: नमस्कार नमस्कार। अरे मेरा आप गाना नहीं बजाएं।
0: गाना कैसे बजाएंगे, आज कॉल इन शो है, बिना कॉल किए तो आज हम किसी का गाना नहीं बजाते हैं, और लगातार सभी कॉल करते
1: हैं। मैं उदालक शर्मा का फ्रेंड हूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए।
1: आपका बहुत बड़ा फैन।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया ये भी बताने के लिए। और आपका गाना अब हमें प्राप्त हो गया, अब हम प्ले भी करते हैं। लेकिन आज का दिन ऐसा ही जाता है, हमारे सारे लिसनर्स जानते हैं, लगातार कॉल चलती ही रहती है, लेकिन गाने के एंड पे ही हम कॉल उठाते हैं। कभी कभार होता है कि
1: कल हमने भैया को बोला था, अपनी फरमाई डलवाई थी और नाम भी अपना लिखा था, दीपक शर्मा बालपुर वाले, आपने नाम ना बोला ना मेरा गाना बजवाया।
0: हम थे ही नहीं कल, तो हमारा वीक ऑफ होता है, आप हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं।
1: ओके
0: चलिए आप अपना गाना सुनिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चलिए चलते हैं फिर हम अपने प्यारे दीपक शर्मा जी के सॉन्ग की ओर। एंजॉय करिए।

0: भाई दीपक जी बाल पुराले आपके मित्र का भी फीडबैक आ गया है, थैंक यू दालक जी। और आरसीएम से बबलू पांडे जी लिखते हैं, सच्चे रिश्ते आवाज से नहीं विश्वास और उपस्थिति से पहचाने जाते हैं। बेशक सही बात है, ज्यादा उसमें आवाज क्या होती ही नहीं बिल्कुल। आवाज अगर आप लोग ने वो चीज वो दौर फेस नहीं किया तो हो सकता है लाइफ में कभी वो दौर आए कि जब आपके आसपास कोई नहीं होगा और आप मुसीबत में होंगे तो वही सच्चे रिश्ते आएंगे सबसे पहले नजर, जिन्होंने आपको सालों साल से आवाज नहीं दी होगी। फिलहाल चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले कॉलर की ओर और देखेंगे कि हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं। बड़ी देर से कॉल्स पे कॉल्स आ रही है और इनसे भी एक सवाल करेंगे। हाँ जी, एक सेकंड आप थोड़ा होल्ड करिए ताकि हम आपसे एक सवाल कर पाए, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना गाना बताएं कि क्या सुनना चाहेंगे। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं और अपना गाना बताएं, फिर हम आपसे एक सवाल करेंगे।
1: जी, मेरा नाम मोहम्मद वारिस है।
0: जी वारिस साहब, आप हमें कहाँ से सुन रहे
1: हैं?
0: जी लुधियाना से। कहिए क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैडम हमें गाना सुना है, मेरा नाम अगर मालूम होता।
0: मेरा नाम अगर मालूम होता।
1: जी
0: ओके, मेरा नाम अगर मालूम होता। वैसे आपका नाम हमें मालूम नहीं था लेकिन आपने बता दिया है। आपका नाम क्या है जी?
1: जी मेरा नाम तो बतला ही है, हम भी
0: क्या बताया है, वही तो पूछ रही हूँ।
1: जी मेरा नाम मोहम्मद वारिस बोले।
0: जी मोहम्मद वारिस जी, अब आपसे एक सवाल मैं करूँगी। सवाल मेरा ये है कि ये जो गर्मियों का सीजन है उसमें आम इतना खुश क्यों रहता है? क्योंकि वो राजा होता है, क्योंकि सब उसे पसंद करते हैं, या फिर उसका सीजन चल रहा होता है क्योंकि वो पेड़ पर झूल रहा होता है?
1: सीजन चलता है मैडम, आम का तो बढ़िया हो।
0: क्या बात है भाई, आजकल तो हमारे मतलब पहले सवाल में किसी ने सही जवाब नहीं दिया, जब से दूसरा तीसरा सवाल किया सही जवाब, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सही, एकदम सही वाला जवाब दिया आपने। चलिए फिलहाल आपकी पसंद का ये गाना हम आप तक पहुंचाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉल के लिए। तो भाई ये थे हमारे साथ में हमारे प्यारे लिसनर और इनकी डिमांड आप तक पहुंच रही है, लगातार आप सभी की कॉल्स भी आ रही है और कॉल्स के बीच में वक्त हो चला है 3:54।

0: आज ही और नेक्स्ट कॉलर की कॉल लेंगे और ये लास्ट कॉल होगी हमारी, क्योंकि वक्त अब कह रहा है कि अब आप लोग से इजाजत लेने का वक्त हो गया। हेलो,
1: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून
0: जी। नमस्कार देव प्रसाद जी, कैसे हैं?
1: हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: बहुत अच्छे हैं। क्या सुनना चाहेंगे देव जी?
1: तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है।
0: हैं? ये कौन सा गाना है?
1: पास नहीं आना, दूर नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है।
0: मैं अपनी पसंद का कोई चलाऊं, चलेगा?
1: तो ये सुना दीजिए, नजर नजर में हाल दिल का पता चलता
0: हम
1: है।
0: हम अपनी पसंद का आपको सुनाएंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर और देखते हैं इनकी कॉल किसकी कॉल है। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं प्लीज। हेलो,

जी श्रोताओं, तो 3 से 4 के सफर को कंप्लीट होने में कल 3 मिनट और शेष रह गए हैं और अब हम आपकी लगातार कॉल अभी भी आ रही है। माफ करिएगा, मैं कॉल नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वक्त अब खत्म हो चुका है हमारे पास में। और आज जो मैं लास्ट सॉन्ग प्ले करूंगी देव प्रसाद जी, स्पेशली आपके लिए होगा, धर्मेंद्र मोहन जी आपके लिए भी, और जिन जिनकी डिमांड रह गई है और जिन जिनकी कॉल नहीं लगी उन सभी के लिए, और सबसे पहले हम सभी भारतवासियों के लिए। और आपका दिल अगर ना झूमे इस गाने पर तो फिर हमारा नाम ही बदल दीजिएगा। फिलहाल अब हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट आपके मंडे के शो में, यानी कि इसी शो में कॉलर ट्यून गुंडा के साथ में। फिलहाल अपने आप को थोड़ा गौरवान्वित महसूस करिएगा और थोड़ा सा अगर वॉल्यूम तेज करके इस गाने को सुनेंगे तो यकीन मानिए आज आप बहुत ज्यादा अंदर से इमोशनल भी होने वाले हैं। ये गाना है माँ तुझे सलाम, एंजॉय करिए ये पैट्रियोटिक सॉन्ग फ्रॉम माई प्लेलिस्ट। बाय बाय, टेक केयर।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
3: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: Now you're listening ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सो हर रोज गोधली में गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं, और हर रोज की पर्सनैलिटी में अपनी एक खास बात अलग होती है। तो आज भी जो हमारे बीच में खास मेहमान मौजूद हैं, उनकी भी अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। उनसे आज बहुत कुछ उनकी बात के जरिए जानने को समझने को मिलेगा, लेकिन जैसा कि हर गेस्ट के बारे में हम पहले की जिंदगी हुई बातों को करते हैं और उसके बाद उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसी तरह आज हम अपने गेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी के बारे में। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एजुकेशन राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में जिसका नाम है गोधुली।
2: जी धन्यवाद, और आपको भी और पूरे ज्ञानस्थली परिवार को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरीके का कार्यक्रम शुरू किया, और इस कार्यक्रम से पूरा जो गोंडा शहर है और जो पूरा जिला है इससे निश्चित रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे मोटिवेशन और मार्गदर्शन की बहुत समस्या होती है। तो मैं आपके कार्यक्रम मैंने सुना है, एक दो प्रोग्राम सुना है, उससे मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से उनको बहुत फायदा होगा, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और वो देखेंगे कि क्या क्या फील्ड हैं और उस क्षेत्र में कैसे करियर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और ज्ञानस्थली परिवार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरी साइड से भी और ज्ञानस्थली परिवार की तरफ से भी। और जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया कि सबसे पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, अपने माता पिता के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में।
2: सर मैं यही गोंडा जिले में एक गाँव है तिनोना मंगरावा करके, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। काफ़ी बैकवर्ड एरिया है फिलहाल, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई थी, और उसके बाद मैंने जो माध्यमिक शिक्षा थी उसको गांव से थोड़ी दूरी पे था, 10 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ मैंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए मैं मनकापुर चला गया, AP इंटर कॉलेज। तो वहाँ से इंटरमीडिएट के बाद मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए मुझे गोंडा आना पड़ा, और मैं चाहता था बाहर निकलूं किसी अच्छी जगह से और अच्छी शिक्षा करूं, लेकिन उस तरीके की परिस्थितियां नहीं थी, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके की नहीं थी कि मैं गोंडा से बाहर जा पाता। तो मैं गोंडा आ गया और यहीं पर एडमिशन ले लिया LVS डिग्री कॉलेज में।
1: ओके, तो ये तो आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, इस पे भी हम वापस सभी लौटेंगे। अपने माता पिताजी के बारे में बताइए, भाई बहनों के बारे में।
2: सर हम लोग 9 भाई बहन हैं, 6 बहनें हैं और 3 भाई हैं, एक मुझसे बड़े हैं, बड़े भाई, और माता पिता हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, और पिताजी की भी बहुत अच्छी सर एजुकेशनल बैकग्राउंड हम लोगों की बहुत अच्छी नहीं है। पिताजी नहीं पढ़ पाए थे, वो कुछ उनकी परिस्थितियाँ उस समय रहीं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन कक्षा 5 तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी जी। तो वो चाहते थे कि हम सब लोग पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, बड़े भाई को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते थे, और हाई स्कूल में वो फेल हो गए और उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने पढ़ाई।
1: ओके,
2: तो फिर मेरा नंबर था, बहनें सभी बड़ी थी, उन लोगों की बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हो पाई
1: जी,
2: कि उस समय गांव में उतनी सुविधा भी नहीं थी और उनको बाहर लोग भेजना नहीं चाहते थे लड़कियों को, तो प्राथमिक शिक्षा उन लोगों की हो पाई, और मैंने कोशिश की और अभी आगे बढ़ा और लगभग उच्च शिक्षा की उच्चतम डिग्री होती है वो मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीएचडी मेरी चल रही है अभी।
1: क्या बात है, यानी आपने अपने घर में भी सबसे ज़्यादा आप ही ने पढ़ाई की है?
2: हाँ जी बिल्कुल। मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो घर में हाई स्कूल पास किया था।
1: ओके।
2: और इसके पहले कोई इस तरीके राउंड नहीं थी।
1: ओके। तो अभी तो नो डाउट मतलब आपके माता पिता आपके भाई बहनों को बहुत अच्छा लगता होगा आपको इस जगह देख के जहाँ पे भी अभी आप हैं। और साथ ही साथ अब आपके हम थोड़ा सा बचपने में बात करेंगे।
2: जी।
1: बचपन से आपका स्वभाव कैसा था? थोड़ा चुप चुप मिजाज के थे आप या शरारती थे, कैसे थे आप?
2: नहीं सर, मेरा जो अभी मिजाज है ऐसे पहले भी था, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है।
1: अभी थोड़ा तो मुस्कुराता चेहरा है आपका।
2: हाँ, मुस्कुराता चेहरा है और ऐसे मैं पहले भी था। लोगों से ज्यादा मैं घुल मिल नहीं पाता था, थोड़ा शर्मिलापन था और अभी भी है। उसको मैं फेस करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, चीजें मैं सोच रहा हूँ कि
1: अंतर्मुखी जैसे कहते हैं एक पर्सनालिटी क्या। अच्छा। So, श्रोताओं, हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि गेस्ट के बारे में पूछने का हमारा सीधा सा मतलब ये होता है कि देखिए हमारे आपकी तरह ही ये होते हैं, कोई बहुत टॉकेटिव होते हैं ज़्यादा बोलने वाले, तो कोई अंतर्मुखी होते हैं जैसे कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं वो हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी पर्सनैलिटीज़ आती हैं वो अपने क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम कर रही होती है। तो आज हमारे बीच में मालिक राम वर्मा जी हैं, उनसे हमारी बातचीत लगातार जारी है। तो आपने बताया कि आप थोड़ा सा शर्मिले किस्म के थे
2: जी,
1: लेकिन अभी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं
2: जी,
1: बच्चों को न जाने कब से आप पढ़ा रहे हैं, तो आपका प्रोफेशन तो लोगों से बातचीत करने का है, वो भी इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने का है।
2: नहीं सर,
1: ये कैसे दूर किया आपने?
2: क्लास में सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे ऐसे पर्सनली बात करने में थोड़ा दिक्कत होती है।
1: अच्छा।
2: क्लास में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है और वहाँ पे मैं अच्छे से बच्चों को फेस करता हूँ और बच्चे मेरी टीचिंग स्टाइल से मुझसे बहुत काफी संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
1: मतलब आपको टीचिंग में प्रॉब्लम नहीं आती?
2: नहीं, टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक पब्लिक जो फेस करना होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक फिगर तो आप ऑलरेडी हो गए हैं बच्चों के लिए, एक रोल मॉडल है भाई, एक आप प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर
2: जी।
1: आप ये हमको बताइए कि आप 9 भाई बहन थे
2: जी,
1: ठीक है, और आपने कहा आप थोड़ा शर्मिले किस्म के थे
2: जी।
1: मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने भाई खेल कूद तो बहुत सारे किए होंगे, कौन कौन से खेल आपने खेले?
2: गांव में सर उस समय कोई बहुत ज़्यादा खेल नहीं होता था, हम लोग जैसे जो गांव के खेल होते हैं कबड्डी होता है, कुश्ती होता है, गिल्ली डंडा, यही सब होता था और हम लोग बहुत खेलते थे बचपन में। सुबह गर्मियों की छुट्टी जब होती थी तो 10 बजे हम लोग निकल जाते थे घर से, बड़े बड़े बगीचे उस समय होते थे और पूरा शाम तक वहीं पर रहते थे, पूरा इंजॉय करते थे, उसके बाद शाम को आते थे। और कोई आधुनिक गेम जो इस समय हम लोग देखते हैं फुटबॉल क्रिकेट इस तरीके का, उस समय कोई वहाँ पे सुविधा नहीं थी, हम लोगों को पता भी नहीं था कि उस समय मेरे गांव में, अभी इलेक्ट्रिसिटी 2016-17 में आई है तो टेलीविजन भी नहीं था, तो इसे कोई जानकारी भी
1: नहीं मिल पाती थी आपको, जाहिर सी बात है। लेकिन आपने अभी कहा ना कि जो गांव के खेल थे, मैं ये कहना चाहूंगा गांव के खेल ही तो असली मजेदार खेल होते हैं
2: जी,
1: मतलब मजा तो उसी में आता है। बाकी तो दुनिया क्रिकेट पूरी दुनिया में खेले, लेकिन कबड्डी पूरी दुनिया नहीं खेलती है।
2: बिल्कुल।
1: लच्छी दाढ़ी पूरी दुनिया नहीं खेलती है। ये अपने भारत के गांव में ये सारे गेम्स, पाकिस्तान स्टोर हुआ और लुका छुपी हुई, ये सब तो बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा बचपन बीतता है। बचपन से पढ़ाई में कैसे थे आप?
2: पढ़ाई में सर मैं बहुत ब्राइट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और लेकिन ये था कि जो भी वर्क हमको मिलता था उसे मैं पूरा करता था और सारे टीचर्स पसंद करते थे इसके लिए और अच्छा था, एवरेज था।
1: अच्छा, तो मतलब टीचर्स आपको हमेशा से पसंद करते
2: जी सर, ये मेरे ऊपर पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा है।
1: बिल्कुल।
2: मैं जहाँ भी गया हूँ टीचर्स पसंद ही करते हैं और संपर्क भी मेरा उनसे हो, व्यक्तिगत संपर्क भी हो जाते हैं।
1: क्या
2: तो
1: है?
2: जब इंटरमीडिएट कर रहा था तो वहाँ पे एक राम सुजन पांडे करके सर थे
1: जी,
2: तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे मेरी मदद करी। और यहाँ जब मैं आया तो डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर
1: जी
2: और डॉक्टर बी सी एचन के श्रीनिवास राव सर हैं, उनसे उन्होंने बहुत हेल्प करी हर तरीके से, गाइडेंस में भी और आर्थिक रूप से भी, हर तरीके से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से भी।
1: मानसिक, आपने बोला बौद्धिक रूप से, किस टाइप की आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और कैसे आपके टीचर्स ने आपका साथ दिया?
2: सर मैं जैसे पहले ही बताया फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी।
1: जी जी।
2: तो मैं गोंडा आया उस समय और किसी तरीके से मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मैंने एडमिशन लिया, पढ़ाई कर रहा था, बहुत कम पैसे होते थे, हम लोग घर से आते थे एक हफ्ते यहाँ पे रहते थे, पैसा खत्म हो जाता था फिर जाते थे फिर आते थे, तो थोड़ा बहुत मिलता था, ऐसे चल रही थी
1: जी।
2: तो मैंने एक समय ऐसा ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हुआ तो मुझे लगा कि अब आगे नहीं चल पाएगी पढ़ाई, तो मैंने पढ़ाई छोड़ने का भी डिसीजन कर लिया था, निर्णय ले लिया था।
1: ओके।
2: और उसके बाद एक दिन ऐसे सर से मुलाकात हो गई, सर से हम लोग पहले भी जुड़े हुए थे, NSSN में लिया था ग्रेजुएशन में,
1: तो सर की बात,
2: डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर से।
1: ओके।
2: तो वो मिल गए और उन्होंने पूछ ऐसे हालचाल पूछा, तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मालिक तुम अभी जो है मैं कह रहा हूँ कि MA कर लो, उसके फिर देखा जाएगा, क्योंकि एक बार अगर तुम चले गए यहाँ से तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन मैं उस समय सर को भी नहीं सुना, वापस चला गया और सर ने मेरा दोस्त था उससे फोटो लेकर के और मेरा एडमिशन करवा दिया यहाँ पे।
1: ओके।
2: और उसके बाद मुझे बताया, तो फिर मैं फिर पढ़ने लगा और MA के बाद हमने BEd किया और सर ने ही कहा कि BEd कर लो और इसमें अच्छा स्कोप है, काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। और तो मैंने BEd किया और 2011 में उसी समय TET शुरू हुआ था
1: जी।
2: और TET भी क्वालिफाई किया लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया।
1: ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ
2: जी।
1: ओके। उसके बाद फिर आपने क्या किया?
2: उसके बाद ये था कि BEd को इससे प्राइमरी एजुकेशन से हटा दिया, प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकता था BEd वाला, कुछ समय के लिए किया गया
1: जी।
2: तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। मैंने सर मेरा कोई ग्रेजुएशन तक कोई गोल सेट नहीं था कि करना क्या है। मैं जब BEd मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है, इस क्षेत्र में संभावनाएं हैं, तो BEd मैंने बहुत अच्छे से किया। और फिर जब प्राइमरी में नहीं हो पाया उस समय तो मैंने फिर एजुकेशन किया MA में। उस समय कहा जाता था कि एजुकेशन से अगर आप MA कर लीजिए तो MEd के बराबर हो जाता है, तो खैर अब तो MA और MA एजुकेशन और MEd लगभग सेम हो गया है, एक डिसीजन आया हाई कोर्ट का। तो उसमें फिर मैंने MA किया एजुकेशन में और उसके बाद कुछ समय के लिए लखनऊ भी गया कि उस समय असल में मेरी सर चाइल्ड मैरिज हो गई थी।
1: ओके।
2: शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी।
1: ओके।
2: तो एक वो भी प्रेशर था कि कुछ करना है।
1: हाँ, परिवार चला
2: और लौट के घर जा नहीं सकता था।
1: सही बात है।
2: कि सबकी अपेक्षाएं थी कि यही पढ़ रहा है तो ये कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं कुछ समय के लिए लखनऊ भी गया तैयारी करने के लिए लेकिन मुझे कोई फील्ड समझ नहीं आया, तो मैंने फिर वहीं से नेट के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। सेल्फ स्टडी करता था नेट के लिए, मैं जाता था, कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किया था लेकिन ज़्यादा मैं उधर ध्यान नहीं देता था। नेट का मुझे अच्छा लगने लगा, उसका सिलेबस पढ़ा तो बहुत कुछ वो BEd से मिलता जुलता था एजुकेशन में जो नेट का सिलेबस है। तो फिर मैं नेट की तैयारी करने लगा और तीसरे अटैम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई किया,
1: तीसरे
2: 2013 में।
1: ओके।
2: हाँ, उसके बाद मैं इधर नेट के बाद मैं वापस आ गया गोंडा और सर ने कहा कि अब अगर आप नेट हो गए हैं, डॉक्टर त्रिलोचन सिंह, मैं बता रहा हूँ बार बार उन्होंने मुझे पुश कर करके यहाँ तक पहुँचाया।
1: बिल्कुल।
2: तो सर ने कहा कि कहीं पे तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कहीं कॉलेज ज्वाइन कर लो
1: जी।
2: तो मैंने यहाँ पे ज्ञानस्थली में उस समय मैंने ज्वाइन किया था और अप्रूवल भी मेरा हुआ था, लगभग 1.5 साल मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ। और जून 2015 में मैंने GRF के लिए क्वालिफाई किया, तो GRF जब हो गया तो मुझे रिसर्च के लिए जाना पड़ा और मुझे फिर मैं यहाँ से फिर रिजाइन करके PhD करने लगा। और इस बीच में तैयारी चली रही थी कम्पिटिटिव जो बेसिकली मैं टीचिंग जॉब की तरफ ही मेरा झुकाव था, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा था। और उसी 2014 में ये UP हायर एजुकेशन कमीशन का एक विज्ञापन संख्या 46 आया था, 46, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया और मेरा क्वालिफाई भी हो गया था, रिटर्न क्वालिफाई हुआ, लेकिन इंटरव्यू से मुझे वापस आना पड़ा वहाँ।
1: ओके, रिटर्न आपका क्वालिफाई हो गया था, आपको इंटरव्यू से वापस आना पड़ा।
2: जी
1: जी, फिलहाल अब वापस जाने का एक छोटा सा वक्त हो चला है, मतलब छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है
2: जी।
1: और अभी हमको ये जानना है कि आप चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं राजकीय महाविद्यालय सिद्धार्थनगर में, उस पे भी हम जानेंगे कि अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही, लेकिन अभी चलते हैं फिलहाल इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। सो अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: डिलीशियस
5: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
6: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन। हमारे बीच में आज हमारे खसूसी जो मेहमान हैं वो हैं मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। अभी तक आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, एक लफ्ज आया था इंटरव्यू।
7: जी,
6: इंटरव्यू में देखिए ज्यादातर लोग रिटर्न भी निकाल ले जाते, लेकिन इंटरव्यू में चूंकि आपकी ऑल ओवर चीजें जो आपने लिखी होती हैं, पढ़ी होती है, नहीं पढ़ने के अलावा आपका उठने बैठने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, सब कुछ देखा जाता है। और शायद कहीं ना कहीं वहां पे इसीलिए कहते हैं कि पूरी तरह से तैयार होके ही जाना होता है।
7: जी,
6: तो हम इस पे अभी आपसे बातचीत करने के बाद इस पे भी आएंगे, पूछेंगे कि एक इंटरव्यू में क्या क्या, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके लिए कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बहरहाल पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका अब तक का सफर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय सिद्धार्थनगर में कैसा रहा?
7: सर, बहुत अच्छा रहा है। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है वहाँ पे, एक साल लगभग हो रहा है, और सारा टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग है सब, और स्टूडेंट्स भी बहुत ही सपोर्टिंग है। वो पहले जो होती थी बच्चों में एक उच्छृंखलता होती थी, वो अब नहीं दिखती है बच्चों में, बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, और बहुत अच्छा माहौल है सर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव मिल रहा है राजकीय डिग्री कॉलेज में।
6: यानी आप,
7: लेकिन ये है सर, थोड़ा सा वहाँ पे संसाधनों का थोड़ा अभाव होता
6: अभाव है
7: जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, और एक तो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम लोग उसके साथ भी फेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं।
6: क्या बात है।
7: और मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मेरे सब्जेक्ट में 15 बच्चे थे उस समय, और अभी इस समय 68 बच्चे हो गए हैं। अभी वहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बच्चों ने दिया उन लोगों ने, तो 68 बच्चे हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है अच्छा कर रहे हैं हम लोग, और सारे टीचर्स अच्छा कर रहे हैं, सब सहयोग करते हैं।
6: चार गुना से ज़्यादा नंबर है, आप कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहाँ 15 बच्चे, कहाँ 68, आप 68 बच्चों को बता रहे हैं, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, दिख रहा है बिल्कुल गैप।
7: असल में सर, जब मैं इससे पहले मैं गवर्नमेंट यहाँ पे किसान पीजी कॉलेज बहराइच में काम करता था।
6: जी,
7: तो यहाँ से मैं रिजाइन करके गया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। तो एक बार एक सर ने पूछा कि कैसे चल रहा है मालिक वहाँ पे, तो हम कहे सर ठीक है, बस ये कि उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का नहीं है, लेकिन ठीक है। तो उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा मालिक जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है वहाँ पे तो सब लोग अच्छा कर लेते हैं, जहाँ पे वहाँ पे फिर कुछ करना ही नहीं होता है, जहाँ पे चीज़ें बहुत विपरीत होती हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे आपका काम दिखेगा और आपको वहाँ करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे भी, और उस दिशा में प्रयास भी कर रहा हूँ मैं।
6: बिल्कुल ये सही कहा आपके गुरु ने, क्योंकि जहाँ नहीं होता वहाँ कुछ स्कोप होता है कि उसको किया जाए।
7: हाँ, बिल्कुल।
6: और जहाँ ऑलरेडी चीजें मिली मिलाई हैं,
7: हाँ, वेल एस्टेब्लिश्ड है जहाँ पे सब चीजें, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा, हालांकि आपके पास अपनी अलग यूनिक क्षमताएं होती हैं, आप अपना ऐड करते हैं हर जगह, लेकिन वहाँ जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको
6: स्कोप ज्यादा होता है,
7: स्कोप और आपको काम करने के लिए बहुत अवसर मिलते हैं।
6: बिल्कुल सही आपने कहा
7: जी।
6: आपने बताया कि आपको सपोर्ट बहुत मिलता है, चाहे वो टीचर्स से मिलता हो, स्टूडेंट से मिलता हो
7: जी।
6: लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि अगर स्टाफ से मिलता है तो यानी आपका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है
7: जी।
6: आप रिश्तों को निभाते अच्छा हैं, आप डील अच्छा करते हैं। बच्चों से अगर बात किया जाए तो आपकी टीचिंग मेथड में इतना इफेक्टिव है तो ही आप बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो आप जरा उन दोनों के बारे में बताइए कि टीचर के साथ आपका बिहेव आप कैसे रखते हैं और बच्चों के लिए पढ़ाने के दौरान आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं।
7: मैं सर बिल्कुल फ्रेंडली रहता हूँ। हमारे सब जो भी टीचर्स वहाँ पे होते हैं सब वेल क्वालिफाइड हैं, यूपी हर्ज के, यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा फेस करके आए, सारे लोग अच्छे हैं। और आप उनके साथ अगर अच्छा बिहेवियर करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वो भी आपको पूरा समय देते हैं, पूरा आपको सहयोग देते हैं। तो सारे लोग अच्छे हैं तो मैं उसमें फिट हो जाता हूँ मैं भी, और मेरा भी ये व्यवहार ऐसे ही रहता है। मैं हमेशा सबके साथ मुस्कुरा के मिलना, और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं मन में रखता नहीं हूँ किसी के प्रति भी, तो इसलिए चलता रहता है। और टीचिंग का मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को बोलने की ज़्यादा ज़्यादा समय देता हूँ, तो उससे ये समझ में आता है कि बच्चे कैसे सीखेंगे, क्या उनका ज्ञान का स्तर क्या है, और किस तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है कि जिससे वो बेहतर लर्न कर सकें। तो इससे फ़ायदा होता है जब आप बच्चे का स्तर जान जाते हैं, तो उसके और टीचर का काम होता है बच्चे के स्तर तक उतरना। जब आप उसके स्तर पर आ करके उससे बात करते हैं तो उसको अच्छा भी लगता है और समझ में भी आता है चीज़ें, तो इसलिए अच्छा चल रहा है।
6: ये बात तो समझ में आई कि आपने कहा कि उसके बच्चे के स्तर तक जाया जा सकता है, लेकिन स्तर पता कैसे करते हैं आपके कि किस बच्चे का क्या स्तर है? क्योंकि मेरे ख्याल से हर बच्चे का अलग अलग स्तर होता है।
7: हाँ जी।
6: तो क्या एक आपकी मेथोडोलॉजी होती है
7: बच्चों से? सर जैसे जब क्लास हम लोगों की जब शुरू होती है, जब सेशन स्टार्ट होता है
6: जी,
7: तो हम लोग बच्चों से बात करते हैं, व्यक्तिगत हर बच्चे से बात करते हैं। और जब टॉपिक हम शुरू करते हैं पढ़ाने के लिए, तो भी बच्चों से रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे पता लगता है कि उनका क्या स्तर है, कितना उन्होंने, जो भी टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसमें उनका कितना ज्ञान है, तो इससे पता लगता है कि वो किस स्तर से उनको किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए।
6: मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही बताया कि आप पहले बात तो उस बच्चे के बारे में खुद बात करते हैं ताकि वो आप देखते हैं कि कितना बच्चा खुद के बारे में बता पा रहा है, यानी क्या लेवल है। दूसरा, आप जो टॉपिक चूज करते हैं पढ़ाने के लिए उसके इर्द गिर्द की बहुत सिंपल सिंपल बेसिक सी बातें करते हैं ताकि बच्चों का एक स्तर जान पाए कि कौन बच्चा कितना जानता है। ये तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा था और बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इस वक्त बहुत सारे शिक्षक भाई भी सुन रहे होंगे इसको, और उनको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक बार समझ में आ रही होंगी कि हाँ, वो भी अपने क्लास में इस तरह से इंटरवेंशंस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। अब बात करते हैं बच्चों की ह्यूमन साइकोलॉजी होती, बच्चों की अपनी एक साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स की
7: जी,
6: तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका भी बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस आपने बताया यहाँ का नहीं, लेकिन अगर ऑल ओवर टोटल देखा जाए टीचिंग का एक्सपीरियंस तो आपको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी कॉलेजेस जगहों पे पढ़ाया है।
7: हाँ, लगभग तीन चार साल का एक्सपीरियंस कह सकते हैं।
6: चार साल का
7: मैंने लगभग 1.5 साल ही ज्ञानस्थली में टीचिंग किया है
6: जी,
7: और 8-9 महीने KDC बहराइच में
6: जी,
7: और अभी 1 साल से लगभग वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अक्टूबर 2021 में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो 1 साल 6-7 महीने हो गए वहाँ पे भी,
6: लगभग 4 साल का मोटा मोटा मान लेते हैं
7: जी जी।
6: तो आपने अलग अलग जगह के बच्चों को पढ़ाया, अलग अलग बच्चों को देखा है, आपको क्या लगता है कि बेस्ट मेथड क्या होता है बच्चों को समझाने का?
7: बेस्ट मेथड ये है सर कि आप बच्चे की जो सेंसेज हैं उसमें कितने सेंसेज को आप इन्वॉल्व कर पाते हैं, मल्टी सेंसरी जो आजकल तमाम सारी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। हम लोग ब्लैक बोर्ड चाक डस्टर इसलिए उपयोग करते हैं कि उसमें उनकी कई सेंसेस एक्टिवेट होती हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और अगर हमें लगता है कि बेसिक चीज़ें और जो टेक्नोलॉजी है उसको और मजबूत किया जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए विद्यालयों में, तो बच्चे और अच्छे से समझ पाएंगे।
6: सेंसेस का क्या अर्थ होता है, ये हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा सरल भाषा में समझा दें।
7: सर, जैसे हमारी 5 सेंसेस होती हैं, सुनने की, देखने की, आँख, नाक, कान, त्वचा। तो जितनी चीज़ें हमारी जितनी सेंसेस एक्टिवेट होती हैं, अगर जैसे हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं, आप मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं,
6: बिल्कुल,
7: तो मूवी देखते हैं 3 घंटे तक और 3 घंटे की स्टोरी आपको याद हो जाती है, लेकिन आप एक किताब 3 घंटे तक बैठ के पढ़ते रहते हैं याद नहीं होती,
6: नहीं होती।
7: तो उसमें चूंकि आप देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और आप इमोशनली भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज किया जा सके चीज़ें, तो उसके लिए खैर ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आ गई है और ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो भी है हम लोग यूज करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी हम लोग पढ़ाते हैं। एक ऐप है, अभी मैं उसको जल्दी हमने शुरू किया है यूज़ करना, एड पजल करके है, तो उसमें आप क्लासेज अपनी बना सकते हैं। और बीच बीच में उसमें ये भी सुविधा दी गई है कि आप उसको क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि जब बच्चा वो वीडियो देखेगा तो एक कुछ समय तक चलने के बाद वो एक वहाँ पे आके पॉज हो जाएगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐड करेंगे, तो जब तक वो क्वेश्चन को आंसर नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है उपयोग करके और अच्छी टीचिंग की जा सकती है।
6: मतलब आपका सीधा सही कहना है, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने टीचर से इस बात को लेकर बात की सबके अपने बहुत अच्छे रिप्लाईज आए हैं, लेकिन आज आपका जो रिप्लाई आया है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बहुत ही मुझे बहुत क्लियर समझ में आया कि अगर बच्चों को समझाना तो आपने कहा उनके ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हों उस चीज़ को समझने में, वहाँ बच्चे ज्यादा समझते हैं। आपने एक एग्जाम्पल के तौर बताया एक बुक और एक मूवी की बात, यानी 3 घंटे

0: तो टीचर्स के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है,
1: टीचर्स के
0: तो
1: लिए।
0: हाँ, और उसके लिए हमको तैयार होना होगा उस तरीके से कि हम उनके साथ कम्पीट कर पाएँ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ। तो उस तरीके की हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ हम लोगों को हैबिचुअल होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ पे थोड़ा इंटीरियर है, यानी अभी संसाधनों का अभाव है।
0: जी जी।
1: स्मार्ट क्लासेस अगर मान लीजिए आप क्या हैं, तो बिजली की समस्या भी आप फेस करते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं फिर?
0: बिजली की समस्या सर है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन जो कस्बा है वहाँ पे तो खैर रहती है, लेकिन हम लोग यही समस्या हम लोगों के पास वहाँ पे है सर, बड़ी समस्या यही है कि वहाँ पे ये संसाधन अच्छे नहीं हैं, बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप अगर ऑनलाइन क्लास पढ़ाना चाहते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन है बच्चों के पास, तो स्पीड नहीं होती है, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते हैं, लड़कों के पास होते हैं, विशेषकर लड़कियों के पास नहीं होते
1: हैं।
0: कई बार उनकी शिकायत आती है, मैं कोशिश करता हूं, असल में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तो हम लोग उसमें एग्जाम्स लगातार होते रहते हैं, तो ये प्रयास रहता है कि जब एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाऊँ बच्चों को, तो कोशिश की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, और उनसे जब बात की जाती है क्यों नहीं जुड़ते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, भैया के मोबाइल से जुड़ना, बाप पिताजी के मोबाइल से मैं जुड़ती हूँ। तो ये समस्या है सर वहाँ पे, इंटरनेट स्पीड नहीं है, तो इसमें सुधार की ज़रूरत है, सरकार प्रयास भी कर रही है और धीरे धीरे हो सकता है समस्याएँ सॉल्व हों।
1: जी, आपने कहा प्रयास हो रहा है और शायद यहाँ पे ज़रूरत है इन चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम करने की। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आपके ऊपर आता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, आप इतना शहर में रहें, आप गोंडा में रहें, सारे आपको सुविधाएं मिली, आप गए बहराइच में, वो भी आप मेन सिटी के अंदर रहें, वहाँ भी आपको सुविधाएं मिली, लेकिन अभी आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपके एंटरटेनमेंट का क्या साधन है? आप खुद को कैसे इंस्पायर करते हैं, खुद को कैसे चिल करते हैं? बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं है, घूमने की जगह नहीं है, कैसे करते हैं?
0: सर मैं जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो गांव मुझे अच्छा लगता है, और जब वहाँ के लोगों से मिलो, बच्चों से मिलो, तो लगता है कि कोई अपना ही, उनसे एक अपना अलग लगाव होता है, बच्चों से एक जुड़ाव हो जाता है
1: जी।
0: तो इस तरीके से, और अपना एंटरटेनमेंट का सर हम लोग 10 बजे से लेकर के लगभग 5 बजे तक कॉलेज में समय देते हैं
1: जी।
0: उसके बाद आते हैं, बच्चों को समय देते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको होमवर्क कराना, और तो उन सब में समय निकल जाता है।
1: मतलब बच्चों पे ही आपने अपना जीवन कह सकते हैं कि फिलहाल अभी उनके नाम कर दिया है।
0: हाँ सर, बच्चों पे और अपने स्टूडेंट्स पर भी, क्योंकि मैं जब भी सर कोई भी क्लास नहीं होती है तो उसके पहले मैं 2 घंटे कम से कम पढ़ के जाता हूँ, तो जब मैं कॉलेज से आता हूँ बच्चों को, अपने बच्चों को होमवर्क कराता हूँ, पढ़ाता हूँ उनको, और उसके बाद मैं अपनी तैयारी करता हूँ पढ़ाने के लिए। अक्सर फ़ोन आता है लोगों का, तो मैं बता रहा हूँ यार मैं पढ़ रहा हूँ, तो कहते हैं अभी तुम क्या पढ़ रहे हो यार अब तो तुमको नौकरी मिल गई। हमके ये जो जॉब है इसमें लगातार आपको अपडेट
1: रहना,
0: हाँ सीखते रहना,
1: सही बात है,
0: इस तरीके का ये नेचर है यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। क्लास में आप जब जाते हैं और बच्चों को उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप अच्छे से आंसर करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक सेटिस्फेक्शन खुद को मिलता है, और चीज़ें बदलती भी रहती हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें, तो वो सब जब आप स्टडी करते हैं, घर पर तैयारी करते हैं, तो वो बहुत बेटर हो जाती है, और बहुत अच्छा अनुभव होता है जब क्लास से पढ़ा के निकलते हैं, तो अपने आप को अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: तो और ये सर मुझे लगता है बहुत यही तरीका भी है पढ़ाने का, रटा रटाया चीज़ें तो बच्चे पढ़ ही सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, और तमाम सारे आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, तो यूट्यूब, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं।
1: जी
0: जी,
1: तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर खुद अपडेट होके जाएंगे तो शायद बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा पाएंगे, नई नई चीज़ें बता पाएंगे, बच्चों की भी दिलचस्पी जागेगी और आपकी भी, आपको काम करने में मज़ा आएगा, और वो काम अपने आप में नायाब होता है जिस काम में मज़ा आए।
0: जी,
1: तो वो आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, हमारी आपके साथ बहुत सारे विषयज हैं, आप और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इस मामले में करते रहें, बच्चों का और प्यार पाते रहें, कम्युनिटी से और जुड़ाव होते रहे, ऐसी

पूरी दुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अब चूंकि अभी म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है, तो अपने इस ब्रेक के आने के बाद, चूंकि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके आप आज इस पद पे कार्यरत हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपने कैसे इसको क्रैक किया, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। इसलिए अपने श्रोताओं से कहेंगे कि बात होने वाली है बहुत अहम, सो जाइएगा कहीं मत, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
2: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद हैं मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। अभी हमने चूंकि जाने से पहले आपसे कहा था कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताना है
6: जी,
2: तो बहुत सारे ऐसे इस वक्त हमारे लिसनर्स हैं जो तैयारी कर रहे होंगे और टीचर ही बनना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस आपसे बात करूंगा
6: जी।
2: तो आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए?
6: सर मैंने पहले बताया कि मैं पहला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था
2: जी,
6: वो यूपी टेट था 2011 में
2: जी,
6: और क्वालिफाई किया था वो भी मैंने
2: जी।
6: उसके बाद यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का विज्ञापन 46 आया था, उसमें भी मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया
2: जी।
6: फिर यूपी लोक सेवा आयोग का एक विज्ञापन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसको भी क्वालिफाई किया और उसमें सिलेक्शन भी हुआ। फिर विज्ञापन 47 का ये जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन है उसको भी क्वालिफाई किया है मैंने, उसमें भी सिलेक्शन मिला। 2019 में मैंने 20 में मेरा प्राइमरी में भी सिलेक्शन हुआ था
2: जी।
6: उसमें फिर से ऐड किया गया था बीएड वालों को कि प्राइमरी में जा सकते हैं, तो उसमें मैंने फिर से दिया, टेट दिया, सुपर टेट हुआ और उसके बाद प्राइमरी में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन चूंकि उस समय इसका भी रिजल्ट आ गया था यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का, तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया प्राइमरी को। यहाँ पे मैंने एडेड कॉलेज ज्वाइन कर लिया बहराइच में, KDC बहराइच।
2: ओके, तो पहले तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि टेट किस लिए होता है, सुपर टेट क्या होता है?
6: टेट सर एक पात्रता है, अगर आप प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने के इच्छुक हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी एक वो पात्रता आपको होगी, तभी आप जा पाएंगे प्राइमरी में। एक मिनिमम कह लीजिए क्वालिफिकेशन है।
2: ठीक है, और ये सुपर टेट क्या है?
6: सुपर टेट उसके टेट के बाद एक कह लीजिए स्क्रीनिंग है।
2: okay.
6: उसमें बहुत सारे विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक तरीके से हम उसको सेमी फाइनल कह सकते हैं।
2: सेमी फाइनल कह सकते हैं, अच्छा।
6: टेट के बाद उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको सिलेक्शन मिलेगा प्राथमिक में।
2: ओके, तो आपने देखिए इतने सारे एग्जाम्स दिए और आपने सफलता भी पाई, आप असफल भी हुए
6: जी,
2: तो आप एक बेहतर तरीका समाज को बता सकते हैं कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, आपका अप्रोच क्या रहा? तो हम पहले तो आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही।
6: सर मेरी स्ट्रेटजी सबसे पहली ये होती है कि मैं एग्ज़ाम का पैटर्न समझता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके लिए आपको जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। और मैंने यही किया, जब मैं नेट के लिए तैयारी कर रहा था तो जितने पिछले 10 साल के जो भी प्रीवियस पेपर्स थे उनको मैंने पढ़ा, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उनको मैं लिख लेता था, नोट्स बनाया उसका, और उसमें सारे जो वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी जो टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं, तो मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते थे उनको, उन चारों ऑप्शंस को मैं पढ़ता था और उनके जो भी उनसे संबंधित जो भी जानकारी होती थी उनको मैं नोट्स करता था हर क्वेश्चन का। तो इसलिए एक मेरा बहुत बड़ा, बहुत मोटा सा नोट्स तैयार हो गया था सिर्फ प्रीवियस पेपर्स के लिए, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, किस तरीके का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाला है, और तो उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो पिछले साल के जो पेपर होते हैं उनको सॉल्व करें और उसके बाद फिर डिटेल स्टडी करें, तो बहुत अच्छे से समझ में भी आता है और आपको एक आइडिया आ जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन बनने वाला है।
2: आपने बहुविकल्पीय में बताया कि चार क्वेश्चंस के बारे में आप लिखते थे और डिटेल में जानकारी निकालते।
6: हाँ, उसको मैं अगर और सरल करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये बना कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, चार ऑप्शन उसमें दिए गए
2: जी,
6: समसा दे दिया गया, रमसा दे दिया गया, रूसा दे दिया गया, इनमें से कोई नहीं, तो माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो आप उसमें मैं वो आंसर तो मैं समझ गया कि हाँ ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित है, तो समसा किससे संबंधित है उसको भी मैं नोट करता था कि समसा क्या है फिर वो सर्व शिक्षा अभियान है, तो रूसा क्या है उसके बारे में मैं डिटेल लिखता था कि ये हायर एजुकेशन का है रूसा, उच्च शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया जा रहा सरकार के लिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो इस तरीके से मैं नोट्स बनाता था, सारे चारों ऑप्शंस के बारे में समझने की कोशिश करता था।
2: तो ये बड़ा अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी लगी कि लोग जो हैं वो सिर्फ आंसर देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, लेकिन वही चीज अगला जो ऑप्शन उसमें है उसी के द्वारा भी उसको घुमा के पूछा जा सकता है, जैसा कि आपने कहा,
6: और उससे बहुत हेल्प मिलती है
2: जी।
6: कई बार वो क्वेश्चन रिपीट होके आ जाता है आपके पेपर में
2: जी,
6: तो ये मेरी यही कोशिश होती थी कि इन जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है उनके बारे में मैं जान लूं पहले
2: बिल्कुल सही आपने कहा, मतलब ये स्ट्रेटेजी मुझे प्रैक्टिकली बहुत समझ में आई कि आप ऐसा क्यों करते थे, ये बड़ी अच्छी बात रही। अभी बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू की, जैसे कि आपने कहा एक बार आप असफल भी रहे और आपने कई ऐसे एग्जाम,
6: तीन बार सर मैं इंटरव्यू दिया हूँ, दो बार टीजीटी का दिया था
2: जी,
6: लेकिन उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, और एक बार हायर एजुकेशन के लिए तो वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। असल में इंटरव्यू में आपके रिटर्न के मार्क्स भी जुड़ते हैं और इंटरव्यू का भी होता है,
2: करेक्ट,
6: तो रिटर्न में अगर बहुत अच्छा होता है तो इंटरव्यू में मिनिमम भी मिल जाता है, मैं जो भी न्यूनतम उसका मार्क्स निश्चित किया गया वो भी मिल गया तो हो जाता है, लेकिन रिटर्न में अच्छा नहीं होता है तो फिर कितना भी मिल जाए इंटरव्यू में आप सिलेक्शन नहीं हो सकता है।
2: तो मान लीजिए रिटर्न में किसी का बहुत अच्छा निकल आया है और वो इंटरव्यू के लिए अब तैयारी कर रहा है, अभी आप इस टाइम चूंकि हमारी आपके टॉक शो चल रहा है, आप ऐसे बच्चों के लिए क्या बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में किस टाइप की चीजें ज्यादा पूछी जाती, कैसे सवाल ज्यादा होते हैं?
6: टीचिंग्स में सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो भी आप जिस सब्जेक्ट से संबंधित हैं उस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू पैनल में अगर कोई सचिव उचिव टाइप के लोग बैठे होते हैं तो वो लोग थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
2: अलग टाइप,
6: ज्यादातर क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे।
2: ज्यादातर अलग से कैसे आ सकते हैं?
6: अलग से सर जैसे आपके पर्सनालिटी से संबंधित या कुछ जनरल अवेयरनेस, कोई नई घटना हुई है जो समाज से संबंधित है, तो उन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपको अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना होता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
2: आपने बताया अगर कोई टीचिंग के लिए जा रहा है और उसका इंटरव्यू है तो वो ज्यादातर अपने सब्जेक्ट पे कमांड करे, उससे रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर कोई सचिव जैसे लोग अगर बैठे हैं पैनल में तो वो हो सकता है कुछ अलग की चीजें भी आपसे पूछे। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब भी करने जा रहा है तो एक इंटरव्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है आपके चुने जाने के लिए, और बिना इंटरव्यू मुझे नहीं लगता है कि अब शायद बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होगी जो ले लेती होगी, वो भी छोटी मोटी, क्योंकि अगर ठीक ठाक भी कंपनी तो वो इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। उन बच्चों के लिए आप क्या बताएंगे कि इंटरव्यूज में कॉमनली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से इंसान प्रिपेयर होके जाए और किन किन बातों का ध्यान रखे?
6: इंटरव्यू में सर आपको अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको कॉन्फिडेंट दिखना होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना होता है आपको आपके बात करने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं जो दूसरी तरफ बैठे होते हैं, तो उनको आप बहुत, आपका बात करने का तरीका विनम्रतापूर्ण होना चाहिए और बहुत सोच समझ के जवाब उनको दें, और ऐसा ना लगे उनको कि ये जो है बहुत ज्ञान बघार रहा है या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे।
2: यानी कह सकते हैं जितना पूछा है पॉइंट टू पॉइंट बात,
6: पॉइंट टू पॉइंट, और अगर नहीं जानते हैं तो सीधे मना भी कर सकते हैं कि मैंने, मुझे नहीं आता है सर। अगर आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वो तो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, वो जानते हैं क्या है सही उत्तर, क्या होना चाहिए
2: सही है,
6: तो आप ना कर सकते हैं लेकिन गलत उत्तर नहीं दे सकते हैं।
2: ओके, तो आपने पहले चीज़ तो ये कहा कि पहले तो आपको कॉन्फिडेंट दिखना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट
6: जी,
2: दूसरी चीज आपने कहा कि सोच समझ के ही बात करना है।
6: सर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, तो उसका पहले चयन हो चुका था एक जगह और मेरे साथ ही उसका इंटरव्यू था, तो वो गया वहाँ पे। उससे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि आप यहाँ पे इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, तो उसने कहा पैसा,
2: सीधे पैसा।
6: तो इस तरीके से भी उत्तर नहीं देना है।
2: तो उनके साथ फिर क्या हुआ?
6: तो उनको सर मतलब ऐसे क्वेश्चंस वो बता रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लगी जिसमें मैं सब में फंसता चला गया। तो इस तरीके से इंटरव्यू खराब भी हो सकता है। तो बहुत आपके बोलने का तरीका, बोलने का लहजा और ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए, विनम्रता पूर्ण आप दिखें वहाँ पे, आप एरोगेंट ना दिखें वहाँ पे, घमंडी अहंकारी टाइप के ना दिखें
2: जी,
6: बिल्कुल नॉर्मल आप दिखने की कोशिश करें जो हैं आप,
2: मतलब जितना सहज आप खुद फील करके जाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका इंटरव्यू होगा
6: जी।
2: आप वहाँ पे सहज बन के बैठें
6: जी,
2: और जो कुछ आता उसका ईमानदारी से आंसर करें, जो नहीं आता उसको मना कर दें, और आपने कहा कि आपके लहजे में विनम्रता होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी आपने बात कही, और कहीं ना कहीं शायद जो इंटरव्यू देने जाता है उसको अपने बारे में ज्यादा नॉलेज भी होना चाहिए। पहली बात तो कि अपना इंटरव्यू भी
6: बिल्कुल
2: पता
6: अपने बारे में,
2: अपने बारे में क्या है
6: नीचे जी,
2: कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपने बारे में आप अवेयर होने चाहिए, इंटरव्यूज की यही क्वालिटीज होती है, ये बात बिल्कुल सही कही। अभी चूंकि आपने अपने स्टार्टिंग में ही गुरुजनों का नाम बताया, और जैसा कि बताया कि आप तो पढ़ाई तक छोड़ चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उनका दोबारा से आपका नाम लिखवा देना बिना आपसे कहे, वापस में आपके पलट के आना, और आज आप जिस जगह हैं, कहते हैं ना कि एक बहुत छोटी सी भी चीज़ पूरी की पूरी जिंदगी बदल देती है, कई बार बहुत अच्छा कर देती है, कई बार बुरा भी होता है, लेकिन इत्तेफाक से और भगवान के आशीर्वाद से कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है,
6: बहुत अच्छा हुआ है।
2: तो मैं लास्ट
6: इस मामले में मैं लकी हूँ।
2: इस मामले में आप लकी हैं, और आपकी स्माइल, आपका वो कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप सच में कितने ज्यादा लकी हैं, कहीं ना कहीं वो मुझे कनेक्शन आपका दिख रहा है आपके गुरु के साथ। तो इसी कड़ी में मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे?
6: सर सबसे जो, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर का है, और बाकी सारे गुरुजनों का हमको आशीर्वाद मिला, सब लोग गाइड करते थे, सब लोग किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे, मोटिवेट करते थे, और इसके साथ साथ माता पिता, और हमारी जो शादी भी बचपन में हो गई थी सर, तो पत्नी का भी बहुत सहयोग रहा, क्योंकि बच्चा भी था, और वो लोग भी, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, समर्थन किया।
2: देखिए ये तो हम बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि गुरुजन का आशीर्वाद होना बहुत बड़ी बात है, और बहुत ज़्यादा आप सफल भी होते हैं उनके आशीर्वाद से, लेकिन अगर वाइफ है और वो भी आपको समझ रही हैं, आपके काम को, आपको स्पेस दे रही हैं, तो आपकी वाइफ भी उतनी ही भागीदार हैं आपकी सफलता में जितने आपके गुरुजन हैं। तो ये बात तो आपने सही कहा कि माँ बाप का भी रोल था, वाइफ का भी था, और गुरुजन का तो खैर था ही था, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, आज हमारे बीच में आप मौजूद थे, आपसे हमने पहले आपके बारे में जाना, उसके बाद आपके करियर के बारे में जाना, टीचिंग के बारे में जाना, इंटरव्यू स्किल्स के बारे में जाना, क्वेश्चनर्स कहते होते हैं ये हो जाना, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी एग्जाम को क्रैक करने की, वो भी हमने जाना, और आपने सबका बहुत ही सरलता से और सहजता से उत्तर दिया, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं।
6: थैंक यू सर।
2: और साथ ही साथ चूंकि जाने से पहले हर एक गेस्ट से लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि आप बैठे हैं देवी पाटन मंडल और गोंडा के पहले रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के स्टूडियो में, तो आपको क्या लगता है कि ये एफएम गोंडा वालों के लिए क्या वैल्यू ऐड करेगा?
6: बहुत ज़्यादा सर, मैंने पहले भी कहा था और मैंने कहा था गोंडा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गाइडेंस की, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और ये कार्यक्रम आपने जो भी एफएम ज्ञानस्थली 89.6 शुरू हुआ है, इसकी वजह से बहुत बहुत फ़ायदा होगा सर इस क्षेत्र के जितने भी लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि आप अपने कार्यक्रम में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अपने क्षेत्र के बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मैं नहीं होता
2: लेकिन बहुत सारे लोग है ना, अचीवमेंट
6: आते हैं, तो उनके अनुभवों से सीखने को मिलता है। जो भी सुन रहा होगा वो उनसे मोटिवेशन ले सकता है कि इस तरीके से मैं भी कर सकता हूँ या इस क्षेत्र में मैं जा सकता हूँ, यहाँ करियर के ऑप्शन हैं। और बहुत अच्छा है सर। और एक चीज़ और इसकी ऐड कर सकते हैं आप, और हमें लगता है चल भी रहा होगा यहाँ पे, कि जैसे कोविड काल में हमने देखा सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो गई थी, तो इस रेडियो ज्ञानस्थली का उपयोग आप शिक्षण में भी कर सकते हैं, टीचिंग में भी कर सकते, शायद कर रहे होंगे, और उसमें आप टीचर्स आ करके यहाँ कार्यक्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो भी बच्चे हैं उनको निश्चित समय पर बता सकते हैं कि समय कार्यक्रम आएगा, ये चैप्टर ये टॉपिक पे पढ़ाई होगी। तो ये सर बहुत अच्छा उपयोग होगा और बहुत बहुत वैल्यूएबल कार्यक्रम है सर ये।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाँ 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच में ज्ञानस्थली लाइव प्रोग्राम होता है, जिसमें सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, मेंटर्स वो आते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं और स्पेसिफिक टॉपिक पे ही चर्चा होती है।
6: बिल्कुल,
2: तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें हम और भी दिन ब दिन जैसे जैसे लोगों के सुझाव मिलते जाएंगे हम इसमें अपनी वैल्यू ऐड करते जाएंगे।
6: बिल्कुल।
2: से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से कि आप हमारे स्टूडियो में आए और कीमती वक्त दिया।
6: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि एक दिन आपका भी इंटरव्यू होना चाहिए, आप भी गोंडा से हैं और बहुत कुछ हासिल किया है आपने इस तरीके से। आप एक फील्ड, आप ये भी बच्चों के सामने आ सकती है कि इधर भी करियर बनाया जा सकता है और उसमें आप गाइड कर सकते हैं कि कैसे करियर बनाया जाए।
2: बिल्कुल। तो यहाँ पे रेडियो जॉकी का वोकेशनल कोर्स में भी चल रहा है और हम बताते भी हैं कि जैसे मैं खुद एक रेडियो जॉकी हूँ, एक रेडियो को चलाने वाला, वैसे ही बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सारे आरजेज, मुझे नहीं लगता है कि बड़े शहरों की तरफ देखना पड़ेगा गोंडा को, गोंडा के खुद के अपने बच्चे ही यहाँ के आरजे होंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा।
6: बिल्कुल।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि आज हमारे बीच में मौजूद थे मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एडुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, जिनसे आज हमने उनकी जिंदगी के बारे में जाना, पढ़ाई के बारे में जाना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाए इसके बारे में जाना, इंटरव्यू स्किल्स क्या होती है और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं इसके बारे में जाना। सो बहुत बहुत शुक्रिया आज उनका, वो हमारे स्टूडियो में है। और आपसे भी हम यही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल। इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
8: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283।
10: पता है सर्कुलर रोड आवाज़।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

हाँ भाई, दिल पगला है तभी तो उसका इलाज कराना जरूरी है, अदरवाइज क्या जरूरत पड़ती डॉक्टर लव की। पर क्या करें, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि वो जो करता आपका ध्यान है, मौजूद आपकी हर परेशानी में हर शाम है, पर मिलता आपको सिर्फ शनिवार की शाम है, और डॉक्टर लव उसका नाम है। सो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है गोंडा मैसेज मसाला की शाम में। एंड आप लोग को बता दूं कि आज है शनिवार, लेकिन बात होगी बेशुमार। भले शनिवार को हम वीकेंड वीकेंड वीकेंड करते हैं, लेकिन हमारी शुरुआत तो शनिवार को ही होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दुनिया कुछ अलग कर रही हो तब हमें कुछ और सोचना चाहिए। मतलब टू एन एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब ऑपोजिट वाला रिएक्शन वहाँ होगा ना, तभी तो बनेगी बात, यस तेरी मेरी गल बन जाएगी। तो गल बनाने के लिए हम सभी को रल मिल के सपोर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे का, और तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो बात आगे बढ़ाने से मुझे याद आया कि बात तो हम ऐसे ही बढ़ाते भी रहेंगे, मज़े भी आते ही रहेंगे, चाय के प्याले पीते पिलाते रहेंगे, पर क्या आपको पता है, क्या आपको पता है क्या क्या आपको पता है कि हमारा जो कहते ना कि अंदाज जो है वो गुमनाम हो जाएगा। तो फिलहाल आरजे बीना के साथ डॉक्टर लव आपके खिदमत में हाजिर होने को हैं कुछ ही मिनटों में, पर तब तक के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी समस्याओं से मुझे रूबरू करा दें। फिलहाल आप लोग को बता दूँ गर्मी बढ़ ही रही है, और देखिए कुछ दिनों बाद शायद मौसम चेंज हो, और नौ तपा भी लगने वाला है, नौ दिन तपेंगे खूब बढ़िया से, 25 को सुनने में आ रहा है लगेगा, तब तो भाई हाल बेहाल हो जाएगा। फिलहाल हर बार की तरह नौ तपा ना लगे भगवान, थोड़ा हल्का फुल्का रहे इस बार, ठीक है ना। तो बुखार हो तो कहते हैं दवा मिल जाती है, खांसी हो तो शरबत मिल जाता है, पर इश्क का वायरस लग जाए तो बस व्हाट्सएप का लास्ट सीन ही नजर आता है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्या आप भी व्हाट्सएप का लास्ट सीन किसी का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं कि वो ऑनलाइन हो और मैं मैसेज करूँ शायद रिप्लाई आ जाए? क्या आप भी सोच रहे हैं कि उससे एक बार बात हो जाए और कारण पता चल जाए कि बात क्यों नहीं हो रही? तो भाई ये शो आपके लिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी समस्या का समाधान लेके आरजबीना आपके साथ, हमारे साथ नेहा हैं। और बाकी जो लोग सुनना शुरू कर चुके हैं उनसे बता दूं कि अपना नंबर बिल्कुल डायल करना मत भूलिएगा, 6393 3164 29, यानी कि 6393 3164 29 33 कई बार आ रहा है, यानी कि आपको भी पता है कि 3 का मतलब लव होता है हमारे लव की भाषा में, हमारे प्रेम की नगरी में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आजकल जो क्या प्यार के जो स्टेटस है लोगों के, बड़े बदल से गए हैं। पहले प्यार, फिर तकरार, फिर तकरार, फिर तकरार, फिर अंत बार में बिल्कुल दूरी मुकर्रर हो जाती है। क्या लगता है ये बताइए कि अगर कोई कहे कि हमें प्रेम में सफलता कैसे मिल सकती है, हर चीज़ की एक स्ट्रेटजी होती है ना, जैसे कहते हैं नहीं हर यूपीएससी एस्पिरेंट होता है, नीट एस्पिरेंट होता है, नीट वालों का तो कहो ही मत, आजकल हाल बुरा चल रहा है, और मैं क्या बताऊँ आने वाले समय में क्या ही होगा। हमें तो लग रहा है कि पढ़ाई वगैरह छोड़ के हम लोग को आदिवासी बन जाना पड़ेगा, और लाइफ जो है ना वो लगेगा कि संन्यास, मतलब संन्यास नहीं, आदिवास में ही सबसे बढ़िया चलेगी, जंगलों में, दीन दुनिया से, व्हाट्सएप, इंटरनेट, एआई, फलान फलान, इतनी सारी मतलब कह सकते हैं ना कि भसड़ मची हुई है ज़िंदगी में, कोई इधर से किसी चीज़ को लेके ढकेल रहा है, कोई उधर से, मतलब आप जैसे शांति लेने की सोचो ना तब तो पता, अरे वहाँ ट्रेन पकड़ गई, जैसे आपने सोचा शांति, पता चला किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, जैसे सोचो शांति, पता चला कोई नीले ड्रम में मिल गया, तो ऐसी वाली सिचुएशन आ गई कि आपको शांत होने के पहले ही ढकेल दिया था। और आपको एक मस्त बात बताती हूँ, मस्त बात ये बताने वाली हूँ कि भाई अभी तक पिछले मतलब सालों में 2024 को सबसे तपा हुआ साल, यानी कि मोस्ट हॉटेस्ट ईयर माना गया था, लेकिन क्या आपको पता है इस साल 2026 ने बोला कि नहीं, अच्छा तुम रिकॉर्ड बनाओगे 2024, तुम हो क्या, बीते हुए साल ही ना, करंट इज ऑलवेज प्रेजेंट, और प्रेजेंट को हर कोई चाहता है, और मैं हूँ 2026, और मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ही आया हूँ, और हाँ कोई नहीं भूलेगा इस साल
2026 रिकॉर्ड बना के जाएगा कि ये 2024 से भी ज़्यादा गर्म साल होने वाला है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अपनी जो कहते हैं ना कि मतलब आसपास वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको बचाइए, साफ सफाई रखिए, आपके आसपास जीव जंतु हैं उनके भी पानी पीने का ख्याल रखिए यार। मतलब मैं तो देखती हूँ लोग सड़कें धोने में लगे रहते हैं, ये नहीं सोचते कि घर के पास एक ड्रम रख के उसमें पानी भर के रख दें। गाय भैंस कुत्ती कुत्ता बिल्ली जितने भी तरह के, मतलब कुत्ते और बिल्ली का मैंने कॉमन बना दिया, क्या बताऊँ, जितने भी जानवर आसपास है, बर्ड्स हैं, चिड़िया, मतलब चिड़िया तो बर्ड एक ही हो गया, मैं भी ना मतलब आप लोग के साथ रह रहे के क्या बताऊँ, मैं सीखती जा रही हूँ एक से एक चीज़। फिलहाल चिड़िया और बर्ड एक ही है, अब मुझे पता चल गया है। फिलहाल आपको बता दूँ कि सभी जीवों को पानी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सड़कें धो के दीवारें धो के टाइम में और पानी दोनों ही ना वेस्ट करें। हाँ ज़रूरी है तो आप बिल्कुल जो भी धुलना है धोइए, पर हाँ ये बात सोचिए कि कोई एक बूंद के बिना शायद तड़प जाएगा। प्यास क्या होती है हम सभी जानते हैं, कभी कभी इतनी प्यास लगी होती है मन करता है पानी पी ले, कहते हैं ना पानी से पेट भर गया, तो प्लीज़ साफ़ सुथरे पानी के सोर्सेस आसपास जीवों में ज़रूर बनाएं। छत पे थोड़े से तिनके के दाने, छाया में पानी की व्यवस्था कर दें जिससे उड़ते पक्षियों को थोड़ी सी नज़र मिल जाए, क्योंकि पेड़ पौधे तो हमने काट ही दिए हैं, कम से कम कुछ तो कर दें, तो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और मैं तो कहती हूँ कि प्लीज़ मत भूलें कि इंसानियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग के साथ, और बढ़ते हुए मुझे याद आई एक बात कि क्यों ना सुना जाए एक गाना बिंदास। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो अपने अपने प्रेम संबंधी समस्याओं को लेकर आरजे बीना के साथ हाजिर हो जाए, और 2026 ना होगा दोबारा तो अपना रिकॉर्ड मतलब सीखने में ज्यादा बनाएं।

देखिए कोई लड़की नशे से चढ़े या ना चढ़े, लेकिन आज चाय का नशा हम लोग को जब चढ़ता है तो कितनी भी थकान हो वो दूर हो जाती है। और ये मैंने नहीं, आप सभी ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, और ऑब्जर्वेशन में तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा तेज हैं यार। मतलब मैं आप लोग को बताऊँ, सबसे खास बात ये है कि मैं बहुत ट्रेंडिंग, मतलब पिछले कुछ सालों के, मतलब मैं जो मोस्ट ट्रेंडिंग गाने वो लेके आई हूँ, और इन सब गानों में मुझे लगता है आप लोग की जान बसती होगी। आगे भी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ टॉप टॉप टॉप फीलिंग्स वाली बातें कर ले, और कुछ ऐसी बातें जिनको आप लोगों के साथ डिस्कस करें, मुझे थोड़ा मज़ा आने वाला है। जी हाँ, आज आपको बता दूँ कुछ खास, जी हाँ, कि अगर टर्टल्स की बात करें, कछुए जो होते हैं ना, अक्सर हम लोग कछुए को लेकर हारा भी पाते हैं, कछुए की चाल चलोगे तो इस जीवन में कभी रेस नहीं जीत पाओगे। सो फिलहाल कछुआ धीरे चल के भी रेस जीत ही गया था, और कछुए की कहानी तो हम लोगों ने सुनी थी, और एक बार तो कछुआ जीता, लेकिन अगली बार फिर से कछुए और इसके बीच में, क्या कहते हैं, रेबिट के बीच में, रेबिट वाओ, तो इस खरगोश के बीच में फिर से रेस हुई, और अगेन दोनों के बीच में घमासान। इस बार इसने सोचा कि मैं कोई भी मतलब खतरनाक चीज़ नहीं करने वाला, और इसके लिए इन लोगों ने कुछ नई योजना बनाई, और क्या योजना बनाई मैं आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले कछुए से जुड़ी कुछ उसकी पर्सनल बातें भी कर ले। जो कछुआ होता है ना, वो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है, यानी कि डायनासोर जब होते थे ना तब ये होता था। भाई ने मतलब बहुत दुनिया देख रखी है, अगर कहते हैं ना कि मैंने बहुत दुनिया देख रखी है, अरे ये जो बाल है ना धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, लोगों को चराखी किए हैं, तो ये सब मुहावरे अपनी एक जगह, लेकिन अपने कछुए भाई की कहानी एक जगह। कछुआ जो है ना डायनासोर के ज़माने का है, हो सकता है आपके आसपास कोई बड़ा कछुआ दिख रहा हो तो समझ लेना भाई बहुत पुराना देवता है, उसकी पूजा कर लो। वैसे कछुए की पूजा भी की जाती है, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक ये लोग जी सकते हैं। और खास बात ये है कि इनके ऊपर ना थोड़ा धैर्य भी होता है, पेशेंस बड़ा होता है, भूख के लिए जान नहीं देते हैं, कुछ मिलेगा खाएंगे नहीं, चुपचाप पानी पी के पड़े रहेंगे। ऊपर इनकी शेल होती है बहुत, जो कि बड़ी हार्ड होती है। कछुए खाना बहुत सारे एनिमल को पसंद नहीं होता, जैसे कि ये मगरमच्छ वच्छ हो गए, इसके अलावा ये जो होता है क्या कहते हैं शेर वेर, ये सब नहीं खाते हैं कछुए। कहते हैं कछुए कुरकुरे होते हैं, उनके लिए होंगे पता नहीं, मैंने कभी खाया नहीं, वो लोग कहते हैं कि कछुए कुरकुरे होते हैं। लेकिन हाँ, इंसान जो है ना, इंसान किसी भी जानवर से कोई भी मशक्कत करा लेगा, मतलब कछुए की स्किन से पता नहीं क्या क्या बनाता है, क्या बताऊँ। एनीवे इंसान की तो बात ही ना करूँ, इंसान तो सबसे मतलब अब लो ग्रेड वाला एनिमल बनता जा रहा है। चलिए बता देती हूँ कि कछुआ जो होता है, सांप जो होता है, मगरमच्छ जो होते हैं, ये लोग सबसे कहते हैं ना सबसे पहले धरती पे आए थे, और साइंटिस्ट कहते हैं कि इनका जो अस्तित्व है 20 करोड़ साल पुराना है, और इनके लंबे जीवन के कारण ये लगभग 200 साल तक आराम से जी जाते हैं, और कुछ तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं जो 250 साल 300 साल भी जी जाते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीव है। प्राकृतिक कवच है इनके ऊपर, क्योंकि इनकी शेल जो होती है बड़ी मोटी होती है, और इनके अंदर मतलब हड्डियाँ या रीढ़ की हड्डी का हिस्सा जो होता है वो इसी का होता है, बल्कि ये सारी चीज़ें नहीं होती, सीधे वही शेल जो होती है रीढ़ की हड्डी का काम करती है, ठीक है। अब मैं आपको और खतरनाक बात बताती हूँ कि ये जो है ना, जो समुद्री कछुए जो होते हैं, ये जन्मजात दिशा सूचक होते हैं, यानी कि इन्हें जीपीएस की तरह आप यूज़ कर सकते हो, ये डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। वो अपना खाना और जो रिप्रोडक्शन है ये हज़ारों मील दूर जाके करते हैं, मतलब करंटली जहाँ रह रहे हैं वहाँ से हज़ारों मील

दूर जाएंगे, ठीक है। और यात्रा करने के बाद अंडे देते हैं, ठीक है, और समुद्र तट पे फिर वापस लौट आते हैं जहाँ वे पैदा होते हैं, जहाँ से वो आते हैं वहाँ वापस पहुँच जाते हैं, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए काफी दूर जाते हैं, जहाँ रहेंगे वहाँ रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। हो सकता है जहाँ रिप्रोडक्शन करते हो वहाँ पहचानने वाले लोग होंगे, बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते होंगे, सेफ्टी के लिए भाई सब चले जाते होंगे। वैसे साइंस नहीं बोल रही हूँ मैं, मजे के लिए बोल रही हूँ। अगली चीज जो है, इनके दांत नहीं होते भाई। हम लोग डरते हैं ना ये कछुआ काट लेगा, कछुए के पास दांत ही नहीं होते, काटा काटेगा क्या। इनके जो जबड़े होते हैं ना वो बड़े मजबूत होते हैं, ठीक है। वो तीखी हड्डी की जो प्लेट होती है उससे बने होते हैं, मतलब जिसको बीक बोलते हैं बेसिकली, उसी से बने होते हैं। और ये कुछ भी मतलब खा लेते हैं, वैसे बहुत सारी चीज, कुछ ऐसे होते हैं जो एल्गी वल्गी खाते हैं, कुछ कीड़े वीड़े खा लेते हैं, ठीक है। और इनको पानी में सांस रोकना आता है, बहुत देर तक कछुए पानी में सांस रोक के पड़े रहते हैं। अब आप इनको ये मत सोचिएगा कि इनके पास गिल्स विल्स होती है, पानी में सांस नहीं लेते हैं, पानी में सांस रोक के बैठे रहते हैं, ठीक है। और कुछ प्रजातियां तो ऐसी है 5 घंटे से ज़्यादा सांस रोक के मस्त पड़ी रहेंगी। भाई सोचो इनके पास ऑक्सीजन कितना स्टोर रहता है, सस्टेनेबल प्रजाति है, ठीक है। अब आज मैं इसके बारे में बता क्यों रही हूँ क्योंकि ये आज कछुआ दिवस है, वर्ल्ड कछुआ दिवस है, तो बेचारे को याद करना तो बनता ही है यार। थोड़ी चीज़ें तो कछुए के बारे में पता ही होनी चाहिए हमें, और इंटरेस्टिंग फैक्ट की जो बात होती है तब तो हम लोग मज़े की बात छोड़ने से रहे। और हमारे साथ गुड इवनिंग करते हुए हमारे साथ बहुत सारे लिसनर जुड़ रहे हैं, दीपांशी हैं, सविता हैं, सविता जी हमारी गोरखपुर वाली हैं, क्या बात है सविता जी, कैसी हैं आप। और उम्मीद करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगी और गर्मी को झेल रही होंगी, झेलना क्या, इन्जॉय करिए, सर्दी गर्मी सारे मौसम एक जैसे नहीं होते। पर हाँ, इस बार 2026 रिकॉर्ड तोड़ने वाला है 2024 का, मतलब पिछले 100 सालों में 2024 सबसे गर्म साल रहा और उस 2024 का रिकॉर्ड सिर्फ एक साल बाद टूट रहा है। इसका मतलब इंसानी क्रियाएं रुक नहीं रही हैं, इंसान बड़ी जोरों शोरों से मेहनत कर रहा है पृथ्वी को ख़त्म करने की। चलिए आप लोगों को मैं थोड़े अमेजिंग फैक्ट्स बता देती हूँ कि जो समुद्री कछुए होते हैं वो बड़े प्राचीन होते हैं, मतलब बहुत साल तक जीते हैं, ठीक है। इनको मतलब कुछ आपको ऐसी प्रजातियां मिल जाएंगी ना समुद्री कछुओं की जो 15 करोड़ वर्षों से मौजूद हैं समुद्र के अंदर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 6 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर हुआ करते थे, तो भाई लोगों ने बहुत सारे लोगों को देख रखा है। इनके जो लेदर बैक होती है वो दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली सरीसृप है, ठीक है। यानी कि जमीन पर भारी भरकम और सुस्त दिखने वाले ये जो कछुए हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी इन्हीं की तरह धीमे लगते हैं पर होते नहीं हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगी कि समुद्र में रहने वाले जो कछुए होते हैं उन्हें लेदर बैक कछुए बोलते हैं, इनके शरीर की बनावट उन्हें पानी में आसानी से फिसलने देती है और ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। मतलब आपको लग रहा था ना कछुआ हरदम धीरे ही चलता है, पानी वाले जो कछुए होते हैं ना पानी बहुत सही चलते हैं, ठीक है। तो ये तो कछुए की बात हो गई, और कछुए की बात करते करते मैं आपको बता दूं कछुए की चाल से हम लोग नहीं चलने वाले हैं, डॉक्टर लव आएंगे तो आपके दिल की बात भी हो जाएगी और डॉक्टर लव के साथ मौजूदगी आपकी तभी हो पाएगी जब आपके सवाल आएंगे, तो सवाल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे, तब तक के लिए एंजॉय करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, एंड लेट्स हैव नेक्स्ट सॉन्ग।

0: आंख लड़ाने से काम अगर चल जाता तो फाइनली आपको डॉक्टर लव की क्यों जरूरत पड़ती। सो मेरे प्यारे लिसनर्स, फटाफट से आप लोग एक्टिवेट हो जाइए अपनी एनर्जी के साथ और चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे डॉक्टर लव से। लेकिन उनसे पहले उनके बारे में जान तो ले, क्या ज़रूरत है उनकी आखिर, तो उनकी ज़रूरत को समझते हुए चलिए हम चलते हैं डॉक्टर लव की उस बात को जानने के लिए, उन लोगों के दर्द को जानने के लिए जो कहते क्या हैं डॉक्टर लव के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं ना, डॉक्टर लव से तुम्हें क्यों मिलना है, तो जानते हैं क्यों मिलना है।
1: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास?
2: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।

0: जिसके आने से शनिवार गुलजार हो जाता है, जिसके आने से वीकेंड एंड होते होते शुरू हो जाता है, जिसके आने का इंतज़ार कुछ मेरे मजनू लिसनर्स पूरे हफ्ते करते हैं, जिसके आने से हर सवाल का जवाब बन जाता है, वो है माय डॉक्टर लव। स्वागत है डॉक्टर लव, कैसे हैं आप?
1: जी एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
0: क्या बात है। पहले तो आपका हालचाल थोड़ा और जान लेती हूँ कि भाई घर परिवार सब मस्त?
1: घर परिवार सब एकदम।
0: पहला और सबसे वायरल सवाल जो है हमारे शाम का आज,
1: आते
0: ही पहले आपके ऊपर दाग देती हूँ। दागने वाला सीन ही है डॉक्टर लोग, क्या बताऊँ, लोगों के जज्बात नहीं समझ रहे, यहाँ गर्मी ने जीना हराम करके रखा है, क्या बताऊं सबका, मतलब क्या बताऊं, बुरा हाल हो रखा है। तो ऐसे में आप ही एक, मतलब कहते हैं ना कि हारे का सहारा बन चुके हैं लोग, ना चाहते हुए भी आपसे ही गुहार लगाना चाहते हैं सवाल की। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि ये जो गूगल दिखाता है रोज की, टुडेज टेम्परेचर विल बी 42 डिग्री सेल्सियस बट फीलिंग लाइक 46 डिग्री सेल्सियस, ये बात, ये तो एक बात हो गई। तो क्या आने वाले कुछ दिनों में ऐसा भी देखने को मिल सकता है, टुडेज टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, फीलिंग लाइक 60 डिग्री सेल्सियस?
1: ये एकदम संभव है, एकदम जबरदस्त संभव है। मतलब वो बाहर की गर्मी और इंसान के भीतर की गर्मी दोनों गर्मियों को मिला देता है।
0: अरे सर जी, मतलब इस बार ये जो साल है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। कहा जा रहा था पिछले 100 सालों में 2024 जो था मोस्ट गर्म साल रहा, लेकिन अभी 2026 ने तोड़ दिया रिकॉर्ड।
1: मतलब 2026 ने 2024 का रिकॉर्ड तोड़ा
0: और एक साल के भीतर तोड़ा,
1: एक साल के भीतर।
0: और अगले साल उम्मीद लग रही है कि 2023 है,
1: हाँ। एकदम जान लीजिए कि हमको ठंडक बहुत लग रही है इस समय।
0: आपका मड हाउस है क्या?
1: मड हाउस मतलब
0: मिट्टी का घर है?
1: नहीं, मिट्टी का घर तो नहीं है, घर तो
0: बर्फ की सिल्ली से बनवाया है।
1: बर्फ की सिल्ली से नहीं बनवाया है, हमने जुगाड़ लगा के घर बनवाया है।
0: तो वो जुगाड़ कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए। गर्मी से उबल रहे हैं, कुछ लोग जल रहे हैं, मतलब सबके अपने अलग अलग विचारधारा है। कोई कह रहा है कि मतलब मैम जल गए हैं, शरीर काला पड़ गया है। कोई कह रहा है कि मैम उबल रहे हैं। मतलब कुल मिला के मुझे अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इस गर्मी में क्या सबके साथ अलग अलग चीजें हो रही है। कोई जल रहा है, कोई उबल रहा है, कोई सिक रहा है, कोई गर्म हो रहा है, कोई कह रहा है कि हमारा शरीर एकदम जैसे लग रहा है बर गया है। मतलब सबके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, भब्भा रहा है, कोई कह रहा है पसीना बहुत आ रहा है, कपड़ा भीग जा रहा है। तो क्या मतलब क्या समझा जाए?
1: ये समझा जाए कि उनको ये मानना है कि गर्मी है ही नहीं।
0: क्या गर्मी के अलग अलग प्रकार हैं?
1: और क्या, गर्मी जैसे आप मानते हैं कि गर्मी ज्यादा है तो आपको गर्मी लगती है।
0: लेकिन इस बीच एक खबर सामने आई।
1: क्या खबर सामने आई?
0: जिनको प्रेम का रोग लगा है, हाँ। उन पर गर्मी का कोई असर नहीं, मतलब उनके अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडी लग रही चल रही है,
1: हाँ।
0: जिसकी वजह से उन्हें गर्मी नहीं लग रही है।
1: तो जैसे मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए और रोते हुए सारा गर्मी निकाल दिए।
0: मतलब हमारे एक पड़ोस में जनाब रहते हैं, उनको मतलब लव नाम की बीमारी हुई है। अरे भाई 12 बजे हुआ घाम में लड़का,
1: हाँ, टोपी लगाए,
0: बिना टोपी लगाए जलती छत पे बिना चप्पल के,
1: हाँ।
0: और मुद्रा बना के बैठा और फोन पे बात कर रहा है।
1: अच्छा वो लाइन भी हमको याद आती है किसी गुलाम अली साहब की, जलती धूप में तेरा छत पे आना याद है। क्या तो अब तो गजल की,
0: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
1: तो उसमें एक लाइन है वो जलते जलते तेरा नंगे पाँव,
0: हाँ हाँ, तेरा छत पे
1: नंगे पाँव आना याद।
0: अरे नंगे पाँव आए ना नंगे पाँव आए, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे ये पता है कि मेरे लिसनर्स को गर्मी लग रही है।
1: आपके लिसनर्स को गर्मी नहीं लग रही है।
0: देखिए अनिल जी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, आपके आपसे एक सवाल पूछना था, जो लवेरिया होता है क्या उनको गर्मी लगती है? अरे उसी बात की तो मतलब क्या अनिल जी, मतलब बिल्कुल आपने सही समय सही सवाल राइज किया है। उत्तर चल रहा था और सवाल आ गया,
1: धागा है, धागा है।
0: मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर पहले आया और सवाल बाद में।
1: हाँ, उत्तर पहले।
0: क्या बात है, क्या बात है। दीपांशी गुड इवनिंग। दीपांशी क्या आपको भी कोई मलाल है या सिर्फ और सिर्फ चाय का
1: ख्याल है?
0: चाय आ चुकी 3 कप, एक दीपांशी की, एक मेरी और एक आपकी, और बाकी श्रोताओं की कुछ समझ नहीं आ रहा है।
1: कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो फिलहाल जो है वो गर्मी से परेशान है। अच्छा, अगर मोहब्बत हो जाए तो गर्मी नहीं लगती, एकदम पक्की बात।
0: बात तो सही है।
1: हाँ। तो लेकिन आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो मोहब्बत करना शुरू कीजिए।
0: तो मतलब
1: हाँ, अगर मतलब मोहब्बत हो गई,
0: मोहब्बत की नाव में बैठ के चले।
1: वो गाना है नहीं वो,
0: हाँ,
1: चांद सी महबूबा
0: प्रेम नहीं, वो भी आप प्रेम की नई नगरिया में तुम भी सावरिया चलो,
1: सावरिया चलो,
0: हम तो चले संग तुम भी, अरे जो भी है,
1: जो भी है,
0: जिसको भी चलना है चल सकता है। फिलहाल ये सवालात का जो कहर है वो बढ़ता रहेगा आप पे। अगला जो सवाल है आपके लिए कुछ इस प्रकार है, जैसे हमारे श्रोता ने, मैंने सवाल की जिक्र पहले भी किया था कि हमारे श्रोता एक हैं जो कि देहरादून से हमें सुनते हैं,
1: देहरादून से सुनते
0: हैं। उनका नाम है अखिल।
1: अखिल
0: का कहना ये है, मतलब वो कभी कभी आते हैं, वो ज्यादातर तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके सवाल करते हैं।
1: अच्छा, ये बात है।
0: अखिल कहते हैं कि मैम एक सवाल है आपसे कि जैसे UPSC क्रैक करने का स्ट्रेटजी होता है, नीट क्रैक करने का स्ट्रेटजी होता है, प्यार में सक्सेसफुल होने की कोई स्ट्रेटजी हो सकती है?
1: बिल्कुल हो सकती है। मतलब
0: सक्सेस रेट कैसे बढ़े?
1: सक्सेस रेट ऐसे बढ़े कि पहले हमारा माध्यम लिया जाए
0: उनके कॉलेज में। जैसे देहरादून में थोड़ा बहुत मतलब मौसम ठीक ठाक रहता है, वहाँ के कॉलेजेस में मतलब गजब की सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी होती
1: हैं। डॉन बॉस्को बहुत बढ़िया कॉलेज है, हम वहाँ पर लव का लेक्चर देने गए थे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो वहाँ एक कॉलेज में ये जनाब मतलब अभी इनकी पोस्टिंग हुई है, मतलब छोटे बड़े पद पे काम करते हैं।
1: हाँ।
0: पद क्या है उन्होंने जिक्र नहीं किया हमसे, पर कार्यरत है वे।
1: कार्यरत
0: वही कॉलेज की एक कक्षा की लड़की है जो इनसे इन्हीं के ही उम्र की होगी, लेकिन मैंने कहा कि आप तो नौकरी वगैरह पा गए। कह रहे मैडम जल्दी नौकरी मिल गई।
1: ओह, जल्दी, ये तो
0: फिलहाल इनको मोहब्बत हो गई है उनसे।
1: मोहब्बत हो गई है,
0: लेकिन आंखें तो चार होती है।
1: हाँ।
0: वो भी इनको देखती है, ये भी इनको देखते, वो भी मुस्कुराती, ये भी मुस्कुराते, पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही। सो ही वांट टू नो द स्ट्रेटजी हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम।
1: देखिए, मुझे ये लगता है कि उनको एक चीज पहले कंफर्म करनी चाहिए। दो चीजें होती हैं, लड़की आपको मुस्कुरा कर देख रही है या लड़की आपको देख कर मुस्कुरा रही है।
0: ये क्या बात हुई, बात तो एक ही है, मुस्कुरा के देखे या देख के मुस्कुराए,
1: ये इसी में तो कंफ्यूजन।
0: वो क्या होता है, कौन सा होता है बिस्किट, कौन सा बिस्किट होता है? अमूल बिस्किट नहीं, हॉर्लिक्स बिस्किट, खा के पियो या पी के खाओ। ऐसे आता नहीं था, एक तो बिस्किट ऐड आती थी, मम्मी अमूल बिस्किट है, नहीं अमूल नहीं यार, ब्रिटानिया, खा के पियो और पी के खाओ, जो भी चलेगा सब।
1: नहीं, अब आप इसको समझिए, मतलब अगर आप ये कह रही हैं कि दोनों चीज एक ही है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल एक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो डॉक्टर के बगल बैठी
1: हूँ। हाँ, तो
0: डॉक्टर बताएगा कि क्या
1: तो
0: समस्या हो सकती है।
1: तो प्रिस्क्रिप्शन ये है कि भाई कि अगर लड़की आपको मुस्कुरा कर देख रही है, मतलब ही सी इज इन लव विथ यू, और अगर देख के मुस्कुरा रही है तो इसका मतलब यू आर लुकिंग लाइक ए कार्टून फॉर हर। देख के मुस्कुरा रही है मतलब आप उसको कार्टून लग रहे हैं। तो इसे पहले कन्फ्यूजन दूर कीजिए कि उसने मुस्कुरा कर देखा है कि देख कर मुस्कुराई है।
0: हाँ, ये बात तो। इनके लिए क्यों ना एक गाना सुन लिया जाए।
1: गाना बिल्कुल सुन।
0: गाना सुनने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी मेरे सभी लिसनर्स के लिए, और ये सिचुएशन सबके साथ कभी ना कभी आई होगी। कुछ लोग दिल में ऐसे बस जाते हैं, वाह कौन करे,
1: वाह
0: माना की डॉक्टर है, आपको सीखना चाहिए। मतलब आप किसी मुशायरे में बैठे होंगे तो आप अच्छा अच्छा इसके बाद क्या प्रिस्क्रिप्शन इसमें दें,
1: तो
0: आप दवा लिखने लगेंगे। नहीं, शायरी में आपका
1: तो शायरी हमको आती नहीं है तो हम,
0: नहीं नहीं, तो आप डॉक्टर लव के हैं तो आपको शायरी सीखनी पड़ेगी, आपकी किताब खरीद के पढ़ डालिए।
1: वाह वाह,
0: कहते हैं कि कुछ लोग दिल में ऐसे बस जाते हैं,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: जैसे
1: वाह वाह वाह वाह,
0: बार बार बोलेंगे तो कैसे कंप्लीट होगी शायरी?
1: अच्छा, वही तो वाह,
0: बस आप शुरू में बोलेगा और अंत में,
1: अंत में तो अंत होगा तो बता दिएगा कि हाँ अंत हो गया। तो
0: कुछ लोग दिल में ऐसे बस जाते हैं
1: वाह,
0: जैसे मोबाइल में 5,000 फोटो,
1: वाह वाह,
0: डिलीट करना चाहो तो भी,
1: तो भी वाह। हाँ।
0: आर यू श्योर पूछते रहते हैं।
1: पूछते रहते हैं, वाह वाह, क्या पूछते रहते हैं?
0: कि डिलीट करनी है कि नहीं करनी है, मतलब आपके दिल में कुछ लोग ऐसे बस जाते हैं जिनको आप निकालना चाहो तब भी दिमाग में एक बार पूछता है कि निकालना है कि नहीं।
1: ये शेर था कि शेरनी थी, हम समझ,
0: ये दोनों मिला के था।
1: अच्छा, मतलब ये शेर और शेरनी का कॉम्बो पैक।
0: यस यस यस।
1: अच्छा भाई, जो अभी हमने एक पिक्चर देखी जल्दी में, शराबी।
0: अच्छा शराबी,
1: अमिताभ बच्चन ने बढ़िया एक्टिंग की, तो आपकी वो शायरी वगैरह हमारे समझ में तो बहुत ज्यादा आती नहीं है।
0: अच्छा,
1: तो उसमें अमिताभ बच्चन बैठे
0: तो
1: रहते हैं।
0: पहले अखिल के लिए गाना सुन लेते हैं।
1: अखिल के लिए गाना सुन लेते हैं, वो हम अपनी तजुर्बा आपको बयां कर दें।
0: हाँ, बताइए।
1: तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं, वाह वाह वाह वाह, कहीं अम्मा शायरी तो पूरी होने दो यार, बीच में ही वाह वाह, तुम गाड़ी लिए चले आ रहे हो। उन्होंने कहा जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है?
0: नहीं।
1: कहा नहीं, जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता है।
0: ये शायरी थी।
1: ये शायरी के पिताजी थे।
0: हाँ, ऐसे मेरी शायरी की बुआ जी थी।
1: हाँ,
0: तो चलिए सुन लेते हैं गाना हमारे प्यारे अखिल के लिए, जो हमें सुनते हैं देहरादून से।
1: देहरादून से।

0: तो डॉक्टर लव, सब कहते हैं कि शाम जब गुलाबी होती है तो आगे मौसम बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने ऐसा बचपन में पढ़ा था।
1: अरे हम तो अभी शाम को निकले, मुंह से बोले नहीं कि बर्फ का ओला गिरने लगा।
0: हाँ,
1: इतनी ठंडक है, मतलब जबरदस्त ठंडक है।
0: सुना तो हमने भी है, लेकिन क्या करे, होता है ऐसा अक्सर नहीं है।
1: मेरे साथ होता है, हम अभी बोले तो कहिए कि वो बर्फ गिरेगी।
0: हमारे एक श्रोता है, सुना है कि वो सबके लिए बड़ी न्यूज छापते हैं।
1: हाँ?
0: चलिए नाम नहीं उनका बताएंगे, लेकिन सुना है कि न्यूज छापने में बड़े तेज हैं।
1: न्यूज छापने में बहुत तेज हैं।
0: इनफैक्ट किसी का मैटर रहता है तो उसको बहुत तेज छाप देते हैं।
1: अच्छा, अगर मैटर रहता है तो।
0: मैटर मतलब कि हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने बताया कि नंबर भी उन्होंने नहीं दिया इनका, कह रहे थे कि ये लड़का जो है मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाला है।
1: हाँ?
0: कैसे कहे कि मैं मैडम जी, हम मतलब ऐसे बाजार गए थे और हमको रास्ते में मिल गई हमारी मतलब पुरानी मतलब बुआ के घर हम जाया करते थे और उन्हीं की पड़ोसन थी, वो मिल गई, उसको हम अपनी बाइक पर बिठा कर दूसरे जगह छोड़ दिए और वो लड़का फ़ोटो खींच के हमारी वाइफ को भेज दिया और बोला कि कहिए तो भाभी जी न्यूज में निकाल दें।
1: हाँ?
0: तो हाथ पैर जोड़े पैसा वैसा दिए तो कहिए न्यूज नहीं निकाला है।
1: हाँ?
0: न्यूज निकालने बड़े तेज हैं, मतलब फोटो ही खींच लेते हैं। बेचारा रोज बेलन खा रहा है हमारा लिसनर एक।
1: अरे क्या बात है, तो अन्याय हो रहा है।
0: तो चलें बतियाया जाए इनसे,
1: बतियाया जाए इनसे कि क्या
0: देखें
1: है?
0: कैसे ये न्यूज छापते हैं।
1: हाँ, कैसे न्यूज छापते हैं,
0: चलिए
1: बात करते हैं।
0: तो लिसनर्स, हमारे एक कॉलर के दर्द को दूर करेंगे उसकी जड़ पे जाके, मतलब समस्या की जड़ पे जाके। कैसे उन्होंने उनकी जिंदगी में जहर खोला है हम जानते हैं इनसे।

0: हेलो,
1: हेलो,
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।
0: सर, रिपोर्टर सर बोल रहे हैं आप?
2: हाँ, जो छोटे बोल रहे हैं, बताइए।
0: हम पूर्वी बोल रहे हैं।
2: पूर्वी?
0: दरअसल हमको समस्या थी, लेकिन समस्या हम नहीं बताएंगे,
2: हाँ,
0: हमारे बड़े भैया हैं वो बताएंगे। हम
2: हाँ तो
0: सुने कि
2: समस्या है।
0: आप किसी भी इंसान को अगर मतलब ऐसी समस्या होती है, लोग परेशान करते हैं, तो आप प्रेस नोट वगैरह निकाल देते हैं, लोगों की समस्या जल्दी दूर हो जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि आप समस्या दूर करने में हमारी मदद करेंगे।
2: नमस्ते
3: भैया नमस्ते। अरे,
2: नमस्ते।
3: गरीब आदमी है साहब, बहुत परेशान है।
2: आप परेशान हैं? किस चीज से परेशान हो गए? पत्नी?
3: पत्नी से परेशान हो गए। हाँ,
2: अरे सभी लोग पत्नी से खुश रहते हैं, पत्नी से परेशान हैं?
0: अरे हमारे भाई को
3: हाँ,
0: उनकी पत्नी जीना हराम करके रखी है। हम लोग आए हैं, छपरे में बात कर रहे हैं एक किनारे।
3: छपरे में हम भाई बहन आए हैं भैया, और गरीब आदमी हैं, बस कोनों में। हम चाहते हैं कि आप उनको समझा दीजिए। ये
2: किसको हम समझा
3: जैसे
2: दें?
3: हम घर
2: तकलीफ
3: पे
2: होती है आपको? अच्छा,
3: नहीं, हमको हम तो पीड़ित हैं।
2: आप पीड़ित हैं।
3: हाँ, जैसे हम घर पे पहुँचते हैं, जेब में
2: हाँ,
3: जितना रुपया होता है सब रख लेती हैं अपने पास भैया,
2: तो
3: और उसके बाद कहती हैं गाड़ी से मत जाओ, पैदल जाओ, पैसा कुल हमको दे दो, और खाना भी नहीं देती हैं। रात में जाते हैं तब, हाँ, और मतलब ऊपर से कहते हैं कि अगर कुछ कहोगे तो दहेज उत्पीड़न का जो है वो मुकदमा चलवा देंगे यार तुम्हारे ऊपर।
2: कुल मिला के आपकी पत्नी आपको परेशान करती है?
3: अरे, प्रेशानी प्रताड़ित
0: अरे
3: करती,
0: क्या
3: मतलब
0: बताएं,
3: जान
0: मीडिया
3: लो
0: वाले भैया। अरे
3: आप मिल गए, तुम कोनो मेर कह
0: अरे
3: पाए
0: भैया, रोना रोना रोना।
3: किसी तरह से बैठा
0: अरे
3: आपसे कर।
0: मीडिया वाले
3: हाँ,
0: भैया, ही न्यूज में चल रहा है दीपिका जी का और सबका
2: तो सुनिए,
0: केस।
2: तो आप क्या, हम क्या कर सकते हैं आपके, बताइए।
3: नहीं, अब
2: अरे
3: आप ही कुछ कीजिए, आप
0: पहली
3: बहुत
0: बात तो
3: बहुत
0: आप
3: वाले।
0: चश्मदीद बन जाइए, कहीं वो कुछ कर वर ली तो बेचारा हमारा भाई घिस जाएगा।
3: हाँ, लोग
2: तो
3: कहती
2: एक
3: हैं।
2: काम करिए, सुनिए,
3: जी जी
2: अगर
3: जी
2: आप अपनी पत्नी से परेशान है तो पत्नी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए हमारे।
3: पत्नी को आपके पास ट्रांसफर कर दें। अरे
2: ज्यादा
3: वो,
2: परेशान है तो
0: अरे
2: उधर
0: कोई
2: छोड़ दीजिए,
0: पैसा है
2: कोई
0: जो
2: दिक्कत नहीं है।
0: ट्रांसफर कर
3: अरे
0: देंगे।
3: भैया, पैसे समझिए, आप आकर ले जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
0: पैसा है जो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें?
3: हम आपको पता बताए दे रहे हैं भैया।
0: ये मीडिया वाले हैं या कुछ चोर हो रहे हैं?
3: ये जो है, आप अपनी गाड़ी लेकर आइए, उनको बिठा ले जाइए।
2: अब वो अगर किस पे आना चाहेंगे, गाड़ी पे कि क्या नाम उसको, ठेले पे? अरे
3: उनको ठेले पे ले जाइए, और उनको ये दिखाइए कि इन्होंने अपने पति को प्रताड़ित किया, उनका सारा पैसा ले लिया,
0: ऐसे ले जाएंगे तो ये खुद ही मारे जाएंगे।
2: सुनिए,
3: बाइक की
2: अच्छा ये
3: चाबी ले।
2: बताइए, आपकी पत्नी के मूंछे तो नहीं है? अच्छा
3: पत्नी की मूछे नहीं है? नहीं, मूछ तो नहीं है।
2: ठीक है, मूंछे नहीं है तो ठीक है। अगर मूंछ वाली पत्नी सुनाई बहुत ज्यादा परेशान करती है।
3: मूछ नहीं है भैया, कहा बताएं, हम कोनो में, हमको पता नहीं था। जब शादी किए तब ससुर ने कहा कि ध्यान रखना, और हमने जब दोबारा जब उसको जान पाए तो उन्होंने कहा, हमने तो कहा था ध्यान रखना अपना, तो मतलब
2: अच्छा
3: उन्होंने
2: अच्छा
3: कहा था कि हम अपना ध्यान रखें, क्योंकि उनको अपनी बेटी पर तो
2: हाँ,
3: भरोसा था ही।
2: उन्हें अपनी बेटी की सारी पता थी ना कि वो परेशान करेगी ज्यादा कि
3: परेशान,
2: आपके घर पे।
3: हाँ, तो हम समझ नहीं पाए भैया, सीधे साधे आदमी, और जान लो कि हम बच गए, और अगर हम कुछ कहते हैं तो कहते हैं हम जाकर रिपोर्ट कर देंगे। इस समय जो है वो महिला का सशक्तिकरण का बहनी कौन कौन,
0: हाँ, महिला सशक्तिकरण चल
3: हाँ
0: रहा है और आजकल सरकार पूरा महिला के
3: हाँ
0: हित में काम कर रही है।
3: महिला के हित में काम कर रहे हैं हम भैया, बहुत परेशान हो चुके हैं, आप कोनो में
2: ठीक
3: मदद।
2: है, हम आपका निवारण कर दे रहे हैं, पर अपना वो भेज दीजिए, क्या नाम है, पूरा डॉक्यूमेंट ठीक है, और पत्नी के साथ ही अपने फोटो भेज दीजिए, ठीक है?
0: शादी का फोटो चाहिए तो बताइए।
3: हाँ, हम एल्बम सीडी सब भेज देंगे आपको।
2: हाँ, जैसे जैसे आपकी शादी हुई थी,
3: हाँ
0: दवा अभी 5-6 हुए हैं,
2: हाँ उसका एल्बम से भेज दीजिए।
3: हाँ, आप उनको किसी तरीके ले जाइए।
2: अरे हम, आप परेशान है तो सोच रहे हैं, अभी परेशान हो जाए क्या?
3: नहीं, आप जैसे, आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, आप मीडिया वाले लोग हैं तो कुछ सहायता कर दीजिए गरीब आदमी की।
2: सहायता कर देंगे, लेकिन आप आपकी पत्नी को हम थोड़ी ना ला सकते हैं।
3: नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, आप उसको समझाइए, मतलब अपने घर ले जाइए और अपनी
2: छाप देंगे अपने रिपोर्टर में, रिपोर्ट में कि हाँ ये पत्नी इनको परेशान करती है, ठीक है।
3: अरे अब कहीं आपने छाप दिया, उसने कहीं न्यूज पढ़ लिया तो हमारा जीना हराम कर देगी।
2: अरे तो ये कर देंगे ना कि जिसको मिले वो ले जाए।
0: पिछले एक महीने से बेचारे खाना नहीं खाए हैं, ये बालाजी के भंडारा से खाना ले आके स्टोर कर लेते हैं, वही खाते हैं।
3: अभी जान लीजिए ये हाल है।
2: चलिए ठीक है, अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट भेजिए, अपना नंबर दे रहे हैं।
0: और फीस हुई सर जी, फीस हुई।
3: अरे हम पैसा नहीं है हमारे पास, फीस कैसे।
0: अरे तो एक बोरिया धान उठवा दियो भैया के।
3: हाँ हाँ भैया, किसी तरीके
0: हम आपको धान कुटवा के एक बोरी दे देंगे।
3: हम आप न्याय दिलवाइए, आपसे बड़ी उम्मीद है, सुना है आप पुरुषों का हित करते हैं।
2: ठीक है, अपना सब भेजिए डॉक्यूमेंट। अच्छा,
3: तो हम सब भेजे देते हैं भैया, और पत्नी को उठवा लीजिए।
2: ठीक है ठीक है, आप उठवा नहीं रहेंगे अगर ये पत्नी बताइए, आपकी पत्नी को उठवाने के लिए क्रेन तो नहीं लाना पड़ेगा।
3: क्रेन?
2: हाँ।
3: अरे भैया जान लो, चार भैंस के बराबर अकेले ही।
2: हाँ। अच्छा तो ठीक है, तो कोई बताइए, कोई
3: बुलडोजर बुलडोजर लेकर आइए।
0: अरे तो भैया का नाम तो लिख लीजिए, राम। हाँ। खिलावन
3: राम,
0: और पत्नी का नाम है चटोरी देवी।
3: चटोरी देवी, चटोरी देवी,
0: कटोरी नहीं चटोरी,
3: चटोरी देवी, चटोरी देवी।
2: अच्छा तो ठीक है, सोच रहे कि जो म्युनिसिपैलिटी वाले होते हैं,
3: हाँ हाँ हाँ, उन्हें भेज दीजिए भैया, उनके बस की बात नहीं है, ये सेना आपको बुलानी पड़ेगी।
0: किरेन टिरेन म्युनिसिपैलिटी जो मिले वो सब भेज दीजिए, आपका बड़ा आभार।
2: चलिए ठीक है,
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। अच्छा भैया नमस्ते। बहुत बहुत परेशानी।
0: तो डॉक्टर लव
3: जी,
0: मीडिया वाले मतलब मदद करते हैं।
3: मदद क्यों नहीं करते हैं, देखिए तुरंत उन्होंने कहा,
0: मतलब खुल, मतलब बिना पैसे की मदद कर,
3: बिना पैसे के उन्होंने पैसा लेने से मना कर,
0: मतलब
3: दिया।
0: मीडिया भी हमारा जो है विश्वसनीय है।
3: हाँ, चौथा स्तंभ है भाई।
0: अरे बिल्कुल हिला नहीं, मतलब मजबूती से बना है, मोरंग गिट्टी बराबर पड़ा है स्तंभ में, बाकी सारे तो गहरा पानी मिट्टी से लग रहा बने हैं, लेकिन ये वाला स्तंभ जो है
3: मजबूती से,
0: अंबुजा सीमेंट से बना है।
3: हाँ, इस सीमेंट में जान है।
0: हाँ,
3: और जान है तो जहान है,
0: बिल्कुल जो जिंदा है वो समझ लीजिए सक्रिय है,
3: सक्रिय है।
0: तो हमारे अनिल जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब जी जितने भी प्रेम के गीत हैं सब चांद से मगर सूरज से क्यों नहीं, काहे सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमाए है, प्रेम गीत ही तो है, हम सुने हैं इसको।
3: अच्छा अब नहीं, ये गीत नहीं है, ये भूकंप का लक्षण है।
0: हाँ।
3: अब खुद ही सोचिए, मैं चुप रहा जमी हिलने लगी सजना, अब
0: ये प्रेम गीत नहीं है।
3: हाँ, ये भूकंप बता रहा है।
0: हाँ,
3: कई सारे ऐसे गीत है जो रोग बताते हैं।
0: हाँ।
3: जैसे जुदा हो के भी तुम मुझ में कहीं बाकी है, ये बताइए इसमें कौन सा रोग है।
0: लूज मोशन।
3: हाँ, होता है ना।
0: हाँ, और गर्मी में तो बहुत प्रचंड होता है।
3: हाँ।
0: इसी के साथ चलिए, इजाजत नहीं लेंगे अभी आपसे, और एक गाना सुनाते हैं, और आगे अगर आपको भी लग रहा है कि आपके साथ कोई समस्या परेशानी बहुत बड़ी विकट वाली है, तो आप कृपया कॉल करके अपने डॉक्टर लव से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान तुरंत के तुरंत पा सकते हैं।

0: तो चलिए इस गीत को थोड़ी देर बाद सुनते हैं, हमारे कॉलर से हम लोग थोड़ी बात करते हैं। हेलो।
1: हाँ मैम नमस्ते।
0: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, शुभ संध्या, क्या नाम है आपका?
1: संतोष कुमार।
0: संतोष जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ये ग्राम पोस्ट गिलवली जनपद गोंडा से।
0: समस्या बताइए। तो डॉक्टर लव से कोई समस्या जानना चाहेंगे जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा हो? संतोष जी समस्या बताने से पहले ही फोन डिस्कनेक्ट करके चले गए। मुझे लग रहा है समस्या थोड़ी गंभीर थी। फिलहाल संतोष जी के कॉल का अग्रिम इंतजार रहेगा और हम लोग सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग जो कि अभी रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है कृष्ण अवतारम, जिसमें आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी सोनू निगम की, नीति मोहन की, एंड क्या दोनों की आवाज़ का एक नया मिक्सचर सुनने को मिला है। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग विद डॉक्टर लव।

0: गाड़ी पता नहीं कोई नौसिखिया चला रहा था, इतनी चौड़ी सड़क पर इतनी सी मोटरसाइकिल फिर भी उसी में भिड़ाने जा रहा। ये अंधे नौसिखियों को क्यों कोई गाड़ी चलाने देता है, मेरी समझ में नहीं आता।
1: सॉरी, ठंडा पानी।

0: तो ऐसे ही देख रही थी।
1: कैसे देख रहे थे? वो मुझे भी दिख रहा था।
2: कैसे देख रहा था?
3: वैसे ही जैसे देखा जाता है तब जब हो जाता है।
0: क्या हो जाता है
1: यार, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम जो ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, मैं बस उसमें थोड़ा सा दम भर।
0: मैं कुछ नहीं पका रही हूँ।

0: सवार लूं।
1: सवारने के बाद में पहले सवाल को सवारते हैं और देखते हैं किसका सवाल है। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, कैसी हैं निशा
2: जी? पहचान गई।
1: बिल्कुल, क्यों नहीं पहचानूंगी। तो आपका डॉक्टर लव से क्या सवाल है?
2: मेरे एक है सवाल कि मेरा

0: बाल बहुत झड़ता है, कोई उपाय बताएं कुछ?
1: ये तो आपका नहीं, ये मुझे लगता है कि भारतीय में कोई ऐसा लड़का या लड़की नहीं होगा आजकल जिसके बाल झड़ ना रहे हो। ये सर्व व्यापक समस्या है गुरुदेव
2: जी,
1: इसका निदान बताएं।
2: निदान? गाय का गोबर 5 किलो।
1: वाह।
2: अंडे की जल्दी
1: 100 किलो।
2: नहीं
0: सर, ऐसा चीज बताइए कि घर में वो सामान हो।
2: घर में नहीं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। घर
1: तो
2: में
1: गोबर तो आसानी से गोंडा में और गोबर ना मिले।
2: 5 अंडा
1: हमारे यहाँ गौशाला है।
2: 2 किलो टाटा शुद्ध नमक और 1/2 लीटर सरसों का तेल।
1: वाह,
2: इन सब
0: इतना ज्यादा ज्यादा बता दिए।
2: अरे सुनिए तो, ये पूरे महीने भर का है। इन सबको इकट्ठे मिलाना है, बाल में लगाना है, उसके बाद अपने पैर को ऊपर कर लेना है, उससे नीचे रहना है। कम से कम 1/2 घंटा रोज करें, लगाएं और अपने आप को इसे पंखा में होता नहीं रस्सी बांध लेने वाला, तो पैर अपना दोनों ऊपर कर लें और आप जो है हाँ
0: तो झरना बंद हो जाएगा,
2: झरना एकदम से बंद हो जाएगा।
0: ये बहुत बाल झड़ता है, मेरा बहुत टूटता है।
2: आप करके करके देखिए, एकदम से भगवान ने चाहा तो न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा। हाँ
0: हो जाएगा,
2: बिल्कुल हो जाएगा 100%। लेकिन उल्टा करने पड़ेगा जी। हाँ
1: क्या बात, क्या बात। और मुझे लगता है निशा की समस्या का समाधान हो गया। और चलिए एक गाना और हम लोग सुन लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बालों का गिरना एक समस्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी समस्या आज की डेट में क्या हो सकती है?
2: पानी की।
1: पानी की भी, हाँ पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने बताया भी कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे आसपास घूम रहे हैं साफ पानी की फिराक में, हो सके तो उनके लिए पानी के छोटे मोटे जलाशय बना के हम रखें।
2: रखें, बिल्कुल रखें।
1: और हमारे डॉक्टर लव तो खुद पानी नहीं पीते, बिसलरी वगैरह के पूरे मतलब बड़ी बड़ी बोतलें मंगवा के और एक एक मतलब जहाँ भी होता है सड़कों पे ऐसे रखते जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं।
2: ये बहुत जरूरी है।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए एक गाना जो कि मैं एक लिसनर के जवाब के तौर पर देना चाहूँगी। हमारे एक लिसनर हैं जो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड को शाम को कॉफ़ी कैफ़े या कहीं ना कहीं ले जाते हैं, क्योंकि दोनों ही वर्किंग और शाम को ये लोग चाय या कॉफ़ी शेयर करते हैं
2: जी।
1: और ये हमेशा अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको बुला लेते हैं, लेकिन टाइम पे पहुंचते नहीं हैं।
2: ये नहीं टाइम पे पहुंचते
1: हैं। हाँ ये नहीं पहुंचते हैं। अक्सर गोंडा में ट्रैफिक हो जाती है और कहते हैं हर बार मैं रोडवेज पे फंस जाता हूँ। ये रोडवेज के उधर मारुति चौराहे के पास कहीं काम करते हैं, तो ये हर दिन फंस जाते हैं और उस चक्कर में ये अपने समय पे निर्धारित समय पे नहीं पहुंच पाते। तो समस्या सरल थी सरल सी थी, तो समस्या का समाधान भी सरल सा है। ये गाना है तो कृपया करके सूरज आप अपनी गर्लफ्रेंड को ये गाना सुना दें, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल निकल आएगा। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग फॉर सूरज।

0: तो बिल्कुल रूठा दिलबर मनाने के लिए आपको शनिवार को बस हमारे साथ जुड़ना है क्यों डॉक्टर लव?
1: जी बिल्कुल जुड़ना है।
0: नहीं तो रूठा दिलबर
1: नहीं तो
0: रूठा ही रह
1: जाएगा।
0: तो रूठे दिलबर को मनाना हो या किसी को कुछ बताना हो, किसी से दिल की बात कहनी हो या किसी से कुछ छुपाना हो, बस हमारे डॉक्टर लव के साथ मिलिए। गुड इवनिंग नागेश्वर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर विश। वैसे मेरा बर्थडे कल था, आज नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर विश। वैसे लेट में विश करो या पहले, विश तो विश ही होती है। ठीक है, मैं तो कहती हूँ आप लोग एक दो महीने पहले भी कर देते तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेती। हाँ, मुझे कुछ विशेज मेरे लिसनर की दो चार दिन पहले ही मिल गई थी, उनको लगा शायद मेरा 18 मई को बर्थडे है, तो बहुत सारी विशेज उसी दिन से मिलने लगी। कुछ तो पहले ही आके मैम आपको एडवांस विश करने आए, स्टूडियो में आए थे।
1: अच्छा, कब था?
0: कल ही था।
1: तारीख क्या?
0: 22।
1: अच्छा, मतलब आप जिस दिन पैदा हुई उस दिन दो दो था?
0: दो दो।
1: हाँ, क्या बात है, वाह। मतलब आप
0: जन्म एक गिफ्ट ना दो, दो दे, दो गिफ्ट दो,
1: दो दो, हाँ।
0: दो गिफ्ट दो।
1: मतलब ये नाम ही दे, तारीख बताइए इनकी, तारीख 22, मतलब दो दो, ये सिर्फ देने लेने लेने के लिए आई हैं
0: गिफ्ट्स।
1: हाँ, गिफ्ट।
0: तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दुनिया में किसी को भी गिफ्ट मिलते या ना मिले, लेकिन मुझे आप लोग की विशेष इतनी सारी मिली कि मुझे गिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी के साथ डॉक्टर लव से अगर मिलना है और अपने किसी रूठे को मनाना है तो बिल्कुल दूर मत जाइए। आपके डॉक्टर लव शनिवार को आपके ही खिदमत में आते हैं और आपकी समस्या का समाधान निकालते हैं। बढ़ती गर्मी के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, जो है जितना अधिक से अधिक हो सके पानी को उबाल कर पिए, गर्म पानी पीते रहें, ठंडे पानी का उपयोग एकदम न करें, रेत से स्नान करें, पानी से बिल्कुल स्नान न करें,
0: गैस इंडक्शन इन सब का प्रयोग ना करके चूल्हे पर खाना बनाएं,
1: चूल्हे पर खाना बनाएं,
0: जितना पसीना बहेगा उतनी कम गर्मी लगेगी,
1: उतनी कम गर्मी लगेगी। रात में पंखा, एसी, कूलर इत्यादि बिल्कुल न चलाएं, कंबल ओढ़ कर सोएं, रजाई निकाल लें ताकि आपको गर्मी न लगे,
0: ज्यादा से ज्यादा परिवार के सदस्य एक ही कमरे में सोएं,
1: हाँ
0: इससे गर्मी कम लगेगी,
1: कम लगेगी।
0: तो इसी के साथ आरजे बीना और डॉक्टर लव को दें इजाजत। आप सुन रहे थे शो गुंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला, अपने फेवरेट फेवरेट फेवरेट रेडियो स्टेशन 89.6 FM। यह है गुंडा शहर की धड़कन के साथ।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खास खास, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी बात मुझे ज़रूर बताना चैट बॉक्स में। लेकिन उसके पहले, जिसने अपने सैटरडे नाइट स्पेशल वाली प्लेलिस्ट को नहीं खोली है, किसका है ये तुमको इंतज़ार मैं हूँ ना। तो मैं आ ही चुकी हूँ, तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल के उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उसको लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में लगा दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हज़ारों लाखों करोड़ों अनगिनत चांद सितारे आपकी इस फरमाइशी की महफिल में। और आज तो सैटरडे है, हफ्ते भर की थकान तो हम आज ही उतारते हैं, मतलब कुछ भी हो दोस्तों, है ना। भले ही हमारा संडे नॉर्मल जाता हो, लेकिन सैटरडे की गलत फीलिंग नहीं होती है, कहीं ना कहीं से होती है, थोड़ा ना थोड़ा सुकून तो होता ही होता है। और आज मेरा सैटरडे कैसा गया मैं आप लोग को तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनुष्का श्रावस्ती से मुस्तफ़ा जी, दीपक हथिया गड़गोंडा से, नागेश्वर धाकड़ की गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, रमेश यादव गरीबी पूर्वा से, ओ माय गॉड के गुप्ता जी आपको बहुत दिनों के बाद देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, मोहम्मद मुशी बाराबंकी से आपका भी स्वागत है, उदालक शर्मा मनकापुर से, और नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि ना दिन का पता है ना रात का, ना दिन का पता है ना रात का, ए खुदा जवाब तो दे मेरे किसी बात का, उसे बिछड़े हुए कई दिन हो गए हैं, उसे बिछड़े हुए कई दिन हो गए हैं, पूछता हूँ मैं ए खुदा तुझसे कौन सा दिन रखा है उनसे हमारी मुलाकात का। हाँ, बहुत ही खूबसूरत सी लाइन्स थी। और आपको किससे मुलाकात करनी है मुझसे बताइए, क्या पता खुदा के पहले मैं ही सुन लूँ और बिचौलिया बन के मीन्स कबाब में हड्डी बन के आप दोनों की मुलाकात करा दूँ है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग वेलकम एवरीवन, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, विष्णु प्रमिला जी आपका भी स्वागत है, मनीष शर्मा फ्रॉम खुरासा गोंडा, सुरेश कुमार जी चौक से, निबर्जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राकेश वर्मा, राजेश मीना आप सभी का स्वागत है, निशा पटेल नगर गोंडा से, अरमान पटेल नगर गोंडा से। और एंजॉय कर लेते हैं अब बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश दोस्तों। पहली फरमाइश हमारे पास में आई हुई है हमारी प्यारी सी चुलबुली सी अनुष्का की श्रावस्ती से, और श्रावस्ती से एकदम पीसफुल, पीसफुल क्या होता है एकदम पीसफुल जगह से हम सुनेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, तू कौन है तेरा नाम क्या। ये फरमाइश आई है अनुष्का की श्रावस्ती से, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और आपको पता है क्या, कुछ नहीं इस गाने के बाद बताती

अक्षय। खिलाड़ियों के खिलाड़ी का ये गाना हमने एंजॉय किया है कुमार सानू की आवाज़ में, हमारी अनुष्का की फरमाइश पर जो कि है श्रावस्ती से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले के गुप्ता जी का तिरंगा कॉम्प्लेक्स कोंडा से कहना है कि आज काफ़ी दिन के बाद सिंपल जी आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आए हाय, मैं भी आपको काफ़ी दिनों बाद देख रही हूँ, मुझे भी आपसे डबल अच्छा लग रहा है सच्ची। सो एंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफ़ा जी की, और मुस्तफ़ा जी को सुनना है गाना एक तमन्ना जीवन की। तो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा मुस्तफ़ा जी की फरमाइश पर। एंड दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, मींस सच में आज शायद एक बार फिर से आप सभी की दुआएं मेरे साथ में थी। मैं हमेशा हरी में रहती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे जल्दी होती है तब भी मैं जल्दी में होती हूँ, मुझे नहीं जल्दी होती है तब भी मैं जल्दी में होती हूँ, मैं ना चाहते हुए भी जल्दी में होती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो आज इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में दोस्तों मेरे साथ में एक छोटा सा हादसा हो गया है ऑफिस आते हुए, तो वो उस हादसे के बारे में मैं बताऊँगी आप सभी को, लेकिन फिलहाल इंजॉय कर लेते हैं ये वाला गाना स्ट्रीट ह्यूमर एवरीवन।

0: शादी तुझी से हो मिली चाहे शादी के दिन मर जाऊं। और जिन जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने इस गाने का वीडियो देखा होगा, उन्होंने इस लाइन पे मतलब इस गाने में कैसा डांस है वो भी देखा होगा। क्या शानदार नृत्य किया है गोविंदा के साथ में इन दोनों एक्ट्रेसेस ने, बहुत ही कमाल का गाना था। मुस्तफा जी की ये थी फरमाइश। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, तो क्या ख्याल है, चलें क्या फरमाइश की तरफ। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से आपका स्वागत है, और धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से स्टे ट्यून्ड। दोस्तों आज मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं ऑफिस आ रही थी और बहुत जल्दी जल्दी मैं ऑफिस आ रही थी तो मैं एक ई रिक्शे को ही बस जस्ट आ ई रिक्शा जस्ट उस ई रिक्शे को ओवरटेक कर रही थी और उस रिक्शे को ओवरटेक करने में और दिमाग में मेरे ऑफिस पहुंचने से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि उस ई रिक्शे के सामने से भी कोई गाड़ी आ सकती थी और मैं चौराहे पे ओवरटेक कर रही थी। देख रहे हैं मुझे मेरे दिमाग को देख रहे हैं, हैट्स ऑफ टू मी दोस्तों। अब जब मैं उस ई रिक्शे को ओवरटेक कर रही थी तो उस ई रिक्शे के सामने से इसी चौराहे पे दूसरा एक बाइक आ रहा था उस बाइक को मैंने नहीं देखा। और जब आप ओवरटेक करते हैं कोई भी चीज़ तो आप मतलब नॉर्मल स्पीड से अपना स्पीड बढ़ाओगे ना, स्कूटी हो चाहे फोर व्हीलर हो कुछ भी हो ना, स्पीड तो बढ़ाओगे ओवरटेक करते टाइम। मैंने भी ऐसा ही किया। अब मैं इतने में ही देखो दोस्तों मेरे सामने बाइक आ गया, मैं लड़ गई यार दोस्तों, मुझे चोट लग गई है लेकिन इतनी भी नहीं लगी है कि मतलब मैं हंस ना सकूं। मैं हंस सकती हूँ, मैं खुश हूँ लेकिन मुझे हंसी भी आ रही है, तो इस बात पे आ रही है दोस्तों कि मेरी बेवकूफ़ी का लेवल देख रहे हैं आप। सो इंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश बिना किसी देरी के, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। तो अगली फरमाइश हमारे पास में है दीपक जी की हथियागढ़ गोंडा से, और उनको सुनना है गाना पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें न रोके। तो कोई भी सरहद हो आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को आप सभी के बीच में आने से नहीं रोक सकती है दोस्तों। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमोद श्रीवास्तव फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड। दीपक जी बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है।
1: वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

सरहद नहीं रोकेगा भाई। हमने एंजॉय किया है रिफ्यूजी का ये गाना। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, हम प्यार करने वाले दुनिया से ना डरने वाले आए हाय, लव यू केके गुप्ता जी। केके गुप्ता जी को सुनना है अनुराधा और उदित नारायण जी की आवाज में दिल का गाना, दिल से निकला हुआ गाना सिर्फ और सिर्फ। आहा आहा, इंजॉय करेंगे ये वाला गाना हम तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से के गुप्ता जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। कमल नयन जी, आपका स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। श्याम नाम की पगड़ी मींस सुमित्रा जी, स्टे ट्यून्ड। और मोहम्मद मुशीब जी का कहना है कि सिंपल जी, ऊपर वाला आपको जल्दी से अच्छा कर दे। अरे अच्छी तो मैं ऑलरेडी से हूँ, ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छा कर दिया कि इतने में ही अच्छा रख दिया है मुझे। सो बहुत बहुत शुक्रिया ऑलरेडी ऊपर वाले का और आपका भी। बस थोड़ी सी चोट है, दो चार दिन में ठीक हो जाएगी यार। स्टे ट्यून्ड। फिलहाल हम प्यार करने वाले दुनिया से ना डरने वाले।

में जिएंगे मर जाएंगे, प्यार करने वाले हैं हा, हा, हा, हा। ये प्यार करने वाले ना खाली बातें बड़ी बड़ी करते हैं, करना कुछ नहीं जानते। वो कहते हैं ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते कभी नहीं है, मतलब बरसते हैं लेकिन कभी कभी बरसते हैं ना, और जो नहीं गरजते हैं वो बहुत प्यारी सी और बहुत मतलब बहुत बढ़िया सी बरसते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मेरी जज्बात को। सो इन्जॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है रमेश यादव की गरीबी पुरवा से, उनको सुनना है गाना जिसे देख के दिल मेरा डोले, मेरे दिल की धड़कन बोले आहा आहा। सो इन्जॉय करते हैं ये वाला गाना फूल और कांटे का कुमार सानू की आवाज़ में, ये नगमा सिर्फ और सिर्फ रमेश यादव की फरमाइश पर।

मेरे कॉलेज की लड़की है, फूल और कांटे का ये गाना हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, बिना बिना बिना किसी देरी के। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, उनको सुनना है गाना बाराबंकी से। उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, हम जश्न मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे और पता नहीं क्या क्या है, फिलहाल कुछ करेंगे चाहे नहीं करेंगे, लेकिन तेरे इश्क में जरूर नाचेंगे। सो एंजॉय करते हैं तेरे इश्क में नाचेंगे, राजा हिंदुस्तानी का ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अब क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, रम रम रुबा रुबा रुबा रुबा रम रम रुबा। हमने एंजॉय किया राजा हिंदुस्तानी का ये गाना मोहम्मद मुशीर जी की फरमाइश पर जो की है बारा बंगी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की, उनको सुनना है गाना पूछो जरा पूछो। हाँ, सो ये फरमाइश है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

तो दोस्तों ये तो फरमाइश थी मुमताज अंसारी जी की। होंडा से बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल करना चाहेगी जरूरी अनाउंसमेंट। जी हाँ, हम इस फरमाइशी गीत के उस तरफ चलेंगे हमारे आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यही बने रहिएगा रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। एंजॉय करते हैं विष्णु प्रमिला की फरमाइश पर ये गाना, इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा। अच्छा जी, तो ये गाना मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को कैसा लगता है चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना विष्णु प्रमिला जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

So, दोस्तों ये फरमाइश थी अक्षय सिंह की, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ बिना बिना बिना बिना किसी देरी के। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर शहर शहर की धड़कन, और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की, आवास विकास से, और आवास विकास से विकास करते हुए हम इंजॉय करेंगे मोहम्मद रफी जी की आवाज में प्रोफेसर मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। धर्मेंद्र मोहन जी की है ये फरमाइश, स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों, ये फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन जी की आवाज विकास गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुमित्रा जी की, श्याम नाम की पगली को सुनना है गाना। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन साउंड इस गोल्ड वाला नगमा, लेकिन इस बार सुमित्रा जी की फरमाइश पर जो कि है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

पुकारा मुलाकात हो गई हमने, एंजॉय किया है ये गाना। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। ये फरमाइश थी सुमित्रा जी की और अगली फरमाइश हमारे पास में है कमल लैन की। कमल लैन को सुनना है गाना, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, और ऐसा हाल होता है मेरा हर संडे को। मेरा बस यही मन होता है कि काश ऐसा होता कि 10 मिनट के लिए आप लोग से मेरी थोड़ी सी बात हो जाती, बस इतना ही। मेरा तो मन होता है कि मैं मनु सर को फ़ोन भी करूं और बोलूं कि आरजे मनु मुझे अपने लिसनर्स से थोड़ा सा बात करना है, बस 1 मिनट के लिए हेलो हाय करना है। मतलब मैं बटरिंग नहीं करूं, मैं सही बोल रही हूं, रोज़ मिलती हूं ना आप लोग से, आदत सी हो गई है, काफी साल भी तो हो गए ना। स्टे ट्यून्ड।

नहीं हो लगता दिल तेरे बिना। हमने एंजॉय किया उदित नारायण और अनुराधा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी? अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से। और इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुना है गाना इश्क का राजा। एंजॉय करते हैं इट्स कुमार की फरमाइश पर ये वाला गाना।

हमने इंजॉय किया है ये गाना इश्क का राजा हुस्न की रानी इट्स कुमार की फरमाइश पर जो की है एमपी रीवा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है। इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी का गाना सिर्फ और सिर्फ किसकी फरमाइश पर। आहा इस गाने के बाद बताती हूँ, स्टे ट्यून्ड। आप तब तक गेस करो किसकी फरमाइश हो सकती है ये।

लेकिन अभी तो जाने का वक्त हो चुका है, सुजाने का वक्त हो चुका है। लास्ट वाले गाने को एंजॉय करेंगे, उसके पहले जिसको आना है आजा। हम एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश। एंड दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी अरमान पटेल की, अरमान की तरफ से, जो कि है पटेल नगर गोंडा से। सो गोंडा से अरमान की थी ये फरमाइश, और लेते हैं अगली फरमाइश को और उसी के साथ में चलते हैं अलविदा की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। उनको सुनना है आज एकदम सैटरडे नाइट स्पेशल वाला गाना, हनुमान जी वाला गाना, बजरंग बली जी वाला गाना। कहते हैं कि सैटरडे को मतलब शनि जी की भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगी, शायद कुछ लोग को ना पता हो, जैसे मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत ही जल्दी पता चला ये बात। तो मैं आप लोग से बताना चाहूंगी कि सैटरडे को मतलब ऐसा है कि अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करोगे ना, तो तब भी शनि जी उतने ही खुश होंगे जितना आप शनि जी की पूजा करोगे। तो कितना बढ़िया है ना कि हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, हनुमान जी भी खुश, शनि भी जी खुश, तो हनुमान जी के लिए एंजॉय करते हैं, हमारे पवन सुत हनुमान के लिए एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जिसकी फरमाइश की है सुरेंद्र यादव जी ने गौरा चौकी से। और इसी के साथ में लेती हूँ अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सिंपल के साथ में। सो गाइस, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। सम स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कभी नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को बहुत सारा मिस करना है क्योंकि मैं कल नहीं आऊंगी। तब तक के लिए परसों मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा प्यार आपके आरजे सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं मंडे को। और हाँ, अगर कल मैं चैट बॉक्स में आई तो फिर ये समझ लेना कि हाँ आपकी रियल आरजे सिंपल है, फेक नहीं। अब इसी चक्कर में कहीं 10-10 के आरजे सिंपल ना बन के चले आना। फिलहाल आई विल मिस यू गाइस, टुमारो मिलते हैं, परसों, बाय।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है।

0: स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
0: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
7: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
8: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
9: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
10: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
9: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश स्लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और आज के इस खास वाले सेगमेंट में आपका स्वागत है। जी हाँ, जिसका नाम है गजलें हमारी गीत आपके। और हमने आपको एक गजल सुना दी है, तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या, बहुत ही प्यारी सी आवाज पंकज उदास की आवाज। और अब चलते हैं भाई पहला प्रश्न, दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर। वाह, तब तक फोन आ चुका है, देखते हैं कौन है भाई साथ। हेलो हेलो,
1: नमस्कार।
0: अरे मतलब शुरुआत ही दादा से हो गई। प्रणाम दादा, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हैं?
0: जी जी, आपका आशीर्वाद।
1: तो मैं सोच रहा था कि लगता मेरा ही शुरुआत है क्या?
0: एकदम से दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, क्या गाना चुना है आज आपने? अरे बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे हैं।
1: देखिए कुछ कमियां होंगी तो इसके लिए मैं
0: छाप रहती। देखिए ऐसा करके आप हमको शर्मिंदा बार बार करते हैं, और न करें तो ठीक है।
1: गलतियाँ होती हैं हर इंसान, मैं प्रयास करूँगा।
0: जी जी, हम आपके उस प्रयास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: तो मैं सुना रहा
0: जी,
1: दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, मैं तेरी यादों को दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मौत हो मेरी उदास। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, मैं तेरी यादों को दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊदा। दिल के छरों को तुझको बैठा कर, मैं तेरी यादों को दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊद।

0: डोली में आगे तो रफ्तार से, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। के झाड़ों पे मैं तुझको बैठा कर, मैं तेरी यादों को दुल्हन बना कर, मैं रखूंगा बेबी के पास, मत हो मेरी जान उदास। कभी तेरे सूखे ओठों के प्याले मेरे तो चुपड़ के साकी बने हैं, अभी तेरी जुल्फ के मत साए मेरी मेरी विरह की साकी बने हैं, अभी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तब सुर के साकी बने हैं, अभी तेरे जुल्फ को ये मत साए बिरह के धूप के साथी बने हैं, दिल के घरों के मैं तुझको बैठा कर, मैं तेरी यादों को दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान। धन्यवाद सर।
1: क्या बात है भाई, फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत दिल के
0: झरोखे, थोड़ी आवाज फटी है, गलतियां
1: हुई। हाँ मतलब, लेकिन इसमें का माहौल ऐसा है कि गला लोगों का बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत शानदार तरीके से और बहुत ही शानदार प्रस्तुति।
0: प्रयास तो मैंने किया सर।
1: और प्रयास आपका सफल रहा, कोशिशें हमेशा कामयाब हो जाती है, वादे टूट जाते हैं।
0: चलिए, आपके ये आपकी धर्म नवाजी है कि आपने हमको इतना अप्रिशिएट किया।
1: जी नहीं, हमने सही बोला।
0: नहीं, आपने गलत नहीं बोला, आपने बहुत बढ़िया बोला
1: जी।
0: गलतियां इंसान से जो होती है
1: जी।
0: अच्छा, तो मैं क्या जो मैं आपको बोल रहा था, मैं पहला गाना सुनने के लिए
1: जी जी
0: अकेले आज चले आए, क्या मैं गा सकता हूँ?
1: जी गा सकते हैं।
0: चलिए, शायद उसमें गलती नहीं
2: है। कहा तुमको कहा अकेले हैं

तो वे हम ढूंढते हैं, हम दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हम दिल ढूंढता है, नाप मंजिल है कोई न कोई रास्ता है, अकेले है चल।

0: भाई कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं, चले आओ जाओ, क्या बात है।
1: लेकिन आप और हमारी आवाज तो बैठी हुई है स्लिप पारी।
0: अरे नहीं दादा, बैठी हुई है तो क्या हुआ, शेर दहाड़ेगा तो दहाड़ेगा।
1: आप लोग का कोई कमियां हो तो क्षमा।
0: अरे नहीं नहीं नहीं दादा, बिल्कुल ऐसा नहीं।
1: बहुत बहुत
0: जी जी धन्यवाद, बहुत प्रणाम दादा आपको।
1: थैंक यू सर
0: जी। हाँ भाई, और अब चलते हैं, जरा देखते हैं भाई पुराने गीत तुमने सुने। एक कभी कुछ दिनों पहले बहुत ही प्यारी सी आवाज़ टकराई मेरे कानों से, मैं जा रहा था और आवाज़ आई जान निसार। और मतलब क्योंकि मैंने उस गीत को शायद पहली बार सुना था, लेकिन सुन करके फिर रुका मैं उस गीत को। बड़े ही प्यारे बोल लगे मुझको उसके, और बहुत ही प्यारी सी मीठी सी आवाज़, जानिसार जानिसार जानिसार। जी हाँ, तो अगर हम ये जानते हैं कि जो हमारे यूथ हैं वो इस गीत से बिल्कुल परिचित होंगे, और चलते हैं अब जानिसार की ओर, देखते हैं क्या कोई है जो इसको पूरा कर सकता है। जी हमारे साथ जय शर्मा जी हैं, बहुत खूब जी, और शानदार जी। अजी भाई अकेले हैं, चले आओ जहां हो, कहां आवाज़ दे तुमको, कहां हो। रफ़ी साहब के सबसे बेहतरीन गीतों में से ये एक प्यारा सा गीत है और बहुत प्यारा गाया गया, जितनी भी तारीफ़ की जाए उसकी कम है। और अब चलते हैं भाई, देखते हैं क्या जानिसार को कोई करता है पूरा। जी हाँ, और ये जानिसार पूरा हो चुका है, मुझको लगता है फोन आ चुका है, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो जी सर, नमस्ते।
0: ओहो, पूर्व दिशा अर्थात प्राची जी, कैसी हैं आप?
2: जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बस आपका आशीर्वाद। और बताइए, तो मतलब ये जानिसार आपने सुन रखा है?
2: हाँ, मैंने सुना है, एक समय था जो मेरा फेवरेट सॉन्ग था, अभी भी मेरा फेवरेट है।
0: अच्छा, कुल मिलाकर आपके कितने फेवरेट सॉन्ग हैं?
2: ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और लज्जा वैली मेरा फेवरेट सॉन्ग है।
0: हाँ, क्या बात है, क्या बात।
2: जी सर,
0: लता जी के सबसे अच्छे गीतों में।
2: हाँ, मेरा लगता है बहुत ही फेवरेट।
0: जी
2: तो मुझे जानिसार
0: जी। हाँ बिल्कुल जानिसार
2: जी।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है प्राची जी, क्या गीत चुन लिया आपने, क्या गजल चुनी, ट्रिपल एस का कहना है, नाइस गजल। और मुझे आपने कहा था कि आपको गीत बहुत अच्छा लगता है, लग जा गले
0: जी मेरा फेवरेट सॉन्ग है।
1: तो क्या उसका एक अंतरा हम सुन सकते हैं आपसे?
0: हाँ हाँ मैं सुना सकती हूँ, मैं सुनाऊँ
1: जी?

0: थैंक यू सर।
1: दिल निकाल लिया आपने, बहुत तरह गाया, और हमको लगता है ये गाना हम कल ओपन माइक में भी सुनेंगे आपसे।
0: मैं कल ओपन माइक में आपको ये गाना सुनाऊंगी।
1: क्या बात है, क्या बात है, आपकी आगमन की प्रतीक्षा रहेगी।
0: जी जी, थैंक यू सो मच सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको
0: सर। नमस्ते
1: जी। नमस्कार जी। हाँ, बात हुई है लता मंगेशकर की। भाई तो जो मुझे उनका एक गीत ये बहुत पसंद आता है, जो अभी प्राची ने गाया, और अब चलते हैं उस गीत की तरफ जो मुझे बहुत पसंद है। कहीं दीप चले कहीं दिल,

0: देखते हैं इस गीत को कौन करता है पूरा। हेलो,
1: हाँ नमस्कार भैया
0: जी। नमस्कार, अरे दर्द कुमार जी,
1: और कैसे हैं आप?
0: आपका आशीर्वाद, आप कैसे हैं?
1: चलो ठीक है, आशीर्वाद।
0: क्या बात है, मतलब आज आपने मोहम्मद रफी को छोड़कर लता जी को चुन लिया है।
1: हाँ,
0: अभी हमने वो गीत सुना प्राची जी से, लग जा गले, तो हमको लगा कि इसके ऊपर गीत तो भाई लता जी का ही इसके बदलना चाहिए।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो शुरू कर रहे हैं?
0: जी जी।

0: जले कहीं दिल, कहीं दिल जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है कहीं दी जले कहीं दिल, मेरा दिल तेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है, मेरा दिल तेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है, मेरा दिल है तेरी महफिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन है मंजिल कहीं दी जले कहीं दी, न मैं सपना कोई राजू, एक दर्द भरी आवाज, न मैं सपना हूँ ना कोई राजू, एक दर्द भरी आवाज, या देर डकर आमिल तेरी कौन सी है मंजिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है दुश्मन है हजारों जहां जान के, तेरा मिलना नजर पहचान के, दुश्मन है हजारों जहां जान के, जरा मिलना नजर पहचान के, कई रूप है कातिल कहीं दिल जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, ओ
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, इतनी तारीफ की जाए कम है, क्या बात है। लता जी के इस दर्द को आपने किस तरह से उठा लिया, ये तो मतलब क्या बात है, मतलब इतनी शानदार आवाज अभी लता जी के गीत पर, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
2: थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, थैंक यू। एक छोटा सा लता का और एक और तो सुना दे, लता का एक और छोटा सा।
1: जी जी सुना दीजिए, आज दर्द कुमार लता जी बन चुके हैं।
0: ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा रोको कोई, ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा रोको कोई, ओ बसंती याद कर तूने कहा था प्यार ही संसार है याद कर तूने कहा था प्यारी, संसार है मैं तुम्हारी दिल की बाजी, ये तेरी हार है। सल क्या कहती है पायल, ना जा रे ना जा तुमको कोई, ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा तुमको कोई, ओ बसंती।
1: क्या बात है भाई, ओ बसंती पवन पागल, क्या बात है। दोनों गीत आपने लता जी के उठाए और दोनों को निभाया, गाया नहीं, निभा दिया।
2: थैंक यू मेरे भाई।
1: अच्छा प्रणाम जी भाई। तो ये हमारे दर्द कुमार जी रहे, लेकिन आज उन्होंने गीत जो चुने वो रफी साहब के नहीं, आज गीत चुने गए लता मंगेशकर जी के। और शुरुआत में दादा ने हमारे गीत उठाया दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, रफ़ी और लता। वास्तव में मेरा मानना यह है, व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन जब लता और रफ़ी की जोड़ी एक साथ उतरती है मैदान पर एक किसी एक गीत पर, तो मुझे लगता है कि वो गीत अपने आप सबसे अच्छा हो जाता है। और चलिए, आपने अब गीत सुना दिए हैं, गज़ल हम आपको एक प्यारी सुनाते हैं और इस प्यारी सी गज़ल के बाद फिर लौटते हैं। और फिलहाल मेरे पास किसी का फ़ोन आ चुका है, देख लेते हैं कौन है मेरे साथ। हेलो।
3: हेलो, हाँ, अरे शुभ संध्या मनु जी।
1: अरे चरण स्पर्श अगर मैं गलत नहीं हूँ तो श्री तेज नारायण जी बोल रहे हैं आप?
3: जी मैं तेज नारायण शुक्ला ही बोल रहा हूँ
1: जी। आपकी आवाज़ हमारे दिल में छप गई है।
3: अरे सब आपकी जरा नवाजी है
1: जी,
3: आप लोगों का प्रेम है, मोहब्बत है
1: जी।
3: जी असल में क्योंकि ये आपका मौसिक, मेरे ख्याल से मौसिकी का प्लेटफॉर्म है
1: जी।
3: लेकिन थोड़ा आज मेरे साथ, मतलब मेरे बहुत अजीज छोटे भाई जैसे
1: जी।
3: और आपके IBN 7 चैनल के न्यूज हेड राजशेखर त्रिपाठी का आकस्मिक निधन हो गया, तो मन थोड़ा क्लांत था। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चार पंक्तियां, मैं कुछ पंक्तियां मैं डेडिकेट करना चाहता हूं उनको, हालांकि ये अनाधिकार चेष्टा है, यहाँ मनोरंजन के लिए लोग बैठे हैं।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन हम आपको बताएं कि हमारा ज्ञानस्थली एक रेडियो नहीं है, एक परिवार है, और इस परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के सुख में हम भागीदारी है और उतनी ही भागीदारी हमारी दुख में है। सबसे पहले तो ईश्वर जो है वो गोलोकवासी जो हो चुके उनकी आत्मा को शांति दे, और हम अपना शोक भी व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं।
3: और असल में इधर बीते हुए मतलब समझिए साल डेढ़ साल में लगभग कई राष्ट्रीय फलक पर उभरती हुई और या अपना मुकाम कायम कर चुकी प्रतिभाओं का आकस्मिक इधर बहुत हुआ। अभी कुछ दिन पहले हुआ ऐसे, तो मन थोड़ा सा वो था, तो मैंने कहा कुछ आप लोगों से शेयर कर लिया जाए।
1: जी जी तो बहुत, बहुत जी, अच्छा है, तो दुख बांटने से घट जाता है।
3: जी जी जी, तो मैं शुरू करता हूँ, कुछ पंक्तियाँ मतलब इस प्लेटफॉर्म को देता हूँ।
1: जी
3: जी जी, आदतों का दौर थमता नहीं, आदतों का दौर थमता नहीं, काल चक्र रुकता नहीं, हादसों का दौर थमता नहीं, काल चक्र रुकता नहीं, ईश्वरेच्छा प्रबल है, ईश्वरेच्छा प्रबल है, होनी अटल है।
1: क्या बात,
3: पर इतना प्रत्याशी कि सांसें थम जाती हैं, कि सांसें थम जाती हैं, वक्त वक्त जैसे ठहर जाता है, मौन स्तब्ध वाक मन देखता रह जाता है, समय का अविरल प्रवाह पुनः यही क्रम दोहराता है, शायद फिर कुछ टूट गया है, शायद शायद फिर कुछ टूट गया है, या बहुत कुछ पीछे छूट गया है, मन के कैनवास का कोई कोना रिक्त हो गया है और शायद हृदय भी तिक्त हो गया है।
1: क्या बात है।
3: फिर हौसले की कूची से रिक्तता भरने का प्रयास, संवेदनाओं की बारिश, लेकिन एक बार फिर मन घायल हताश।
1: आहा, क्या बात है।
3: वक्त का मरहम शायद इसको भर देगा पर अपने क्रम से कोई और कोना खाली कर देगा। न जाने ये कौन सा दौर है, पहले ऐसा न था, अब कुछ और है। शायद ये प्रकृति का कहर है या फिर इस रात्रि का ये अंतिम पहर है
1: क्या बात क्या बात। मतलब वास्तव में संवेदनाएं किस प्रकार से बाहर फूटती हैं, वो आपने एक कवि होकर और बहुत ही आसान शब्दों में बहुत बड़ा दर्द बयां कर दिया।
3: मैं अपने आप को रोक रहा था, मैंने कहा कि भाई लोग मनोरंजन कर रहे हैं तो इसमें ये सब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मन नहीं माना तो मैंने फोन
1: बिल्कुल
3: कर
1: बिल्कुल ये आपका मतलब हम एक परिवार के सदस्य हैं और अब प्रत्येक सदस्य हम लोग ये मानते हैं कि हमारा अपना सुख भी सबका सुख है और अगर किसी एक व्यक्ति का भी दुख है तो वो सबका दुख है।
3: अरे बहुत बहुत अच्छी बात है जी, जी, जी
1: सुख संत परिवार है, मतलब ईश्वर इच्छा बलि यसी जैसा आपने कहा
3: जी, जी, जी,
1: लेकिन वो एक मतलब होता है कि इंसान जानते हुए भी जानता है सब कुछ, लेकिन जब वो पल आता है तो फिर आंखों में नमी थोड़ी सी आ जाती है।
3: जी जी जी जी, थोड़ा चौंका देता है, मतलब थोड़ा आदमी मतलब जैसे मन वही है जो मैंने लिखा है कि एकदम से अचानक कुछ ऐसे सुनाई पड़ता है तो एकदम वो हो जाता है,
1: स्तब्ध हो जाते हैं जी, एकदम
3: जी स्तब्ध हो जाता है जी एकदम। ठीक है मनु जी,
1: जी
3: बहुत बहुत आभार आपका। अरे बहुत बहुत आशीर्वाद जी, धन्यवाद,
1: शुभरात्रि। जी हाँ, धर्मेंद्र मोहन जी हैं। मनु जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? जी हाँ मैं ठीक हूँ। अब चलते हैं भाई, आपको सुनाते हैं गजल और गजल के बाद फिर लौट कर आते हैं और देखते हैं अब की बार हमें क्या सुनने को मिलता है। फिलहाल सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप

0: जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो कल सुबह ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में एक बार पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जागीर किसी की है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: The Haunted Night, डर और खौफ से जुड़ी कुछ कहानियां और सच्चे अनुभव।

0: अगर रात में कोई आवाज दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए।
1: देर रात अंधेरे रास्ते से कभी नहीं जाना चाहिए।
0: अगर रात में कोई आवाज दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए।
2: अक्सर जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हमें अपनों की दी सलाह और नसीहतें याद आती हैं। खासकर जब आप देर रात किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हों। कहा जाता है जब दिन की रोशनी सिमटने लगती है और रात का अंधेरा गहराने लगता है तो कुछ अनदेखी और अनजानी रूह जाग उठती हैं। पता नहीं ये सच है या वहम, पर ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक ना तो कोई पूरी तरह जुटला सका है और ना ही अपना सका है। पर जरूरी नहीं कि जो चीज जुटला दी जाए वो असत्य ही हो। ऐसा ही कुछ हुआ राजवीर के साथ उस रात, जिसने राजवीर को वो मानने पर मजबूर कर दिया जिस पर शायद आप में से किसी को भी यकीन ना हो। लखन और राजवीर बचपन के दोस्त थे, दोनों एक ही गांव में रहते थे। पहले दोनों ही खेती किया करते थे, पर बहुत साल पहले राजवीर अपनी जमीन बेचकर शहर में रहने लगा था और आज वो पूरे 12 साल बाद लखन के दादाजी की तेरही में शामिल होने आया। रात के 10 बज रहे थे और लखन राजवीर के इंतजार में बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था।

0: राजवीर।
1: हाँ लाखन, अपना बैग ले लो बस।
0: वाह भाई राजवीर, आखिर तेरे दर्शन हो ही गए। पिछले 12 साल से गांव की तरफ पलट

0: हिम्मत भी कर ली, वरना ज्यादातर लोग तो सुबह होने का इंतजार करते हैं।
1: हाँ तभी शायद, बस स्टैंड पर भी इतनी खामोशी है।
0: ये गांव है मेरे शहरी बाबू, अब तक तो लोग यहाँ पर अपनी भैंसों के साथ सो चुके होंगे। यहाँ आज भी लोग रात में बाहर घूमना सही नहीं समझते।
1: तो तेरे कहने का मतलब है वो भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच।
0: अरे धीरे, क्या कर रहा है? यूं इतनी रात में इनका नाम नहीं लेना चाहिए इस तरह।
1: क्या यार लाखन, तुम लोग भी, दुनिया सीधे पैर चलकर कहां से कहां पहुंच गई और तुम लोग अभी भी उल्टे पैर की चुड़ैलों की बातों पे विश्वास करते हो।
0: फिर वही, तू मान या मत मान, लेकिन उनका यूं मजाक मत बना। वैसे भी अभी इस 4 किलोमीटर के रास्ते में अंधेरी रात में इसी सुनसान रास्ते से जाना है। खैर बच्चों की सुना, 2 के 2 ही है या एक आध और बड़ा?
1: तेरी तरह नहीं हूँ, यूं फौज पे फौज बढ़ाता जाऊंगा।
2: राजवीर का यूं लखन की बात को नकार देना लाजमी था। अगर राजवीर भी लखन की तरह गांव में ही रहा होता तो शायद वो भी आज इन बातों को मान रहा होता। पर क्या इस तरह इन बातों का मजाक उड़ाना ठीक बात है? वो भी उस सुनसान रास्ते पर जहां अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उनकी मदद के लिए कोई चाहकर भी नहीं आ सकता। इस समय वो दोनों सड़क के रास्ते पर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए गुजर रहे थे। तभी राजवीर के मन में एक ख्याल आया कि वो लंबे रास्ते से जा रहे हैं। बचपन में तो जब भी किसी बस के आने का समय होता था तो वो खेतों से होते हुए हाल ही बस स्टैंड पहुंचाया करते थे। उसने लखन से इस बारे में पूछा।
1: यार लखन, तुझे नहीं लगता कि सड़क के रास्ते की जगह अगर हम खेतों के रास्तों से होकर गुजरें तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे?
0: खेतों के रास्ते, वो भी इतनी रात? दिमाग तो सही है तेरा।
1: क्यों, रात में ऐसा क्या है?
0: बड़े बुजुर्गों का कहना है कि देर रात खेतों से नहीं गुजरना चाहिए।
1: यार तू फिर शुरू हो गया। एक तो इतना थका हुआ हूँ, ऊपर से भूख ने बुरा हाल कर रखा है। भाभी के हाथ की बाजरे की रोटी खाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। तू चल यार, जब तक तेरे साथ तेरा ये भूतिया दोस्त है, कोई भूत तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
0: पर राजवीर,
1: तू चलना यार, कुछ नहीं होगा।
0: चल ठीक है यार, पर एक चीज का ध्यान रखना, रास्ते चलते हुए पीछे से या आसपास से कोई भी आवाज आए तो उसकी तरफ देखना मत और बस सीधे ही चलते जाना।
1: तू भी ना यार, चल ठीक है, पर अगर आगे पीछे तेरे दादाजी हुए तो?
0: तू भी यार, कुछ भी बोलता है।
2: कभी कभी मजबूरी में हमें जानकर भी कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिसका हश्र आगे जाकर बहुत बुरा होने वाला होता है। सब जानते हुए भी राजवीर की बातों में आकर लखन का यूं सड़क छोड़कर खेतों के रास्ते से जाना उनके लिए क्या मुसीबत लेकर आने वाला था? या राजवीर अपनी जगह सही था कि भूत प्रेत सिवाय आदमी के वहम के और कुछ नहीं?
1: और तू सुना, भाभी जी और बच्चे कैसे हैं? अभी भी दो पर ही अटका है या फिर फौज?
0: कैसी बात करता है यार, गांव के हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ हैं। बच्चे दो ही अच्छे, पर यार तूने खेत का रास्ता लेकर सही नहीं किया, क्योंकि कुछ साल पहले ही।
1: क्या कुछ साल पहले, तू रुक क्यों गया?
0: जाने दे यार, घर पहुंचकर बताऊंगा।
1: बता ना यार, रास्ता भी अभी काफी लंबा है।
0: दरअसल कुछ साल पहले हमारे गांव का जो बंसी है ना, वो अपनी बीमार पत्नी को लेकर इसी रास्ते से शहर दिखाने जा रहा था। रात के करीब 1 बजे खेत के एक मजदूर ने उसकी पत्नी की चीख सुनी। वो दौड़कर आया तो उसने देखा कि बंसी का शरीर पेड़ पर लटका हुआ है और उसके 2 साल के बच्चे का मृत शरीर खून से लिपटा हुआ पड़ा है। उसकी पत्नी वहीं पर बेहोश पड़ी थी। आज उस बात को सालों बीत गए हैं और उसकी पत्नी इस हादसे से सदमे में है। उस रात यहां

0: पर क्या हुआ था कोई नहीं जानता। तब से गांव वालों ने देर रात यहां से गुजरना बंद कर दिया है। सबका यही मानना है
1: किसी प्रेत का साया है। क्या बकवास है, हो सकता है किसी चोर या लुटेरे ने ऐसा किया हो। तुम गांव वाले भी ना हर बात भूत प्रेतों पर टाल देते हो।
2: इस तरह दोनों बातें करते हुए उस घनघोर काली रात में सुनसान खेतों से होकर गुजर रहे थे। वहां की हवाओं में महसूस किया जा सकता था कि वहां आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई ना था। सभी लोग मानो किसी भारी डर की वजह से अपने अपने घरों में ही कैद थे। एक अजीब सी मनहूसियत हर ओर पसरी हुई थी। लग रहा था मानो मौत चंद पलों वहां डेरा जमाने वाली हो, पर ये सब लगन को ही महसूस हो रहा था।
3: राजवीर
2: इन सब से बेखबर अपनी ही बातों में लगा हुआ था। तभी राजवीर को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जिसे सुनकर राजीव डरा तो नहीं, पर हां उसे हैरानी जरूर हुई। उसने नजर दौड़ाई तो पाया कि दूर दूर तक वहां कोई ना था। उसने पाया लगन एकदम खामोश सा हो गया था। उसे महसूस हुआ कि लगन अंदर से बेहद डरा हुआ था।
3: अब वो राजवीर की किसी भी बात का जवाब देने में असमर्थ था।
2: वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उस बच्चे की रोने की आवाज भी बढ़ती चली गई।
1: लखन, लखन, क्या तुमने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी? लखन,
2: राजवीर की बात का लखन ने कोई जवाब ना दिया। राजवीर को ये बड़ा अजीब लगा। भला ऐसा भी क्या डरना। राजवीर कुछ कहता इससे पहले ही उस बच्चे के साथ अब उसे किसी औरत की रोने की भी आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर राजीव दंग रह गया। सुनने में वो आवाज इतनी तेज थी कि मानो कोई उनके बगल में बैठकर ही रो रहा हो। पर दूर दूर तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और इधर दूसरी तरफ लखन मानो किसी लाश की तरह उसके साथ चले जा रहा था। न कोई बात, न कोई हलचल।

0: लखन,
1: मैंने तुमसे मना किया था ना, रात में खेत के रास्ते नहीं जाते।
2: लखन की उस डरावनी आवाज ने राजीव के दिल में पहले ही खौफ भर दिया। उसे लगा मानो ये वो लखन नहीं जिसे वो बरसों से जानता था, ये कोई और ही था। पर डर की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ कहे। वो चुपचाप उस सुनसान और अंधेरी रात में जैसे किसी खास अपने पर अजनबी के साथ चला जा रहा था। खेतों से चलते हुए उसे थोड़ी दूर एक पीपल का पेड़ नजर आया, जहां उसे लगा मानो कोई औरत अपने छोटे से बच्चे को लोरी गाते हुए झूला झुला रही हो।
3: सोजा सोजा राज दुलारे, सोजा सोजा सोजा सबके प्यारे सोजा।
2: देर रात उस सुनसान रास्ते पर उस लोरी की गूंज से राजीव के डर का कोई ठिकाना ना था। उसके पैर वहीं जमीन में जम गए थे, पर लखन बिना रुके उस पेड़ की तरफ बढ़े चला जा रहा था, जहां से उस बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसने लखन को डरते हुए आवाज दी,
0: लखन लखन लखन लखन, वहां मत जा, रुक जा लखन।
2: पर लखन मानो बिना सुने किसी लाश की तरह उस पीपल की पेड़ की तरफ बढ़े चला जा रहा था। कुछ पलों बाद लखन उसकी आंखों से उजल हो गया और पीपल के पेड़ पर वो औरत और बच्चा भी। अब राजीव उस खौफनाक रास्ते पर अकेला ही खड़ा हुआ था, दहशत अपनी चरम सीमा पर थी। राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, समझ आ रहा था तो सिर्फ इतना कि उसने लखन की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की है। उसे वो रास्ता छोड़कर यूं खेतों के रास्ते इतनी रात को नहीं आना चाहिए था। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि किसी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा।
0: कौन कौन? चलो, कितना इंतजार करवाया तुमने। तुम्हारी भाभी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और तुम्हारा भतीजा भी।
2: राजीव ने देखा कि लखन उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसकी गोदी में एक बच्चा है, जिसे देखकर राजीव के होश उड़ गए। उसके दिल में कई सवाल थे, पर डर ने मानो उसकी जबान पर ताला लगा दिया था। उस बच्चे को गोद में लिए वो सीधे रास्ते की ओर बढ़ने लगा। राजीव के दिल में खौफ इस कदर सवार हो चुका था कि वो भी बिना कुछ कहे लखन के साथ चलने लगा। वो दोनों और वो बच्चा साथ साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे। राजीव जमीन की तरफ सर झुकाए चला जा रहा था। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो सर उठाकर ऊपर देख सके। तभी राजीव को फिर से उस बच्चे की रोने की आवाज आई। राजीव के दिल में जो खौफ था उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वो बच्चा अब जोर जोर से रो रहा था और लगन किसी लाश की तरह उस बच्चे को गोद में लिए चला जा रहा था। इतना सब हो ही रहा था कि खौफ ने एक नई करवट ली। उसे फिर वही लोरी की आवाज एक बार फिर सुनाई दी।
3: राज दुलारे सो जा सोजा सबके प्यारे सो जा।
2: पर इस बार खौफ अपनी चरम सीमा पर था, क्योंकि इस बार उसने उस पीपल वाली औरत को उसके साथ चलता हुआ महसूस किया। उस औरत ने सर तक घूंघट किए हुए था और वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चल रही थी। एक तरफ लखन की गोद में रोता हुआ बच्चा और दूसरी तरफ लाल साड़ी में वो औरत। राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डर और खौफ के साए में जैसे लिपटा हुआ था। उसने हिम्मत करके जब लखन की ओर नजर उठाई तो उसकी चीख निकल पड़ी। जो छोटा सा बच्चा लखन की गोद में था उसके पैर जमीन छू रहे थे। उस खौफनाक मंजर ने राजीव की बची खुची हिम्मत को भी छीन लिया। वो बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि उसे कुछ लाइट्स जगमगाती हुई नजर आई। जिसे देखकर उसकी जान में थोड़ी जान आई। वो समझ गया कि वो किसी गांव के नजदीक आ गया था। पर जैसे ही वो गांव के नजदीक आया उसने पाया कि लखन और वो बच्चा अचानक ही उससे काफी दूर वापस चले गए थे। उसने पलट कर देखा तो उन तीनों को बहुत दूर खड़ा पाया। राजीव ने एक बार फिर आवाज दी,
4: लखन!
2: पर वहां से कोई जवाब ना आया और थोड़ी ही देर बाद वो तीनों उस जगह से ओझल हो गए। राजीव भी भागता हुआ उस गांव की तरफ गया। गांव पहुंचकर वो एक मंदिर में चला गया और वहीं कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके अंदर का डर और खौफ किसी तूफान की तरह बाहर निकल पड़ा। रोते रोते वहीं उसकी नींद लग गई। सुबह आंख खुलने पर उसने अपने आप को गांव के एक वैद्य के घर में पाया। उसके माथे पर पट्टी थी और गांव के कई लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। होश में आते ही उसकी जबान से सिर्फ यही निकला,
4: लखन, वो वही खेत में रह गया है। कल रात वो मुझे बस स्टैंड पर लेने आया था और रास्ते में और
2: उसने पाया कि उसकी ये बात सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति के चेहरे पर भी अजीब सी शिकन पैदा हो गई और जो बात गांव वालों ने उसे कही उसे सुनकर राजीव दंग रह गया। गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे बताया कि पिछले हफ्ते उसने जिक्र किया था कि उसके बचपन का मित्र राजीव शहर से आ रहा है, पर 3 दिन पहले उसके छोटे बच्चे की तबीयत अचानक रात में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से रात में वो खेतों के रास्ते हॉस्पिटल जा रहा था, पर उसके अगले ही सुबह गांव वालों को खेत में उन तीनों की लाश मिली, यानी लखन 3 दिन पहले ही मर चुका था।
5: The Haunted Place।
6: सोचिए, अगर आप देर रात एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं और आपसे सफेद साड़ी में एक औरत रास्ते में लिफ्ट मांगती है, जैसे ही आप उसे लिफ्ट देने के लिए अपनी गाड़ी रोकते हैं तो वो औरत पलक झपकते ही गुम हो जाती है। आप इसे अपना कोई भ्रम समझते हैं और अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए चल पड़ते हैं, पर जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के कांच पर पड़ती है आप उसी औरत को अपनी पिछली सीट पर बैठा पाते हैं। मान लीजिए इसके उलट आप रास्ते पर उस औरत को देखकर रुकने की जगह डर से गाड़ी की स्पीड दुगनी कर लेते हैं और 100 से ऊपर की स्पीड में अपनी कार भगाते हुए डर से भीगे अपने माथे पर पसीने की बूंदें पहुंच ही रहे होते हैं कि खिड़की के बाहर आप उसी औरत को अपनी कार के साथ चलता पाते हैं। सौ के ऊपर की स्पीड के साथ किसी औरत का यूं आराम से चलना नॉर्मल तो कतई नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि दिल्ली कैंट के हाईवे पर होते हादसों की एक बहुत बड़ी वजह है। यहां के स्थानीय लोग डरते हुए उस औरत के बारे में बताते हैं जिसे उन्होंने अक्सर देर रात दिल्ली कैंट के रास्तों में बैठा हुआ तो कभी लोगों से लिफ्ट मांगते हुए देखा है। सफेद साड़ी पहने धुंधली सी छवि वाली ये औरत अक्सर दिल्ली कैंट के रास्तों पर होते हादसों की वजह बनी है, पर यहां के लोगों का यह भी कहना है कि बहुत साल पहले यह खुद सड़क के किनारे किसी तेज गाड़ी का शिकार हुई थी, तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। वो ना वहां से जा पाती है और ना चैन से वहां रह पा रही है। ये कितना सच है और कितना झूठ ये तो हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि उसकी वजह से दिल्ली कैंट का रास्ता एक हॉन्टेड प्लेस बना हुआ है।
3: The Haunted Night. डर और खौफ से जुड़ी कुछ कहानियां और सच्चे अनुभव।

जब दीप जले आना चांद जैसे मुखड़े पर, गुड़ी तेरा गांव बड़ा प्यारा, जैसे हिट सॉन्ग गाने वाले के जे यसुदास को वॉइस ऑफ गॉड भी कहा जाता है।

यसुदास जी का पूरा नाम कटसेरी जोसेफ यसुदास है। उनका जन्म 10 जनवरी 1940 को कोची के एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था।

येसुदास के पिता ऑगस्टिन जोसेफ बहुत प्रसिद्ध मलयालम क्लासिकल संगीतकार थे। ये सात भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे, पर इनकी बड़ी बहन पुष्पा और भाई बाबू की बचपन में बुखार से मृत्यु हो गई थी।

गोकुलदास ने अपने संगीत की शिक्षा KLV म्यूजिक एकेडमी तिपुनी थूरा से की थी और गणभूषणम का कोर्स पूरा किया था।

करियर में येसुदास ने 50,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। 1975 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2017 में पद्म विभूषण, 8 बार नेशनल फिल्म अवार्ड, 28 बार केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिला है।

साउथ इंडियन फिल्म में गाना गाने के बाद येसुदास ने पहली हिंदी फिल्म 1971 में जय जवान जय किसान में गाना गाया था, पर उनकी पहली रिलीज फिल्म थी छोटी सी बात।

जो कि एक ब्लाइंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ने एक बार ये बात कही थी, यदि उनकी आंखों की रोशनी एक बार आ जाती है तो वो जरूर एक बार येसुदास को देखना चाहेंगे।

येसुदास ने 26 भाषाओं में गाने गाए। केवल कश्मीरी और एसमीज ऐसी दो भाषा हैं जिसमें इन्होंने गाना नहीं गाया। इन्हें गाना गंधर्व भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है सेलेस्टियल सिंगर।

बड़ी बात है, 14 नवंबर 1999 को येसुदास को म्यूजिक एंड पीस इवेंट में यूनेस्को द्वारा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन म्यूजिक एंड पीस अवार्ड दिया गया।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

बिके बुढ़ापा सब बिकता है घर हो पाता। लूट चुके हो दुनिया सारी इस पर भी तक

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।